राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटि तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून, ला रहा नया संदेश योग से।

0: जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए, एक दिन नहीं हर दिन। योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम, टीम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
4: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
3: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
3: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन

0: प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: We have been able to achieve that in the first...
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: They are all designed in India now.
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की

0: IDF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्क गिर सतह पर मशक करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। सेबी ने फौत शुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्सा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर चेन्नई में सीरीज के तीसरे और आखिरी ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह ओडिशा का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से उनके आबाई जिले मयूरभंज में मिलेंगे। जनाब मोदी का यह दौरा सदर जमहूरिया के 68वें यौम पैदाइश और ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वजीर आजम मोदी आज देर गए मगरबी बंगाल के शहर हुगली से पीएम किसान स्कीम के तहत 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों के लिए 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी करेंगे। इसमें मगरबी बंगाल के 45,00,000 से ज्यादा किसानों के खातों में भेजे जाने वाले 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी शामिल है। पेश है वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 2 रोजा दौरे पर मगरबी बंगाल पहुंच रहे हैं। रियासत में बीजेपी के इख्तदार के बाद ये उनका पहला दौरा है। अपने क्याम के दौरान वो हुगली में ताराकेश्वर में मगरबी बंगाल के दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर बैन अल-अक़वामी योग डे प्रोग्राम की क्यादत करेंगे और मुल्क ही में तैयार किए गए 3 जंगी जहाजों INS दोनागरी, INS संशोधक और INS एग्रे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो बहुत से अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी ज़राअत के शोबे के लिए मगरबी बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी बाकायदा आगाज करेंगे, जिसके तहत तकरीबन 50,00,000 किसानों को बीमा फराहम किया जाएगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस रोज एक ऐसी रियासत का जश्न मनाया जाता है जिसने अदब, मौसीकी, आर्ट, रूहानियत, साइंस, तिजारत और समाजी इसलाह की शक्ल में मुल्क की तारीख में जबरदस्त किरदार अदा किया है। वजीर आजम ने कहा कि मगरबी बंगाल की तारीख में इस दिन की खास अहमियत है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खुसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के तस्वुर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले इकदामात का जिक्र कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बाइख्तियार भारत के 2 सबसे अहम सतून सेमीकंडक्टर इको निज़ाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की जबरदस्त तरक्की है। इस ताजा तरीन पॉलिसी से सेमीकंडक्टर इको निजाम की उमंगें मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग में बदल

0: गई है। सेमीकंडक्टर्स, कौमी सलामती, इक्तिसादी इस्तेहकाम, डिजिटल खुद मुख्तारी और मुस्तकबिल के मुकाबला जाती रुझान की बुनियाद हैं। ये मिशन दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमीकंडक्टर्स मिशन 2M का आगाज किया, जिसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहला मिशन इस पेचीदा सनत के लिए बुनियाद के तौर पर कायम किया गया था और मिशन 2M के तहत इको निज़ाम में गहराई लाई जाएगी। भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत दी गई, जिसमें सैटेलाइट खला में भेजा जाना भी शामिल है। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। 2014 में महज एक स्टार्टअप था, जबकि अब इनकी तादाद 400 से ज्यादा हो गई है। इसकी वजह से मुल्क की प्राइवेट खलाई मईशत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं। भारत का पहला सेफ स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई रूट एरोस्पेस इस परिवर्तन का प्रमाण है।
0: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी और सारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
2: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी का दौरा करेंगे। वो महालक्ष्मी मंदिर के अहाते में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और मंदिर के इलाके में मगरबी महाराष्ट्र मंदिर तरक्याती मनसूबे के तहत शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। जनाब शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। बाद में जनाब शाह इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। जनाब शाह इमदाद बाहमी चीनी मिल को नया नाम दिए जाने और तौसीकारी से मुतालिक एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। जनाब शाह इचलकरंजी में कलपना अवाडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत को बहरान से दो चार दुनिया में अपने कौमी मफादात, दिफाई खुदमुख्तारी और कसीर खुदबियत को बरकरार रखते हुए ताल्लुकात को मुस्बत बनाना चाहिए। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका फोरम 2026 से खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने बहुत से शोबों में भारत अमरीका शराकतदारी को गहरा करने के बारे में इजहार ख्याल किया, जैसा कि दोनों ममालिक अपने मामलात और पेचीदगियों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, इसके मफादात में भी तौसी और तनव पैदा हो रहा है। ये आकाशवाणी है। भारत के सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक अग्रवाल को मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF का 2026-27 की मुद्दत के लिए नायब सदर मुंतखब किया गया है। वो इंग्लैंड के जिल्स थॉमसन की जगह लेंगे। जनाब अग्रवाल इस वक्त वजारत सकाफत में सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो FATF के लिए भारतीय वफद की क्यादत भी कर चुके हैं। 17 से 19 जून के दरमियान FATF के मुकम्मल इजलास के दौरान जनाब अग्रवाल को इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया गया। वजारत खारजा ने जनाब अग्रवाल का इंतखाब किए जाने को भारत की बड़ी कामयाबी करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने कहा कि जनाब अग्रवाल की तकरीरी से दहशतगर्दी की माली एयानत और गैर कानूनी माली नेटवर्क और गैर कानूनी मालियाती ढांचों के खात्मे के भारत के अजम को मजीद तकवियत हासिल हुई है। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी NTA नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान से पहले आज एक मुल्कगीर मॉक ड्रिल का इनेकाद करेगी। इम्तिहानात को खुशुसलूबी, महफूज और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के मकसद के हिस्से के तौर पर ऐसा किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
0: NTA ने कहा है कि वो नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के बिला रुकावट, मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। ये इम्तिहान कल होना है। एक बयान में NTA ने कहा कि यह इम्तिहान मुल्क के 551 शहरों और बैरून मुल्क के 14 शहरों में मुनाकिद किया जाएगा। तकरीबन 22,79,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक होंगे। एजेंसी ने मजीद कहा कि इम्तिहान को मुनसिफाना और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया गया है। दोबारा इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 पर कलम और कागज के तरीकेकार के तहत कराया जाएगा। शिवांग की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
2: इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कल दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम को आर्जी तौर पर ब्लॉक करने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि प्लेटफॉर्म का निजाम गैर कानूनी मवाद के तेज रफ्तार फैलाव को मुमकिन बनाता है और ये कि महदूद नौइयत के दीगर इकदाम इम्तिहान में धोखाधही को रोकने में नाकाम रहे थे। हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म की अगली किस्त में एक समाजी कारकुन और कारोबारी जज्बे के हामिल एसकेएम मिलानंदन का जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। आप ये प्रोग्राम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने कुछ इस्लाहात की मंजूरी दी है, जिनका मकसद मार्केट की इस्तेदाद में बेहतरी लाना, दरकार दस्तावेजात की फरहमी में आसानी पैदा करना और माली शोबे में जाब्ता जाति फ्रेमवर्क्स को मुस्तहकम बनाना है। कल मुनाकिदा 214वीं मीटिंग में सेबी बोर्ड ने फौत शुदा सरमायाकार के कानूनी जानशीनों और दावेदारों के लिए सिक्योरिटीज की मुंतकली को आसान बनाया है। यह फैसला छोटी रकम वाले दावों को जल्द निपटाने के मकसद से किया गया है, ताकि इसके लिए कम से कम दस्तावेजात दरकार हों। सेबी ने कुछ मामलों में पैन की लाजमियत को भी खत्म कर दिया है और क्यूआर कोड वाले डेथ सर्टिफिकेट्स को तस्लीम कर लिया है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए खुली मार्केट में अपने फरोख्त किए गए शेयर्स को वापस खरीदने का निजाम भी दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। यह निजाम इस साल 1 अगस्त से दोबारा शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों, असासे की तामीर नौ करने वाली कंपनियों और कर्जा देने वाली कंपनियों के माबेन बकौल उसके गहरी सांठगांठ पर शदीद तशवीश जाहिर की है, जिससे उस तरीके पर शकों को शुबहात पैदा हो जाते हैं जिसके तहत कर्ज नादहिंदगी के मामलात निपटाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कल कहा कि बैंक टैक्स दहिंदगान से हासिल किया गया पैसा कर्ज के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन इन कर्जों को वापस लेने की अक्सर मौसर कोशिशें नहीं की जा रही। अदालत ने कहा कि उसे सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल पर तशवीश है, जिसे अवाम की बहबूद के लिए खर्च किया जाना चाहिए। योगा का बैनुल अक्वामी दिन 2026 कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। यह 12वां योगा का बैनुल अक्वामी दिन होगा, जिसका मौजू है सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा, जो सभी उम्र के लोगों के लिए योगा की अहमियत पर जोर देता है। इस सिलसिले में तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क के 100 अहम मकामात पर योगा के बैनुल अक्वामी दिन के ताल्लुक से खुसूसी तकरीबात का एहतमाम करेगी। असल तकरीब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर मुनक़िद होगी, जहां वज़ीर-ए-आज़म कॉमन योगा प्रोटोकॉल में मुल्क की क्यादत करेंगे। मगरबी बंगाल में खलीज बंगाल से उठने वाले मानसून के सरगर्म बादलों और शदीद रतूबत के सबब हिमालय से मुत्तसिल अजला में आज से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। कोलकाता और मज़ाफ़ात के कई इलाकों ने इस मगरबी बंगाल के कुछ जनूबी जिलों में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिसके सबब लोगों को दिन के मसरूफ दफ्तरी औकात में पानी भर जाने की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी 3 एक रोजा बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मेजबान भारत पहले ही सीरीज में 2-0 से सबकत हासिल किए हुए है और अब वो सीरीज के तीनों मैच को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
3: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। रोना प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मगरबी बंगाल दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाये किया है, जिसके मुताबिक जनाब मोदी आज वहां के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो मगरबी बंगाल दिवस के साथ साथ योगा डे की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में बैनुल अक़वामी सिकल सेल डे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के मिशन के तहत 7 करोड़ अफराद की स्क्रीनिंग हुई है। इस खबर पर रोना प्रताप ने खुसूसी तवज्जो दी है। मुल्क दिफाई शोबे में खुद इंसारी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और 3 लाख करोड़ रुपए की दिफाई पैदावार नीज 50,000 करोड़ रुपए की दिफाई बरामदात के अहदाफ को वक्त से पहले हासिल कर लिया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नागपुर में ये बात कही। इस खबर को प्रताप ने पहले सफे पर जगह दी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में अव्वलीन खातून पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह की खबर को रोजनामा इनकलाब ने उजागर किया है।
2: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی آج اوڈیشا کے میور بھنج ضلع میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعظم مودی مغربی بنگال کے شہر ہگلی سے 9 کروڑ سے زیادہ کسانوں کے لیے

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
1: स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन स्वीकार करिए। शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, योग एक अत्यंत प्राचीन और अमूल्य भारतीय जीवन शैली है, जो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का एक संपूर्ण विज्ञान है। संस्कृत की युज धातु से उत्पन्न इस शब्द का अर्थ है जुड़ना, जो व्यक्ति को प्रकृति और आंतरिक शांति से जोड़ता है। नियमित रूप से योगासन करने से हमारे शरीर न केवल लचीला, फुर्तीला और मजबूत बनता है, बल्कि प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से भी मुक्ति मिलती है। योग हर आयु वर्ग के लिए एक वरदान है, विशेषकर हमारे बुजुर्गों के लिए। ये हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और बुढ़ापे को गतिशील और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे सुरक्षित माध्यम है। इसकी इसी वैश्विक उपयोगिता को देखते हुए हर वर्ष 21 जून को पूरे उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को एक निरोगी, अनुशासित और सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाना है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस वर्ष की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी योग फॉर हेल्दी एजिंग। सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के ग्लोबल लीडर डॉक्टर टोनी नादर का संदेश।
2: Namaskar to all listeners across India on the occasion of International Yoga Day. I am honored to address the people of Bharat, the country that gave yoga to the world. India is not today sharing yoga with the world for the first time. The world has been receiving yoga from India for many centuries. What this day marks is the recognition on every continent of what India has always known, that yoga is one of the deepest gifts to humanity that any civilization has ever given. I want to begin with the word itself. Yoga in Sanskrit means union, from the root yuj, to join, to yoke. Yoga is not fundamentally exercise. It is not fundamentally posture. It is the science of joining what has been separated, joining body and mind, individual and universal, action and stillness, the small self and the deeper, infinite, bigger self. Every asana, every breath practice, every meditation, every act of conscious daily living is a step in that joining. That is what yoga has always meant, and that is what the world is now finally ready to hear. This year's theme draws attention to yoga's contribution to overall well-being, with emphasis on healthy aging, meditation, and conscious living. I would like to say a few practical words about each. On mental health, stress, and clarity of mind, the science is now confirming what Veda has known for thousands of years. Practices that allow the mind to settle inward beneath the noise of thought into its own quiet ground produce measurable changes in the nervous system. Cortisol decreases, brain coherence rises, the body enters a state we call restful alertness, deep relaxation combined with clear awareness. I have spent much of my life with one particular such practice, transcendental meditation, brought to the world by Maharishi.

0: करता हूँ तो योग एक बहुत ही आत्मिक, बहुत ही नेचुरल क्रिया है और जो आपको अपने आप से मुखातिब करवाती है। आप अपने आप को बेहतर जान पाते हैं। आपके अंदर जो आप हैं, आपके अंदर का ईश्वर है या खुदा है या भगवान है, आपकी आत्मा है, उनसे आप रूबरू हो पाते हैं थ्रू योग। और योग की खास बात, सबसे बेहतरीन ये है कि जितनी एनर्जी हम खर्च कर रहे होते हैं, अगर हम कोई शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं योग में, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं योग में, तो उतनी ही एनर्जी आपकी बॉडी में वापस आती है। आपको वेट लॉस करना है, योग अपनाइए। आपको फिट होना है, योग अपनाइए। आपको अपने से अपने आप को बेहतर जानना है, योग अपनाइए। योग अपनाइए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।
1: उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इस उम्र के साथ हमारे शरीर का स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है। कहते हैं कि एक मजबूत इमारत के पीछे उसकी मजबूत नींव का हाथ होता है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर को जीवन भर संभाले रखने के लिए हमारी हड्डियां बहुत जरूरी काम करती हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ढलती उम्र के साथ हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में तकलीफ या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम इसी बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। विषय है बढ़ती उम्र में हड्डियों की देखभाल।
2: आज के हमारी सेहत के अंक में हम जानेंगे कि हड्डियों की ये समस्याएं क्यों होती हैं, शुरुआती लक्षण क्या हैं और किस प्रकार संतुलित खान पान, नियंत्रित व्यायाम और समय पर उपचार से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मैं हूं रश्मि गुप्ता और आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर देवेश जालान, प्रोफेसर इन ऑर्थोपेडिक्स। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बढ़ती उम्र में हड्डियां कमजोर क्यों होने लगती हैं? ये एक सामान्य प्रक्रिया है या इसे रोका भी जा सकता है?
3: ये जो समस्या है जो कि हम बुजुर्गों में देखते हैं, यह एक सामान्य समस्या है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है
2: जी।
3: और जैसे हमारी हर उम्र में कुछ हड्डियां बनती हैं और कुछ हड्डियां लॉस होती हैं, जो कि एक नेचुरली चलता प्रोसेस है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे ये प्रोसेस थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू होता है। और जो बोन लॉस हो रहा है वो ज्यादा तेजी से होता है एज कम्पेयर टू जितना बोन नया बनता है
2: जी।
3: इस वजह से ये प्रोसेस हमारा एक नेचुरल मैकेनिज्म की तरह बढ़ता है, बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे जो हड्डी की कमजोरी है, चूंकि बोन उतना नहीं बन पा रहा है, इस वजह से वो कमजोरी बढ़ने लगती है। और इसमें हम ये कर सकते हैं कि ये प्रोसेस नॉर्मल है, लेकिन अगर यह चीज तेजी से बढ़ रही है तो हम उसको नॉर्मल में नहीं आंक सकते, क्योंकि कुछ लोगों में ये चीज बहुत तेजी से बढ़ती है और फिर वो एक परेशानी का कारण बनती है, चाहे वो फ्रैक्चर के रूप में बने या फिर दर्द के रूप में बने, तो उस प्रोसेस को हम नॉर्मल नहीं कर सकते
2: जी।
3: इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है वो तेजी से भाग रही है और वो नॉर्मल नहीं है।
2: तो यदि हम बुजुर्गों की बात करें तो उनमें हड्डियों से जुड़ी सबसे आम समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं?
3: तो सबसे आम समस्या जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हड्डियों की कमजोरी है
2: जी।
3: जो कि तेजी से बढ़ जाए, तो जिसको हम बहुत कॉमनली नाम जो मेडिकल टर्म यूज करते हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस
2: जी,
3: जो कि हड्डियों की कमजोरी की तेजी से बढ़ना और जिसके वजह से हमारा जो रोजमर्रा का काम है, जैसे हम बाथरूम में नहाने जाते हैं, एक हल्का सा झटका लगा और हमें लगता है कि हमारी हड्डी टूट गई
2: जी, जी,
3: तो वो जो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं जो कि हमारे नॉर्मल एक्टिविटी से हो रहे हैं, कोई चोट नहीं लग रही
2: जी,
3: वो इस कारण से हो रहे हैं क्योंकि हमारी हड्डी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से
2: जी।
3: दूसरी जो कॉमन समस्या हम देखते हैं जिसमें कि एज के साथ हमारी नॉर्मल बॉडी के जो जोड़ हैं, जैसे घुटने हैं, कूल्हे के जोड़ हैं, हाथों के जोड़ हैं, वो जोड़ अपने नॉर्मल धीरे धीरे घिस जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो घिस गए हैं, हड्डियां बढ़ गई हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी जो अंदर का कार्टिलेज है जो कि उसको एक कुशन देता है, उस जोड़ को मोबिलिटी देता है
2: जी,
3: वो जोड़ ढंग से चले,
2: हाँ।
3: वो धीरे धीरे एज के साथ कमजोर हो जाते हैं
2: जी।
3: और इसकी वजह से इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये दो मेन कॉमन समस्याएं जो कि हमें देखने को मिलती हैं इसके अलावा ये जो प्रोसेस जो वियर एंड टियर का है वो नॉर्मल स्पाइन में भी हो सकता है, जिसमें कि कमर में दर्द होना, या आपको कई बार हमें लगता है बुजुर्गों में हमारी कमर धीरे धीरे टेढ़ी होने लगती
2: जी,
3: है
2: जी, बिल्कुल।
3: वो भी एक तरह से ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है, बिकॉज उनका धीरे धीरे जो कमर की जो हड्डियां हैं वो पिचकने से लगती हैं, कमजोर होके वो कोलैप्स होने लगती हैं, और इस वजह से उनकी जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है।
2: जी,
3: तो वो भी
2: सर, ये जो समस्याएं हैं ये केवल बुजुर्गों के लिए होती हैं या मतलब किसी और उम्र के लोगों में भी हो सकती हैं?
3: तो ऑस्टियोपोरोसिस प्रेडोमिनेंटली हम बुजुर्गों में देखते हैं
2: जी,
3: और नॉर्मल ये जो औरतों में फीमेल सेक्स में ज्यादा कॉमन है।
2: अच्छा।
3: और इसका कारण ये है कि जब हमारे को मेनोपॉज होता है उसके बाद ये रिस्क ऑस्टियोपोरोसिस का, बोन की हड्डियों की कमजोरी का, फीमेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है
2: जी।
3: और इसीलिए हम अगर बात करें तो 50 से 55 साल की उम्र के बाद महिलाओं में ये प्रॉब्लम हड्डियों के दर्द की और ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क काफी है, एज कम्पेयर टू मेल्स जिसमें कि ये जो प्रॉब्लम है जो कि काफी लेट देखी जाती है। इसके अलावा अगर हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल में कर रहे हैं वो हड्डियों की कमजोरी को बढ़ाते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं अगर हम स्मोकिंग बहुत करते हैं, अगर हम अल्कोहल का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर हमारे डाइट में एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं है जिसमें कि हम कैल्शियम, विटामिन डी या फिर मैग्नीशियम, या फिर हम बात करते हैं प्रोटीन्स जो कि नॉर्मल मसल और बोन स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है। तो अगर हमारी डाइट पूरी प्रॉपर नहीं है तो वो सारे फैक्टर्स इस चीजों को जल्दी भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने बात की कि महिलाओं में 55 और अगर पुरुषों में 65 या 70 के बाद हो रही है
2: जी।
3: तो ये पहले भी हो सकती है अगर हमारी जो लाइफस्टाइल है वो चीज सही नहीं है।
2: सर, खान पान और जीवन शैली के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। पहले मैं ये जानना चाह रही थी कि हड्डियों की मजबूती की यदि हम जांच कराना चाहें तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए और किस उम्र में ये जरूरी हो जाते हैं?
3: ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें लगता है कि क्या हम इसको पकड़ पाएंगे
2: जी।
3: तो ऑस्टियोपोरोसिस को ना हम साइलेंट डिजीज की तरह कहते हैं कि आपको इसके लक्षण नहीं पता चलते, कि आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती रहती है और जब हमारे पास मरीज आते हैं तो वो मोस्टली फ्रैक्चर के रूप में आते हैं।
2: मैंने एक चीज और भी देखी है, जो हमारी यंग एज के जो लोग हैं या 30-40s में ही जो महिलाएं हैं या जेंट्स हैं वो जस्ट सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ही उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें तकलीफ हो रही है, घुटने में हल्का सा कुछ पेन है या कुछ चीज खिसक गया है, तो क्या वो भी हड्डियों की कमजोरी ही है?
3: देखिए, इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको हमें जांच करने की जरूरत पड़ती है
2: जी।
3: अगर हमें स्पेसिफिकली सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तब वो जॉइंट में कुछ, कई बार हमारे झिल्लियां फट जाती हैं जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं, कुछ लिगामेंट की इंजरी होती है जो कि प्रेडोमिनेंटली यंग एज में ज्यादा होती है।
2: अच्छा।
3: बट ओल्ड एज में भी उस तरह की समस्याएं हो सकती है। तो हमें ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि अगर ये चीज सिर्फ हमें सीढ़ियां चढ़ने या कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिसमें हो रही है
2: जी।
3: तब हमें वो जांचने की जरूरत पड़ेगी कि वो क्यों हो रही है।
2: ओके।
3: और अदरवाइज अगर वो प्रोसेस हमारा एक रूटीन है कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारे जोड़ में, जैसे हम नॉर्मल बैठे हैं, बैठ के उठते हैं तो हमें लगता है घुटने स्टिफ हो गए हैं, घुटने में उठने में दर्द होना शुरू हो गया, तो ये, और कुछ देर चलते हैं तो लगता है थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखते हैं
2: हम।
3: कि आपको जब भी आप थोड़ा सा इनएक्टिविटी वाला पीरियड होगा, जैसे आप रात को सो गए और फिर जब आप सुबह उठोगे तो आपको लगेगा बॉडी सारी स्टिफ हो गई है, आपकी मूवमेंट लिमिटेड है, बट वही आप अगर 5-10-15 मिनट एक बार उठ के थोड़ा बहुत चलोगे देन यू विल फील कि आपका थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये लक्षण हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ दिखा रहे हैं। बट ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो उसमें वो लक्षण नहीं आते हैं, बट कई बार हम कुछ चीजों से आइडिया लगा सकते हैं जो मैंने आपसे बात की पहले, कि हम जैसे किसी की अगर हाइट आपको लग रहा है कि धीरे धीरे कम हो रही है या कमर का झुकाव बढ़ रहा है तो हम उस केस में ये सोच सकते हैं कि हाँ ये हड्डियां कमजोरी की वजह से हैं और हम उसको अगर इवेलुएट करें तो हम वो उसको चीजों को पकड़ सकते हैं। अब क्या कुछ टेस्ट है हमारी अगर हम उस पर स्पेसिफिक बात करें
2: जी।
3: तो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो हम करते हैं बोन की स्ट्रेंथ को जांच करने के लिए उसको हम कहते हैं डेक्सा स्कैन, जो कि एक तरीके से एक्सरे टाइप की मशीन होती है, उसमें कोई आपका मतलब कोई इन्वेजिव टेस्ट नहीं है, जैसे एक्सरे के मशीन में एक स्कैन होता है उसी तरीके का स्कैन होता है और वो कोई रेडिएशन का रिस्क भी उसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ हिस्से जो कि कॉमनली जहां पे हम फ्रैक्चर देखते हैं, जैसे कि स्पाइन जिसका फ्रैक्चर बहुत कॉमन है ओल्ड एज में, और हिप के फ्रैक्चर्स, ये दो ऐसे एरिया हैं जो कि

0: हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके फ्रैक्चर सबसे ज्यादा कॉमन है.
1: जी
0: तो इन दो हिस्सों की डेंसिटी हम चेक करते हैं
1: जी
0: मोस्टली डेक्सा स्कैन में.
1: अच्छा.
0: अब इसमें हमने एक क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है कि स्कोर हमारा -2.5 से कम आता है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस में जाता है,
1: अच्छा.
0: उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. और -1 से अगर हमारा स्कोर बढ़िया है, ज्यादा है, तो वो चीज नॉर्मल होती है. और इन दोनों बीच के रास्ते में, -1 से कम और -2.5 से ज्यादा में, हमारे जो बीच का रास्ता है उसमें हड्डियां कमजोर हैं, और लेकिन उसमें हम ट्रीटमेंट दे के फ्रैक्चर के रिस्क को खत्म कर सकते हैं.
1: तो सर, इसका इलाज केवल दवाइयों के द्वारा है या कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करनी पड़ती है, और पूरी तरह से संभव है, इसे नियंत्रित कर सकते हैं?
0: देखिए, पूरा इसको हम खत्म नहीं कर सकते. हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो सबको होनी है. हम जैसे जैसे बुजुर्ग होंगे, हमारी, चूंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारी हड्डियां और मसल्स कमजोर होंगी
1: जी.
0: लेकिन हम इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं. हम इस प्रोसेस को जितनी तेजी से जो बढ़ रही है उसको हम स्लो कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, और अगर हम उन लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे बहुत जल्दी ध्यान देना शुरू करेंगे तो मेडिसिन की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी या फिर नहीं भी पड़ सकती. तो लाइफस्टाइल की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात की वो है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इसमें नॉर्मली जो एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं वो है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज. तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी का वेट उसमें यूज हो रहा है. तो हमारी बॉडी का वेट नॉर्मल एक्टिविटी, जैसे हम अगर नॉर्मल रूटीन वॉक कर रहे हैं या ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं
1: जी.
0: या फिर हम स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो कोई भी जो नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी, अगर हम चल फिर रहे हैं नॉर्मल और सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या फिर हम उठ के बैठ रहे हैं, वो सारी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं. तो हमें वो चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए. अगर हम धीरे धीरे, हमें लगता है कि प्रॉब्लम भी है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो एक्सरसाइज को हम रिटेन कर पाए, क्योंकि उससे मसल की स्ट्रेंथ और बोन की स्ट्रेंथ बढ़ती है
1: जी.
0: दूसरी जो चीज है वो है मसल की स्ट्रेंथ.
1: Okay.
0: क्योंकि मसल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि बोन्स और मसल्स दोनों साथ में काम करती हैं. तो अगर हम बोन के साथ मसल्स पे काम नहीं करेंगे
1: जी.
0: तो बोन्स भी हमारी बहुत हेल्प नहीं करेंगे. तो मसल स्ट्रेंथ की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें कि हम कुछ वेट्स के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेसिस्टेंस बैंड्स आती हैं जिससे कि कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हमारी मसल की स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो.
1: तो जो 70+ या 80+ लोग हैं वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं?
0: हाँ, ये एक्सरसाइज हर एज पे आप कर सकते हैं
1: जी.
0: उस एक्सरसाइज को बेसिकली हम धीरे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमें जो वेट हम मतलब यंग एज में रिकमेंड करते
1: जी,
0: हैं वही आप ओल्ड एज में
1: जी,
0: आप
1: जी.
0: आधे किलो से शुरू कर सकते हैं, आप 1 किलो से शुरू कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे. लेकिन आपको वो चीज बिल्ड करनी है
1: जी.
0: आप उसको ग्रेजुअली करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेंथ लूज होगी.
1: सर, आपने बताया कि व्यायाम हो, एक्सरसाइज हो या जीवन शैली हो, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं यदि हम समय से शुरू कर दें. तो क्या खान पान में बदलाव करके भी हड्डियों को मजबूत किया जा सकता है?
0: हाँ.
1: तो आहार में किस तरह के पोषक तत्व हम ऐड करें कि हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएं?
0: हाँ, तो अब हमने जैसे बात की एक्सरसाइज की, उसका अब दूसरा पहलू न्यूट्रिशन है. तो जो हम बात कर रहे हैं कि शायद मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, तो पहला पहलू हमने एक्सरसाइज की बात की, अब दूसरा पहलू है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में बोन हेल्थ के अगर हम रिगार्डिंग बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हम कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम हर आदमी को दी जाती है, हर आदमी को पता है कैल्शियम लेना है
1: जी.
0: लेकिन कैल्शियम की जो अगर हम डाइट से वो चीज पूरी कर सकते हैं तो हमें अपने डाइट में कैल्शियम को इम्प्रूव करना चाहिए, जिसमें कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, इन सब चीजों में कैल्शियम होती है
1: जी.
0: तो कैल्शियम एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बोन हेल्थ का. इसके अलावा वाइटमिन डी
1: जी,
0: जो कि कैल्शियम और वाइटमिन डी दोनों आपस में एक दूसरे के ब्रदर हैं, एक साथ काम करते हैं
1: जी.
0: अगर कैल्शियम के साथ वाइटमिन डी नहीं है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी बॉडी इतना अच्छा नहीं करता. तो नॉर्मली जो भी हम कैल्शियम मार्केट से अगर लेते भी हैं उसमें वाइटमिन डी हमेशा साथ में होता है कुछ ना कुछ. प्लस डाइट की जहां तक हम बात करें तो वाइटमिन डी जो डाइट प्रिडोमिनेंटली मिलता है वो हमें नॉन वेज फूड से ज्यादा मिलता है
1: जी.
0: जिसमें कि फिश हो गए या एग योक हो गया, जिसमें कि प्रिडोमिनेंटली वाइटमिन डी मिलता है.
1: अच्छा.
0: बट हम उसको सनलाइट एक्सपोजर एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि अगर हम रोज के 15 से 20 मिनट का सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं तो वो भी हमारी वाइटमिन डी को बनाने में हेल्प करता है
1: जी.
0: इसके अलावा

0: की चीजें हों, जो डाइट हम लेते हों, उस डाइट में हमें प्रोटीन पे फोकस करना चाहिए एज के साथ भी। अगर प्रोटीन हम इंटेक बढ़ाएंगे तो हमारी मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करेगी।
1: जी, तो सर प्रोटीन के कुछ सोर्सेज हमारे लिसनर्स के लिए?
0: तो प्रोटीन हम वेजिटेरियन सोर्सेज में हमारे पास दाल है, चना है, सोया है, टोफू है, ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोटीन के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम ले सकते हैं। नॉन वेज सोर्स में हमारे पास रेड मीट है, हमारे पास फिश है, ठीक है, इन सब चीजों में प्रोटीन होता है।
1: सर सीनियर सिटीजन्स खासतौर पे जो 70-80 प्लस हैं, उन्हें चलने में दिक्कत होती है, आपने जैसे बताया भी, उठने बैठने में दिक्कत होती है, घुटनों का कोई हिस्सा अचानक से अटक जाता है या कमर झुकने लगती है, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: देखिए, मेरा यही सुझाव रहेगा उनके लिए कि जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है आप उसको नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत घरों में ये होता है कि अरे ये तो उम्र का तगाजा है, हम माइंड में भी ये सोच के चलते हैं और घर वालों पे भी यही इम्प्रेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन सब चीजों को, जो बीमारियों की हमने बात की, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की या घुटने में कोई झिल्ली के फट जाने की बात की, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको कि हम कम नहीं कर सकते या जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो अगर हम उस बीमारी को पकड़ पाते हैं कि वो चीज क्यों हो पा रही है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, या अंदर कोई लिगामेंट या झिल्ली के फटने की वजह से है, तो हम उस चीज का एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जिससे कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो कि आपके चलने फिरने की एक ताकत है, वो बनी रह सकती है। क्योंकि एक एज के बाद आदमी सबसे इम्पोर्टेंट ये चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट अपना काम करे।
1: बिल्कुल।
0: और अगर आपकी ये प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं होती है और आप उसको नेग्लेक्ट करते रहते हो, तो कई बार जब हमारे पास पेशेंट फ्रैक्चर के साथ आते हैं, तो फिर उनको वापस इंडिपेंडेंट करने में जो मेहनत लगती है और कई बार वो नहीं भी हो पाते, वो एक रिस्क बहुत बड़ा है। तो हमें ये पहले ही इस चीज को इवैल्यूएट कराना चाहिए।
1: सर अब समय चूंकि बहुत थोड़ा सा बचा है, मैं ये जानना चाहूंगी कम उम्र से ही किस तरह से हम अपनी हड्डियों का ख्याल रख सकते हैं, ये हमारे सुनने वालों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: देखिए, जो हमारी मेन हड्डी बनती है
1: जी,
0: वो शुरुआती दौर में बनती है, जब हम 20 साल की उम्र के होते हैं
1: जी,
0: हमारी 90-95% हड्डी का मेन मास बन चुका होता है। तो अगर हम अपने बच्चों में, एक जो हमने बात की बोन हेल्थ के लिए, वो बच्चों में भी कारगर है, अगर बच्चों में हम उनको शुरू से एक अच्छी डाइट दें जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, मैग्नीज, ऑल दीज बोरॉन्स, मिनरल्स, ये सब अगर हों, तो एक न्यूट्रिशियस डाइट दें, उन्हें एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करें, जो कि आज की जनरेशन में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, ये नहीं कि घर में बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहे हैं
1: जी,
0: तो जब तक वो एक्सरसाइज करेंगे वेट बेयरिंग, एक डाइट अच्छी लेंगे और कोई भी ऐसी एडिक्शन से बचेंगे जैसे अल्कोहल है या स्मोकिंग है
1: जी,
0: तो उनकी जो बोन मास बनेगी वो काफी अच्छी बनेगी।
1: okay.
0: और वो अर्ली बनती है। अगर वो बोन मास बहुत अच्छी बनेगी तो वो प्रॉब्लम, बाद की जो हम प्रॉब्लम्स कह रहे हैं कि बोन कमजोर हो रही है, वो प्रॉब्लम भी वो प्रिवेंट हो सकती है
1: जी।
0: तो हमारा जो प्रिवेंशन है वो अर्ली स्टेज में शुरू होता है
1: जी,
0: और उस चीज पे हमें वर्क करना चाहिए।
1: तो मुझे लगता है आज जो हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए आज का प्रोग्राम, आज का कार्यक्रम काफी कारगर सिद्ध होगा। और डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय निकालकर इतनी जरूरी बातें हड्डियों से जुड़ी हुई हमें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बढ़ती उम्र में हड्डियों की देखभाल, अभी आप इस विषय पर सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिवेश से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थी रश्मि गुप्ता। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेहत स्वास्थ्य पत्रिका के अंतर्गत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम धरती आकाश।

0: नमस्कार, धरती आकाश के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। तीव्र शहरीकरण के कारण जल की भारी मांग, अपर्याप्त स्वच्छता और अपशिष्ट जल प्रदूषण जैसी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यदि जल चक्र का उचित प्रबंधन न किया गया तो ये सतत विकास लक्ष्य SDG 6 को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। बढ़ते शहरीकरण के दौर में जल स्वच्छता और सतत विकास। विस्तृत जानकारी के लिए सुनिए असीम आचार्य, सह संस्थापक फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैबिटेट्स, कार्यक्रम निदेशक एवं सलाहकार बोरडा से दिलीप झा की ये बातचीत।
1: असीम आचार्य जी, जल स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आजीविका और शहरी विकास के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखते हैं। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद इरमा से शिक्षा प्राप्त की है। असीम आचार्य जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम जल की और स्वच्छता की बात करते हैं तो छोटे और तेजी से विकसित हो रहे शहरों में खास करके चुनौतियाँ क्या है?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल रखा सर। सबसे पहले, क्योंकि हम जितना भी देख रहे हैं अपने आसपास में, हम देखते हैं कि बहुत सारा रिसोर्स, बहुत सारा फोकस, ध्यान जो है वो बड़े शहरों की तरफ रहता है। तो आप दिल्ली देखेंगे, आप मुंबई देखेंगे, आप अहमदाबाद देखेंगे, आप बैंगलोर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैपेसिटी भी बहुत हाई है, रिसोर्सेज भी बहुत हाई है, सरकार का फोकस भी बहुत हाई है। पर जैसे ही आप छोटे छोटे शहरों की तरफ जाना शुरू करते हैं, जैसे बैंगलोर के पास में एक छोटा शहर है चिंतामणि, चिकबलापुरा, तो इन शहरों में हम देखते हैं कि आपकी जो म्युनिसिपैलिटी है वो डे टू डे रोजमर्रा की चीजों को लेकर, रोजमर्रा की सर्विसेज को लेकर बहुत ही स्ट्रगल करती हैं। और एक और चीज जो कि बहुत ही इंटरेस्ट की है वो ये है कि ये जो छोटे शहर हैं इसमें भारत की 60% आबादी 2030 तक बसना शुरू कर देगी। तो जब हम 60% आबादी जिन शहरों में बस रही है उन शहरों के ऊपर यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो शहर हमारे जो आम जनता है या फिर रोजमर्रा का जो जीवन है उसको बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगे। छोटे शहरों में यदि हम देखें कुछ जो बहुत ही टिपिकल या बहुत ही स्पेसिफिक यदि हम कुछ प्रॉब्लम देखने का कोशिश करें सर, तो छोटे शहरों में ऐसा होता है कि जो आपका म्युनिसिपैलिटी होता है वो अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन कभी म्युनिसिपैलिटी को पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। कभी उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी तकनीक इस्तेमाल में लेनी है। कभी वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में पैसे का प्रबंधन ही नहीं होता है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है स्टेट के ऊपर, सेंटर के ऊपर। ज्यादातर जो पैसा जो स्कीम से आता है वो सेंटर की तरफ से आता है, म्युनिसिपैलिटी का उसमें कंट्रोल बहुत कम रहता है। दूसरा एक और एस्पेक्ट आप देखेंगे या एक और पहलू आप देखेंगे कि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो खुद का अपना रेवेन्यू अभी भी अच्छे से जनरेट नहीं कर रही हैं छोटे और मीडियम साइज के शहरों। तो कहीं ना कहीं जब इन म्युनिसिपैलिटीज को एक अच्छी कैपेसिटी नहीं मिल पा रही है, इनके पास में प्रॉपर पैसा नहीं है चीजों को करने का, इनके पास में बढ़िया तकनीकें इतने अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, स्किल लोगों की भी कमी है और इन कई जगहों पर लोगों की ही कमी है। तो इन सारी प्रॉब्लम के बीच में ये जो छोटे और जो मध्यम वर्ग के जो शहर है ये काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यदि पानी की व्यवस्था से लेके, कचरे की व्यवस्था से लेके, या फिर पानी के इस्तेमाल को किस तरीके से रखना है, या आपका ओवरऑल जलवायु पर्यावरण की जो परेशानियां हैं वो अभी छोटे छोटे शहरों में दिखना शुरू हो गई। जो थोड़ी खतरे की या फिर जो थोड़ी परेशानी की बात है वो ये है कि छोटे शहरों को लेके हम जलवायु का बहुत बड़ा एक प्लान तो बना रहे हैं, हम पूरे देश को लेके बना रहे हैं, लेकिन इन छोटे शहरों को पता ही नहीं है कि जलवायु के अराउंड काम क्या है
1: और जो जलवायु परिवर्तन है उस तरह
2: उसको
1: से
2: किस तरीके से वो
1: करना है।
2: मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी संस्था या कोई भी आप नागरिकों से भी बात करें तो सरकार के बिना ये काम करना एकदम ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि सरकार हमारा मेन जो सर्विस जो देने की जो एंटिटी है वो सरकार है। और सरकार जिस तरीके की स्कीम भी बना रही है तो बहुत ही अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं। हमारी आप स्कीम्स को देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे रूल्स, बहुत अच्छे रेगुलेशंस डिफाइन कर रहे हैं। जैसी वो स्कीम थोड़ा नीचे उतर के इम्प्लीमेंटेशन पे जाती है वहां हम बड़े परेशानियां देखना शुरू करते हैं। तो सर, इसको रखते हुए यदि हम बात करें कि आम आदमी या फिर संस्थाएं कैसे मदद कर सकती हैं, तो आई थिंक सर जो एक जो सबसे बड़ा हम जो गैप देखते हैं छोटे शहरों में या मध्यम वर्गीय शहरों में वो है कैपेसिटी का गैप। कैपेसिटी का गैप बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कई जगहों पे गवर्नेंस के अराउंड का बात हो सकता है कि जनरल आपको अपना म्युनिसिपैलिटी को अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, आपको अपना रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है। प्रॉपर्टी टैक्सेस तो आप कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन पानी की व्यवस्था का पैसा आप कलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, कचरा जो उठाने का जो पैसा है वो आप कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आपके पास में प्रॉपर व्हीकल होना चाहिए कचरा उठाने के लिए वो आपके पास में है कि नहीं, या फिर जिस टाइप का आपको कॉन्वर्जेशन करना है, बात करना है लोगों से, वो बात करने के पॉइंटर्स आपके पास में है कि नहीं, आप ये समझते हैं क्या कि उससे एक्चुअली में पब्लिक हेल्थ या फिर जो सामाजिक स्वास्थ्य है उस पर असर क्या पड़ता है वो आपकी समझ में है कि नहीं। तो ये जो कैपेसिटी का जो गैप है ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसमें कई सारे अलग अलग तरीके के वैज्ञानिक माध्यमों को इस्तेमाल में लिया जा सकता है। जैसे एक जो बहुत ही प्रोमिनेंट या फिर मैं बोलूंगा कि बहुत ही जो आम तरीका है वो है कि आप बहुत ही इंटेंसिवली लोगों से बात करना सबसे पहले शुरू करें, क्योंकि अभी तक ऐसा होता है कि लोग बिजली

0: पे बात करते हैं। कभी भी बिजली चली जाती है, एक कॉन्वर्जेशन का टॉपिक है। लेकिन पानी इतना बड़ा कॉन्वर्जेशन का टॉपिक नहीं है, कचरा इतना बड़ा बात करने का टॉपिक नहीं है। हमने कितने लोगों ने देखा कि चार लोग साथ में बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक पहली बात तो ये है कि वो बात शुरू करना बहुत जरूरी है, एंड जब बात शुरू होगी तो धीरे धीरे बात स्केल पे होगी। दूसरा चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका लोकल जो प्रबंधन है उसकी आप कैपेसिटी या उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो मुझे लगता है सर, जो कि बहुत ही जरूरी है, जो हमारे किसी के भी अभी हाथ में नहीं है, वो है कि हम किस तरीके से इन म्यूनसिपल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप स्टेट की तरफ से आपको ग्रांट मिलता है, जो आपका कुछ टाइड ग्रांट होता है, जिसमें आपको एक सेट एक्टिविटीज करनी होती हैं। देन उसके अलावा म्यूनसिपैलिटी कई जगह पे अपना खुद का पैसा जनरेट करती हैं। कई जगह पे आजकल म्यूनसिपैलिटीज आपके जो बॉन्ड्स हैं, जैसे प्लास्टिक के आपके क्रेडिट्स होते हैं या फिर आपके कार्बन के क्रेडिट्स होते हैं या म्यूनसिपल बॉन्ड होते हैं, इन सब चीजों को भी अब म्यूनसिपैलिटीज धीरे धीरे देखना शुरू कर गई हैं। पर जो डिफरेंस है वो कई बार इंफॉर्मेशन और नॉलेज का भी है कि यहाँ पे यदि कोई एक चीज है उसको उतार के जमीन पे ले जाने के लिए कौन है। और वहां पे आई थिंक ये जो संस्थाएं हैं या फिर जो नागरिकों के ग्रुप हैं, ये एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं।
1: इस तरह की संस्थाओं का जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और जो स्थानीय नागरिक हैं, उनकी सहभागिता बहुत जरूरी है। आपने एक बात बताई कि सबसे पहले संसाधन की भी जरूरत है, संसाधन सिर्फ सरकार पर ही निर्भर है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में और कारपोरेट सेक्टर को आना होगा या लोगों को खुद ही कंट्रीब्यूट करना होगा। ऐसी स्थिति में बात आती है कि वेस्ट टू रिसोर्स की, या जो वेस्ट टू वेल्थ की बात करते हैं, कि जो कचरा है, जो गार्बेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उससे किस तरह से एक संसाधन निर्मित किया जा सकता है। ये अवधारणा बहुत जगह देखी गई है महानगरों में, खास करके दिल्ली के हाई राइज सोसाइटी में और जो बेंगलोर की सोसाइटियों में कुछ सफलताएं हैं। आप चूंकि एक मध्यम शहरों में काम करते हैं, आप एक दूर दराज के क्षेत्रों में भी काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह के काम करते हैं उसमें इस कंसर्न को किस तरह से एक लाभदायक रूप में लाया जा सकता है?
0: तो सर, वेस्ट टू रिसोर्स या फिर हम बोलें कि जो गंदा पानी है उसको फिर से इस्तेमाल में लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी चीज है यदि हम जलवायु प्रबंधन की बात करें। लेकिन जैसे आप छोटे और मध्यम वर्ग के टाउन या शहरों की बात करते हैं, तो अभी छोटे और मध्यम वर्ग के जो शहर हैं वो तैयार नहीं है सर इस टाइप का एक वार्तालाप शुरू करने के लिए। सो जैसे आप देखेंगे कि छोटे शहरों में, मध्यम वर्गीय शहरों में अभी पूरी तरह से कचरा ही कलेक्ट नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कई जगहों पे ऐसा ब्लैक स्पॉट होता है जहां पे आपका कचरा पड़ा होता है, पूरा कचरा अभी आपके फैसिलिटीज में ही नहीं पहुंचता है। बहुत सारा कचरा आपका वेस्ट, लेगेसी वेस्ट का साइड पे चला जाता है, जहां पे वो फिर 10-10, 15-15 साल तक पड़ा रहता है। उसी में आप यदि गंदे पानी का भी बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अभी भी छोटे और मध्यम वर्गीय शहर हैं, वहां पे ट्रीटमेंट की फैसिलिटी ही अभी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो जब तक हम,
1: अब मुझे लगता है कि इस तरह के शहरों में लोग एक अपने मकान में ही एक हाउस भी बना लेते हैं, ठीक है, जो उनके वॉशरूम से रिलेटेड सारे पानी और जो,
0: तो ये सोसाइटीज में ज्यादा है। यदि आप एक निजी घर की बात करें, तो एक निजी घर ज्यादातर तरीके पे अभी भी म्यूनसिपैलिटी की सर्विस पे ही अटका है। लेकिन जैसे आप ये अपार्टमेंट की बात करेंगे, जो आजकल छोटे शहरों में भी पहुंच रहे हैं, तो इनके खुद के ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, इनका खुद का कचरा कलेक्ट करने का फैसिलिटी होता है। ये लोग अपने कचरे को, अपने वेस्ट को किसी न किसी तरीके के रिसोर्स या किसी न किसी तरीके के उसमें कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो पहला जो मेरा जो पॉइंट रहेगा सर इसमें, वो ये है कि अभी हमारे छोटे और मध्यम वर्गीय शहर तैयार नहीं है, लेकिन जरूरत आ चुकी है। तो हम जितना इसमें डिले करते जाएंगे शहर, या जितना इसको देरी करते जाएंगे, उतना ही जलवायु की परिस्थिति और खराब होती जाएगी। जैसे आप यदि असम जैसे एरिया की बात करें, जहाँ पे पानी फ्लडिंग बहुत ज्यादा होता है, अब यदि फ्लडिंग बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि शहरों में पानी भर रहा है, और यदि आपका गंदा पानी ट्रीट नहीं हो रहा है या वो इधर उधर फैल रहा है, तो वो आपके फ्लडेड वाटर के साथ में मिक्स होगा और वो आम जनता के गलियारों में, घरों के आसपास में पड़ा रहेगा। उसमें ईकोलाय, अलग अलग बैक्टीरिया, मच्छर, अलग अलग टाइप की बीमारियां उससे पैदा होती रहेंगी। तो जब तक हम अपने कचरे को और अपने वेस्ट वाटर को सबसे पहले कंटेन करके ट्रीट नहीं करते, तब तक हम वेल्थ और उसके कॉन्वर्जेशन पे नहीं जा सकते। और छोटे और मध्यम वर्ग के टाउन अभी उसको कंटेन करने में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा जो चीज सर, एक और पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, वो है कि जब हम वेस्ट टू वेल्थ या वेस्ट टू एनर्जी या फिर वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट या यूज्ड वाटर का भी बात करते हैं, तो अभी जिस टाइप का काम हम लोगों ने सबने लेके रखा है, वो काम भी बहुत ही थोड़ा सा टोकन की तरह से ज्यादा चल रहा है, रादर देन एक एक्चुअल काम की जगह वो थोड़ा चेक मार्क की तरह से ज्यादा चल रहा है। तो जैसे आप प्लास्टिक का देखेंगे, तो प्लास्टिक क्योंकि उसका जरूरत बहुत हाई है, प्लास्टिक में आप देखेंगे कि वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से
1: चल रहा है, और खास करके उसमें जो लोकल में कहें कबाड़ी जो करते हैं
0: वो भी, तो उसमें इनफॉर्मल सेक्टर
1: उनके लिए बहुत हेल्प करते हैं कलेक्ट करने में, स्टोर करने में और एक एजेंसी तक पहुंचाने में,
0: क्योंकि उसके अंदर एक वैल्यू है, उसके अंदर उनको पैसा मिलता है। लेकिन जैसे आप प्लास्टिक को छोड़ के बाकी वेस्ट का बात करें, तो उनके लिए अभी भी उस टाइप का वेल्थ का प्रबंधन, वेल्थ के अराउंड होना चाहिए कि अभी वेल्थ कैसे जनरेट होगा। प्लास्टिक में तो है लेकिन बाकी वेस्ट की स्ट्रीम में नहीं है। तो ये भी कुछ चीजें ऐसी ऐसी हैं जो कि हमें

0: दूर से देखने में लगता है कि हाँ वेस्ट टू वेल्थ की बात हो रही है, लेकिन आप जितना अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि हम एक सर्टेन टाइप ऑफ वेस्ट का ही बात कर रहे हैं, या हम एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ यू नो वाटर का यूसेज का बात कर रहे हैं। तो ये भी कुछ चीजें प्रॉब्लम बनती है।
1: आपने जो है एक बहुत ही उच्च संस्थान से अध्ययन किया हुआ है, और वो भी मैनेजमेंट के, रूरल मैनेजमेंट के, और रूरल डेवलपमेंट के लिए एक भारत सरकार का अलग से मंत्रालय है जो इस क्षेत्र में कार्य करता है। आपने जब इस संस्था की स्थापना की, जो आप फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैबिटेट की बात करते हैं, तो इसका आइडिया आपको कैसे मिला, आपको क्या इसकी जरूरत लगी, और इसमें आपका अनुभव क्या है कि आपने किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में गए हैं, तो आपको क्या फायदा या कमियां देखी है?
0: पिछले 10 साल से मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो मैंने जब अपना काम करना शुरू किया था तो मैंने रूरल सेक्टर में ही काम शुरू किया था। एंड रूरल में हम उस टाइम पे बहुत ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे थे, जैसे आप देख रहे थे कि उसी टाइम पे स्वच्छ भारत मिशन भी आया था जिसने शौचालय को लेकर एक बहुत बड़ा मुहिम क्रिएट किया था। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं काम करता गया, मैं रूरल से फिर थोड़ा अर्बन शहरी इलाकों की तरफ मैंने काम देखना शुरू किया, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं छोटे शहर, मध्यम शहर और रूरल की जो प्रॉब्लम है उनको आप एकदम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके छोटे शहरों के पास में ही पूरे गांव बसे हुए हैं, मध्यम वर्गीय शहरों के पास में गांव बसे हुए हैं। गांव की बाउंड्री, वैसे म्युनिसिपल बाउंड्री वैसे तो डिफाइंड है, लेकिन कचरा यदि शहर का कचरा उसी गांव के या फिर बीच के एरिया में फेंक दिया जाता है, तो वहां से हम लोगों ने ये चीज को समझना शुरू किया कि यदि आपको भारत में पानी की या आपको कचरे की व्यवस्था को सही करना है, तो आप इसको शहर और गांव में पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते, यदि आप छोटे और मध्यम वर्गीय शहरों का बात कर रहे हैं। फिर जब हमने थोड़ा फोकस करना शुरू किया छोटे और मध्यम वर्गीय शहरों के ऊपर, जैसे हमने पहले भी बात करी, हमें ये सब समझ में आने लगा कि छोटे शहरों में बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन छोटे शहरों में उस पॉपुलेशन के हिसाब से फैसिलिटी नहीं बढ़ रही, या उनके पास में रिसोर्स नहीं बढ़ रहे, कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। तो एक जो बड़ा, और आप आसपास में देखेंगे तो बहुत सारे जो संस्था है वो अभी भी बड़े बड़े शहरों में काम करती है, क्योंकि टीयर टू टीयर थ्री में ज्यादातर क्या होता है कि विजिबिलिटी नहीं होती। जैसे आप कोई चीज यदि दिल्ली में करेंगे, बंबई में करेंगे, तो आप उसको चार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी दिखा सकते हैं, चार प्राइवेट लोगों को अलग से भी दिखा सकते हैं। वही चीज को आप यदि एक बहुत ही रिमोट से छोटे शहर में करेंगे तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। प्लस क्या होता है कि आप कोई भी सीएसआर काम करना चाहता है तो वो चाहता है कि भाई सरकार आपकी एक्टिवली वहां पे काम करे, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में काम करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में काम करना आसान है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपैलिटी के साथ में काम करना, मेयर्स के साथ में काम करना, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके साथ में काम करने के लिए आपको उनका लोकल कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, आपको उनकी लोकल परेशानी को, तो प्लानिंग से लेके मॉनिटरिंग से लेके सब कुछ डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको उसमें ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो वो सब चीजों की वजह से भी हमने देखा कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग इन सब एरिया में काम नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने सोचा कि बिकॉज यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आज नहीं है, लेकिन आज से 10 साल में आपको और दिखेगा। सबसे बड़ी चिंता जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण ही। हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि गांव प्रदेश से लोग बाग शहरों की तरफ और बढ़ना शुरू हो गए हैं। हम शहरों में भी देख रहे हैं कि कैसे 10 मिनट की सर्विसेज और तेजी से बढ़ेंगे। तो जिस तरीके का शहरीकरण हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है सर, और इसी शहरीकरण के साथ में कई जगहों पे बहुत ही अत्यधिक वर्षा देख रहे हैं, कई जगहों पे हम कई लंबे सूखा देख रहे हैं। तो इन सब चीजों का यदि मैं एक इम्पैक्ट यदि देखता हूँ तो विकास के ऊपर भी, स्वास्थ्य के ऊपर भी, और आपकी आजीविका के ऊपर भी पूरी तरह से दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ में एक दो चीजें थोड़ी अच्छी हो रही है। छोटे शहरों में जल प्रबंधन को लेकर जागरूकता बढ़नी शुरू हो गई है। बहुत सारे आपके जो वर्षा जल के, यदि मैं संचयन की बात करूं या फिर मैं आपके अपृष्ट जो आपका जो खराब जो जल है उसको फिर से कैसे उपयोग में ले उनकी बात करूं, तो इसके अराउंड साइंटिफिकली भी और मेंटली भी दोनों तरीके से, कि एक आपके विचारधारा के तरीके से भी और एक आपके वैज्ञानिक तरीके से भी एक प्रोग्रेस हुई है। लोग इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस भी देने लगे हैं, लोग इसके बारे में जागरूक भी होने लगे हैं, और लोग इसको समझना भी शुरू करने लगे हैं। तो मुझे इस चीज से एक आशा मिलती है कि यदि हम जिस टाइप की स्कीम्स वो हैं, यदि हम उनको छोटे शहरों में उनके लोकल स्रोतों के अराउंड, उनकी लोकल परेशानियों के अराउंड, या फिर उनके लोकल जो रहने सहने के तरीके हैं उनके अराउंड यदि हम सॉल्यूशंस को थोड़ा बिल्ड करेंगे, और म्युनिसिपैलिटी को, जो आपके छोटे शहरों की या मध्यम वर्गीय शहरों की म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनको हम एक सही कैपेसिटी और थोड़ा बहुत उनको फाइनेंस मोबिलाइज करने के तरीके, तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में हमारी परिस्थिति उतनी बुरी नहीं होगी जितनी हमें शायद आज देख के लग रही है।
1: असीम जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बढ़ते शहरीकरण के दौर में जल, स्वच्छता और सतत विकास। अभी आप असीम आचार्य, सह संस्थापक फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैबिटेट्स, कार्यक्रम निदेशक एवं सलाहकार बोरडा से दिलीप झा की ये बातचीत सुन रहे थे। और इसी के साथ धरती आकाश का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाई का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: ये आकाशवाणी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

0: न्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमरीका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमरीकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu reached at her village Paharpur in Odisha's Mayurbhanj district today to celebrate her 68th birthday amid a warm welcome from local residents. Odisha Governor Haribabu Kambhambati and Chief Minister Mohan Charan Manji received the President on her arrival. Prime Minister Narendra Modi has arrived at Paharpur. The President will accompany the Prime Minister on a visit to her village and the two leaders will offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves. Later, the President and the Prime Minister will participate in a major public program at Rai Rangpur, marking 2 years of the Odisha government. Development projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Paschim Bongo Divas today. In a social media post, she said that the day marks a significant milestone in the state's history reflecting the aspirations and resolve that ensured West Bengal remained an integral part of India.

0: सपने सच हों इसके पहले आपको सपने देखने होंगे। सपने केवल कल्पना नहीं बल्कि हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। लक्ष्य ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दीपा, और यही जो सपने हैं हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए बड़ा सोचिए, लक्ष्य तय कीजिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए।
0: बिल्कुल।
1: अब देखो, लक्ष्य की बात हुई है और अब हमारे कार्यक्रम में एक नया सेगमेंट भी जुड़ा है, प्रश्न पूछने का, जिससे आप और हम बेहतर तरीके से जुड़ सकें। तो आज का प्रश्न हम पूछ लेते हैं दीपा जी अपने श्रोताओं से, वो ये है कि आप जिस भी उम्र में हैं, अब आपके जीवन में आगे का लक्ष्य क्या है?
0: अरे वाह कल्पना, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा। और दोस्तों, आप हमें अपने जवाब ईमेल करें fmgoalgmail.com पर, हम जरूर इसी अंक में, क्यों कल्पना?
1: बिल्कुल,
0: है ना, आपके जवाब शामिल करेंगे। और तब तक सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, ये कौन आया, जो कि फिल्म बाजी से है और गायिका हैं गीता दत्त।

0: दोस्तों, आज 20 जून है और हर वर्ष इसी दिन विश्व शरणार्थी दिवस रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। ये दिवस उन लोगों के साहस और संघर्ष को सम्मान देने के लिए समर्पित है जिन्हें युद्ध, हिंसा या संकट के कारण अपना घर छोड़ना पड़ता है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपा। और इस वर्ष जो शरणार्थी सम्मेलन है उसके 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जिसने शरणार्थियों के अधिकारों और सुरक्षा की महत्वपूर्ण आधारशिला रखी।
0: बिल्कुल सही कहा कल्पना। और दोस्तों, अनटिल एवरीवन इज सेफ इस वर्ष 2026 का संदेश है, अर्थात जब तक हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं तब तक सुरक्षा का वादा अधूरा है।
1: बिल्कुल। और इस दिवस का उद्देश्य जो है वो ये है कि हमें मानवता, करुणा और सह अस्तित्व के मूल्यों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो दीपक, चलो अब आज हम भी ये संकल्प लेते हैं और अपने श्रोताओं को भी बोलते हैं कि वो भी हमारे साथ ये संकल्प लें कि भाई प्यार से रहेंगे, प्यार पाएंगे और प्यार बांटेंगे।

0: मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के हुनर होते हैं। कोई अच्छा गायक होता है, कोई कलाकार होता है दीपा जी, और कोई खिलाड़ी तो कोई विद्वान। लेकिन इन सभी हुनरों से बढ़कर एक ऐसा हुनर है जो जीवन को सरल, सुंदर और सफल बनाता है, और ये हुनर है हमेशा खुश रहना।
1: और मुझे लगता है तुम तो हमेशा रहती हो खुशी। हाँ बिल्कुल। खुशी केवल चेहरे की मुस्कान नहीं है दोस्तों, बल्कि मन की एक सकारात्मक अवस्था है। जो व्यक्ति हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहना सीख लेता है, वो जीवन की कठिनाइयों का सामना भी साहस और धैर्य के साथ कर सकता है। खुश रहने वाला व्यक्ति स्वयं भी सुखी रहता है और अपने आसपास के लोगों को भी खुशी बांटता है।
0: क्या बात है। और देखो ना, आज के समय में लोग भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उनके पीछे भागते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनसे ना परेशान हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। ऐसे में खुश रहने का जो हुनर है ना, वो हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए।
1: और खुश रहने के लिए दोस्तों संतोष, कृतज्ञता, सकारात्मक सोच और अच्छे संबंधों का होना आवश्यक है। दूसरों की मदद करना, प्रकृति और परिवार के साथ समय बिताना, योग और ध्यान करना आपकी आंतरिक खुशी को सदैव बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखो, खुश रहने वाला जो व्यक्ति होता है ना दीपक, वो सिर्फ अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाता बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। इसलिए हमें जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराने और खुश रहने का अभ्यास सीखना चाहिए। तो अपने दोस्तों से भी हम यही कहेंगे कि एक बार मुस्कुरा दो।
1: बिल्कुल।

0: जो तुम मुस्कुरा दो, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी धूल का फूल और गायक कलाकार थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: और दीपा जी अपने दोस्तों को याद दिला देते हैं अपना प्रश्न जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था कि भाई कुछ हमारे श्रोता जो है वो हो सकता है अभी जुड़े हों। तो आपके लिए प्रश्न ये है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन के अलग अलग पन होते हैं, बचपन होता है, युवापन होता है और वृद्धावस्था भी होती है, लेकिन हमेशा आपके पास आगे जीवन जीने के लिए एक लक्ष्य होता है, क्योंकि निरुद्देश्य तो किसी का जीवन नहीं होता। तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो आप हमें ईमेल करें अपना उत्तर और हम उसको अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अब बात करते हैं, थोड़ी सी आपको जानकारी बढ़ाते हैं। भाई आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ऐसे में एक ऐसी जानकारी है मेरे पास जो आपके बहुत काम आएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो योग से जुड़ना चाहते हैं लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो इस समस्या को दूर करेगी नमस्ते योग ऐप।
0: बिल्कुल, और जिसे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा योग को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। दोस्तों ये एक मोबाइल ऐप है जिसके अंतर्गत योग केंद्रों, प्रशिक्षकों और योग कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
2: बिल्कुल, और इस ऐप में तरह तरह के योगासन, प्राणायाम और ध्यान से संबंधित जो शैक्षिक सामग्री होती है उसका समावेश किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को योग अभ्यास के लिए प्रेरित करता है। इसमें मौजूद फिटनेस ट्रैकर की सुविधा से कदमों यानी जो आप स्टेप्स चलते हैं और कैलोरी की निगरानी भी की जा सकती है कि भाई आप कैलोरीज कितनी बर्न हुई है, आपको करनी है।
0: बिल्कुल, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय। और साथ ही दोस्तों योग क्विज और अन्य गतिविधियों के माध्यम से योग संबंधी ज्ञान बढ़ाने से ये ऐप जो है सहायता करता है। यानी नमस्ते योग ऐप योग को सरल, सुलभ और लोकप्रिय बनाने का काम कर रहा है, तो आप भी इससे जरूर जुड़ें और बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते रहें।
2: बिल्कुल, और हम तो यही कहेंगे दीपा जी कि भाई हम योग का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे।

0: कभी तेरा दामन, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, गायक कलाकार थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी।
1: बिल्कुल दीपा, और अब बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिसने लिप्पन आर्ट और वेडिंग प्रोडक्ट जैसे पारंपरिक काम से देश भर में अपनी पहचान बनाई है। ढेर सारी मेहनत, अनोखी रचनात्मकता और आत्मविश्वास के दम पर इंदौर की युवा उद्यमी अदिति शाह आज सोशल मीडिया और हस्तशिल्प जगत में अपनी अलग पहचान बना चुकी है।
0: और दोस्तों, इन्होंने लिप्पन आर्ट, वेडिंग डेकोर आइटम्स और क्राफ्ट रॉ मटेरियल के क्षेत्र में इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद देश भर के ग्राहकों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। पहले अदिति ने छोटे स्तर से अपनी शुरुआत कर अपने जुनून को व्यवसाय में बदला। आज उनके सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं और उनके वीडियो और उत्पाद सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं।
1: बिल्कुल, और उनके बनाए हुए हैंडमेड प्रोडक्ट्स की जो मांग है वो भारत के विभिन्न राज्यों से आती है, यानी ऑल इंडिया में ग्राहकों का जो नेटवर्क है वो उनका बन चुका है। वे आज क्राफ्ट रॉ मटेरियल के लिए विश्वसनीय नाम है और हजारों संतुष्ट ग्राहकों का विश्वास भी है उन पर।
0: इंदौर की अदिति शाह की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम अपने काम पर विश्वास करें और लगातार मेहनत करते रहें तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है।

0: श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे गाइड फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने।
1: और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भोजन जो है हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, यही हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे स्वास्थ्य को आधार बनता है। शायद यही कारण है कि आज लोग अपने भोजन की गुणवत्ता और उसके स्रोत के बारे में पहले से कहीं अधिक जागरूक हो रहे।
0: बिल्कुल सही कहा दीपा, और इसी जागरूकता के कारण आजकल ऑर्गेनिक या जैविक खाद्य पदार्थों की भी चर्चा बढ़ रही है। कुछ वर्ष पहले की बात करें तो ये उत्पाद सीमित मात्रा में उपलब्ध होते थे, लेकिन आज अब देखो तो
1: खेती में प्राकृतिक तरीकों को महत्व दिया जाता है और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उपयोग को कम करने का प्रयास बहुत किया जाता है, और यही कारण है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों का रुझान इसकी ओर और हो रहा है।
0: अरे वाह, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसकी शुरुआत जो है अपने घर से भी कर सकते हैं। क्यों दीपा, अगर थोड़ी सी जगह हो तो वहाँ पे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च या मेथी जैसे पौधे गमलों में भी उगाए जा सकते हैं। इससे ताज़ी सब्जियां, ताजगी और स्वाद के साथ एक अलग संतोष भी हमें मिलेगा। निश्चित रूप से ये ऑर्गेनिक जो फूड है उसके प्रति बढ़ती जो रुचि है, ये हमें याद दिलाती है कि स्वस्थ जीवन और प्रकृति के साथ संतुलन दोनों ही हमारे लिए जरूरी
1: है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसलिए भारत सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY भी जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही

है ताकि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिले। याद रखिए, प्रकृति के करीब लिया गया हर हमारा छोटा कदम बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक सार्थक कदम बन सकता है।

0: श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में और फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44। और देखो दीपा, हमारे बहुत से श्रोता जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमें ईमेल भी भेजे हैं। सुनील जी हैं, सुदर्शन मुखी जी हैं, इन लोगों ने हमें भेज रखे हैं ईमेल, इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और हमारे एक श्रोता ने हमारे प्रश्न का उत्तर भी लिखा है, पढ़कर बताओ ना क्या लिखा है।
1: इन्होंने लिखा है कि आप दोनों बेटियों को राम राम, बुढ़ापे में थोड़ी कमी तो आ जाती है लेकिन फिर भी इंसान कोशिश करे तो लक्ष्य कोई भी हो यानी कि अच्छा होना चाहिए। जिंदगी में बदलाव जरूर आते हैं, उस पर हमें कायम रहना चाहिए। बच्चे अगर बात माने तो ठीक है, नहीं तो हमें खुद को बदलना चाहिए, उसी में खुशी महसूस होगी। शुक्रिया गौरी शंकर नागरी।
0: गौरी शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए हम बहुत अच्छी जानकारी अब देने वाले हैं। जानकारी क्या, आप हमें दोबारा से

0: करेंगे क्योंकि हम बात करने वाले हैं गर्मी की छुट्टियों की। जी हाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए वर्ष का सबसे आनंददायक समय होती हैं, बड़ों के लिए भी होती हैं
1: और जिसका सबको इंतजार रहता
0: बिल्कुल
1: है।
0: और जब परीक्षाएं समाप्त होती हैं तो छुट्टियों का इंतजार शुरू हो जाता है। इस दौरान बच्चों को खेलने, घूमने और नई नई चीजें सीखने का अवसर मिलता है। हम सभी भी बचपन की गर्मियों में जाते थे जब नानी के घर या फिर कहीं घूमने, तो उसकी बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं। तो दीपा जी, आपकी कोई याद है तो बताओ ना।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल्पना मैं बताती हूँ। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि जब हम छुट्टियों में गए थे तो उस रात में बिजली चली गई। हम सभी घर की छत पर बैठे और नाना जी से पुरानी कहानियां सुनी। उन्होंने अपने बचपन के कई रोचक प्रसंग सुनाए कि कैसे वो स्कूल जाने से घबराया करते थे और छुट्टियां होते ही खुश होते थे। और नानी जी ने तो उस रात हमें कई भजन सुनाए और तब हमें पता चला कि नानी कितना अच्छा गाती हैं। तो हमने उन्हें कहा भी कि नानी आपको तो सिंगर होना चाहिए था, और इस बात पर नानी बस मुस्कुरा दी। अब तुम बताओ अपना कोई किस्सा।
0: अच्छा, क्योंकि मेरा जो घर है वो गांव में था तो हम मतलब खुद कहीं नहीं जाते थे, लेकिन हमारे घर बहुत सारे लोग आते थे और हमें सबसे ज्यादा इंतजार रहता था दीदी और उनके बच्चों के आने का। जैसे ही वे आते थे हम दिन भर आम के बाग में आम खोजते रहते थे, कभी जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ते थे और खजूर के लिए तो हमारे बहुत झगड़े होते थे, कभी तालाब में पैर डालकर बैठते थे तो कभी ट्यूबवेल की हौदी में भी हम खूब मस्ती से नहाया करते थे, बहुत मजे करते थे। बगीचे का हर पक्षी हमारा दोस्त होता था और हर पशु हमारा साथी, यानी हम परिवार के साथ प्रकृति के साथ का भी आनंद लिया करते थे।
1: नहीं नहीं बिल्कुल सही, तुम जो बातें बता रही हो मुझे सब याद आ रही हैं। और तब कल्पना देखा जाए तो तब हमें ना गर्मी की फिक्र होती थी और ना ही धूप से काले हो जाने की। और हमारे श्रोताओं के पास भी हम जानते बहुत रोचक किस्से होंगे, तो जल्दी से हमें ईमेल कर दीजिए अपने रोचक किस्से fmgoldga@gmail.com पर।
0: और इस अच्छी सी जानकारी के बाद अपने दोस्तों को सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत रोटी फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

0: और कल्पना, अब क्या इरादा है, कुछ खाने की बातें हो जाए?
1: बिल्कुल होनी चाहिए भाई, देखो घरानन कार्यक्रम है तो फिर खाने की बात तो होनी चाहिए।
0: दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम को फलों का राजा कहा जाता है और इसकी मिठास का आनंद लेना भला किसको पसंद नहीं होता। और बाजारों में आजकल बहुत आम भी आए हुए हैं, ऐसे में क्यों ना आम से बनने वाली एक ऐसी मिठाई की बात या मीठे की बात की जाए जो खाने में स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी। तो आज हम अपने श्रोताओं को बताते हैं आम्रखंड के बारे में। जैसे श्रीखंड होता है उसी को कैटेगरी में आएगा आम्रखंड।
1: बिल्कुल, और ये बहुत ही स्वादिष्ट एक मीठा होता है। तो दीपा जी, आइए जानते हैं कि इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। और श्रोताओं, आप या तो इसको रिकॉर्ड करो या फिर अपने डायरी पेन से नोट करो, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 कप हंकड़ यानी कि अच्छी तरह छाना हुआ दही, 1 कप आपको चाहिए ताजा आम का गूदा, 2 बड़े चम्मच आपको पिसी हुई चीनी, 1/2 कप बारीक कटे हुए आम के आपको टुकड़े लेने हैं, और इसको सजाने के लिए आपको थोड़ा सा पिस्ता या बादाम लेने हैं, वो भी छोटे छोटे से कटे हुए।
0: और दोस्तों, अब इसकी विधि भी जान लेते हैं। हंकट, आम का गूदा और चीनी को अच्छी तरह से फेंट लें। जब मिश्रण एकदम मुलायम और क्रीमी हो जाए तब उसमें कटे हुए आम के जो टुकड़े हैं उनको मिला दें। अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। परोसते समय ऊपर से कटे हुए पिस्ता और बादाम जो भी आपकी इच्छा अनुसार हो डाल दें, तो आपका ये जो आम्रखंड देखिए कितनी जल्दी बन जाता है और स्वादिष्ट भी बहुत होता है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों देखो, दही में जो है वो होता है प्रोटीन और कैल्शियम, वो बहुत प्रचुर मात्रा में होता है जो हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। साथ ही दही जो है वो पाचन में भी हेल्प करता है, और अगर आप इसको खाएंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो बिल्कुल आप इस फायदे के लिए भी इसे खाएं।
0: और बिल्कुल कल्पना, वही कहते हैं कि आम में विटामिन ए, विटामिन सी और कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी माने जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दीपा। तो हम अपने दोस्तों से यही कहेंगे कि भाई, जब तक आम का मौसम है, आपको इस स्वादिष्ट और पौष्टिक आम्रखंड को घर पर बनाकर रखना चाहिए, खाना चाहिए
0: और खिलाना भी चाहिए।
1: देखो, मेहमान आए तो उनको अगर आप खिलाएंगे तो ये एक नई चीज हो जाएगी उनके लिए। फिर वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने इसे कैसे बनाया, तो फिर आप उन्हें बताओ कि भाई हमने इसको ऐसे बनाया है।
0: और सुना कहाँ पर?
1: रेडियो पर, घर आंगन कार्यक्रम। तो आप जरूर बताइएगा और

0: भी बोलिएगा कि भाई घर आंगन कार्यक्रम आपको भी सुनते रहना है। तो दीपा देखो हमने इतनी मीठी मीठी सी रेसिपी बताई है, तो अब दोस्तों को सुना देते हैं एक मीठा मीठा सा गीत।
1: हाँ, और ये गीत है आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। गायक हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफी और फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ मुझे यानी कल्पना को और मुझे यानी दीपा को दे अनुमति, नमस्कार।
1: आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में

0: पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्षीय थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्वभर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi arrived at Paharpur in Odisha's Mayurbhanj district today. He was received by Odisha Governor Dr. Hari Babu Kambapati and Chief Minister Mohan Charan Manchi. Earlier, President Draupadi Murmu had reached her village Paharpur to celebrate her 68th birthday in the presence of the Prime Minister. The two leaders are scheduled to offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit the Skill Development Centre and Paharpur School, highlighting initiatives aimed at empowering tribal communities through education and skill development. Later in the day, the President and the Prime Minister will participate in a public program at Rai Rangpur, marking the completion of 2 years of the Odisha government. Developmental projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. Both the President and the Prime Minister will also address a large public gathering on the occasion. Prime Minister Narendra Modi will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata tomorrow. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dhunagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. INS Sanshodhak is a survey vessel designed for coastal and deep water hydrographic operations, while INS Agra is an anti-submarine warfare craft equipped with torpedoes, rocket launchers, and sonar systems for coastal defense. The Navy said the vessels have

0: more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Pashchim Bongo Diwas today. In a social media post, she said that the day marks a significant milestone in the state's history, reflecting the aspirations and resolve that ensured West Bengal remained an integral part of India. The Vice President said that on this day in 1947, a historic decision paved the way for the creation of West Bengal as an integral part of India. He said that West Bengal occupies a special place in the country's civilizational and national life. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce, and social reform. The National Testing Agency or NTA has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test or NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The NTA noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. International Yoga Day 2026 or ITY 2026 will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. As part of the celebrations, the Ministry of Culture will organize special International Day of Yoga events at 100 iconic locations across the country. Former senior IIS officer Dipankar Mukhopadhyay passed away in Kolkata last night after a brief illness. He was 76. Mr. Mukhopadhyay served in various media units at the Ministry of INB and in News Services Division of All India Radio. He also served as AIR Special Correspondent in Singapore. He survived by his wife and daughter. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Brazil had come into the game under pressure after being held to a draw by Morocco in their opening Group C fixture. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का. एक ही फिल्म कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश.
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू. दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन. वेटर ने फेंका स्पिन. 4,000 का आया बिल. रोहन का धड़का जोर से दिल. वो अपना वॉलेट गया था भूल. रिया ने किया डिजिटल पेमेंट. बन गई कूल. आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट. डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट.
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान.
4: हर लेन देन अब है आसान.
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ. मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी कार्यक्रम एक ही फिल्म में. स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार. दोस्तों कार्यक्रम एक ही फिल्म जिसमें हम आपके लिए चुनकर लाते हैं समय के पहिए से एक फिल्म और आज उस पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाएंगे और चलेंगे उस साल में जब आई सिनेमा घर में एक ऐसी फिल्म जिसने अपनी सादगी अपने बेहतरीन संगीत और अपनी खूबसूरत वादियों से सबका दिल जीता. जी हाँ साल सन 1971 यानी कि 1971 और आज हम बात करेंगे निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की सदाबहार फिल्म बन फूल की. जी दोस्तों बन फूल नाम सुनते हमारे सामने जंगल हरे भरे जंगल दिखते हैं चहचहाते पक्षी और नेचर का जो एक अछूता रूप है हमें वो नज़र आता है और इस कहानी का भी इसी तरह से एक यूनिक पॉइंट है. जी हाँ जिस तरह से बनफूल हमने नाम सुना और हमें पहाड़ जंगल और वहाँ की खूबसूरती याद आई वैसे ही इस फिल्म में इसकी जो प्लस

दोस्तों वन फूल आज की फिल्म कार्यक्रम एक ही फिल्म में हमने आपको बताया कि इस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का स्टार कास्ट। अगर हम इस फिल्म के सितारों की बात करें तो इस फिल्म में थे सदाबहार अभिनेता जितेंद्र जंपिंग जैंग, बेहद खूबसूरत बबीता उनके साथ, और उनके साथ थे विलन के रूप में अपनी धाक जमाने वाले शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन इस फिल्म में जो शत्रुघ्न सिन्हा है उनका अंदाज थोड़ा सा अलग था। और इस फिल्म की अगर हम संगीत की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के खूबसूरत से संगीत ने इस फिल्म को और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों इस फिल्म के बारे में और भी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं खूबसूरत से गीत मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में।

जी दोस्तों, फिल्म बनफूल, इस फिल्म की एक खास बात आपको बताती हूँ कि इस फिल्म में जितेंद्र साहब का जो लुक था, जो उनका कैरेक्टर था, वो उनके उस वक्त जो उनकी फिल्मों में इमेज थी उसके बिल्कुल अलग था। जी हाँ, उस वक्त जितेंद्र जी मशहूर थे अपने जंपिंग जैक वाले शहरी इमेज वाले लड़के के रूप में, जो कि सफ़ेद कपड़े सफ़ेद जूते पहनते थे। लेकिन इसके इतर इस फिल्म में उन्होंने बिल्कुल एक सीधे साधे गांव के लड़के का कैरेक्टर निभाया है, जो कि मासूम जानवरों से प्यार करता है और पूरी तरह से वो जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके करीब है। लेकिन जैसा कि इस फिल्म का नाम है बन फूल, यानी कि जंगल का फूल, अब जंगल की पृष्ठभूमि पर यह फिल्म बनी है तो जानवरों का होना तो लाजमी है। और इस फिल्म में जो जितेंद्र साहब का कैरेक्टर है वो दिखाया गया है कि वो जानवरों के बहुत करीब था। लेकिन आपको पता है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान असली हाथी और भालुओं का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, और जितेंद्र साहब को उन जानवरों के साथ तालमेल बिठाने के लिए शूटिंग से काफ़ी वक्त पहले वक्त निकाला और उसके साथ में उन्होंने थोड़ी सी दोस्ती की उन जानवरों के साथ, ताकि स्क्रीन पर जो उनकी दोस्ती है वो बिल्कुल असली लगे।

लगी थी। और इस फिल्म में इन दोनों के चुनाव के पीछे भी एक यही वजह थी, क्योंकि जितेंद्र साहब को विजय भट्ट जी ने ये सोच करके लिया कि भाई जो उनकी एक इमेज है उससे अलग उनको बनाना है, और वो कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते थे, और उन्हें एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो कि मासूम भी दिखे और उस पर जो दर्शक हैं वो भी भरोसा कर सकें। और जितेंद्र साहब से ज़्यादा मासूम उस वक्त कोई नहीं होगा। और इसी तरह से उन्होंने बबीता जी का चुनाव किया इस फिल्म के लिए। और वैसे भी बबीता कपूर उस वक्त बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी, और एक उनकी एक बबली और एक मॉडर्न

मिस थी। और इन्होंने इस फिल्म में भी शहर से आई एक लड़की का किरदार है जो कि शहर से गांव में आती है, और वहां गांव में जो लड़का है एक गांव का, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होती हैं, उससे प्यार करने लगती हैं। और ये जो फिल्म है, इस फिल्म में जब बबीता जी को साइन किया गया था तो उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा हिट फिल्में दे रही थी, काफ़ी ज़्यादा उनका जो करियर था वो ऊंचाइयों पर था। लेकिन इस फिल्म में जब उनको साइन किया गया उसके बाद में, उस वक्त उनकी जो शादी की बातें चल रही थी रणबीर कपूर के साथ में, रणधीर कपूर जी के साथ में, और फाइनल थी ऑलमोस्ट। और यही वजह थी कि विजय भट्ट साहब चाहते थे कि पपीता फटाफट से उनकी फिल्म में काम करे, टाइम से पहले वो हो जाए ताकि उनकी फिल्म इफेक्ट ना करे उनकी शादी की बात से। और वही हुआ, क्योंकि ये जो फिल्म थी वो बबीता के करियर की आखिरी दौर की फिल्मों में से एक थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने फिल्में छोड़ दी, और ये उनकी शादी से कुछ वक्त पहले की ही फिल्म है।

जी दोस्तों, फिल्म बनफूल, इस फिल्म में जहां जितेंद्र और बबीता को बनफूल के लिए साइन करके बहुत से लोगों को लगा था कि ये जो फिल्म है कोई डिस्को या क्लब वाला डांस भी होगा ज़रूर इस फिल्म में, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो सफ़ेद जूते पहनने वाले जितेंद्र जंगलों में धोती पहन के घूम रहे हैं और बबीता बिल्कुल सीधे साधे गाँव के कपड़ों में नज़र आई। डायरेक्टर विजय भट्ट ने उस दौर की सबसे ग्लैमरस जोड़ी को बनफूल बनाकर पूरी तरह से कुदरत के रंग में रंग दिया था। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म के तीसरे कैरेक्टर यानी कि शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में, तो उनके लिए तो मतलब क्या कहें, उनकी तो आवाज़ इतनी दमदार है और विलेन के किरदारों से वो सुपरस्टारों को भी टक्कर देते थे। इस फिल्म में भी उन्होंने अजय नाम के लड़के का किरदार निभाया जो कि बबीता के प्यार में पूरी तरह से पागल है। और इस फिल्म में कई शॉट ऐसे भी थे जब शत्रुघ्न सिन्हा डायलॉग डिलीवरी करते थे तो वो इतने कड़क अंदाज में, उनके तेवर इतने कड़क होते थे कि सेट पर जो लोग होते थे जो कि शूटिंग देख रहे होते थे या बाकी लोग होते थे वो उनकी खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी को देख कर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते थे। यहाँ तक कि खुद जो विजय भट्ट जी हैं वो भी यही उनका भी यही कहना था कि विलन होने के बाद बावजूद भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब में एक अलग तरह का आकर्षण था और शायद यही वजह थी और यही रीज़न है कि उनकी ये दमदार पर्सनालिटी की वजह से वो हमेशा सुपरस्टार्स, हीरोज़ वगैरह सबसे ऊपर हो जाते थे।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। कल्याण मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले के साथ। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीयू स्वर्णकार के साथ। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अगला संदेश आया दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज और बीबी चाहत के साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो संदेश है इसको भेजने वाले जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा के साथ। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया है, इसको पहुंचाने वाले हैं अजित भाव सर जी, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी जो बातें हैं, जानकारी हम तक पहुंचाई हैं। और लिखते हैं कि राजेश खन्ना साहब की फिल्म हाथी मेरे साथी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी और इसी वजह से जितेंद्र की सादगी से भरी फिल्म वन फूल का रिलीज होना एक बड़ा जोखिम था, लेकिन शानदार संगीत और कहानी ने सबको चौंका दिया और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। और भी बहुत अच्छी इन्होंने हम तक जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका। गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता गीता हमारे साथ जुड़े हुए, सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वयाल, प्रथमेश, सर्वद, प्रणाली, सानवी, हर्षदा देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ जुड़े हैं। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू हमारे साथ जुड़े हैं। और गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक चंसोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ हैं संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये संदेश उन्होंने भेजा है मॉडल टाउन करनाल से। तो दोस्तों, ये थे वो संदेश जिनके जरिए हमारे सभी श्रोता हम तक जुड़े और कार्यक्रम एक ही फिल्म जो हम आपके लिए लेकर आए हैं यादों के इस कार्यक्रम में, वन फूल फिल्म की ये छोटी सी दास्तान थी जो हम आप तक लेकर आए, सादगी संगीत और सच्चे जज्बातों से सजी हुई फिल्म। और ये फिल्म हमें बताती है कि सुकून आखिर कुदरत और मासूमियत में ही छिपा है। उम्मीद है आज का सफर आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपके दिल को छुआ होगा और आप मुझे यानी प्रीति को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी सादगी को हमेशा संभाल कर रखिए। तो चलिए छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से। नमस्कार।

अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के आबाई गांव पहाड़पुर का दौरा किया और सदर जमहूरिया के साथ उनकी सालगिरह की तकरीब में भी हिस्सा लिया। वहां पहुंचने पर उड़ीसा के गवर्नर डॉ हरिबाबू कंबमपतिक और वजीर आला मोहन चरण मांझी ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने संथाली जहेरा गोशानी पीठ और होजहरा जाकर प्रार्थना की और गांव के अहम इदारे देखने गए, जिनमें हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक मरकज और पहाड़पुर स्कूल भी शामिल हैं। मोहतरमा मुर्मू ने हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक मरकज में तलबा के साथ बातचीत भी की। बाद में सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने एक अहम अवामी प्रोग्राम में शिरकत की, जो मोहन चरण मांझी की जेर क्यादत उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के सिलसिले में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जाएगा और उनका इफ्तिताह किया जाएगा। इन प्रोजेक्टों में तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनती बुनियादी ढांचा, आबपाशी और पीने के पानी वगैरह समेत कई दूसरे प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार ने 16 तरह के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC अद्वियात की इंसानी इस्तेमाल के लिए तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। अद्वियात के तकनीकी सलाहकार बोर्ड की जानिब से कायम करदा माहरीन की एक कमेटी की रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लेने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन अद्वियात में दाफे अमराज का कोई उनसुर नहीं पाया जाता और ये सेहत के लिए खतरा साबित हो सकती है। जिन अद्वियात पर पाबंदी लगाई गई है उनमें एंटीबायोटिक पर मबनी कुछ अद्वियात, दर्द से राहत देने वाली अद्वियात और कुछ डर्माटोलॉजिकल अद्वियात शामिल हैं। भारत ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग का एहतमाम करेगा, जो पीर से शुरू होगी। इस मीटिंग की सदारत कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के कौमी सलामती के सलाहकार और वफदों के सरबराह दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के बारे में तबादले ख्याल करेंगे। इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA नीट UG 2026 के कल फिर से होने वाले इम्तिहानात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल कर रही है। यह सिलसिला सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और पूरे दिन जारी रहेगा। मुल्कभर के इम्तिहानी मराकज में इस तरह की ड्रिल हो रही है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी अमले के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली कैंट और अशोक विहार फेज 2 के इम्तिहानी मराकज में इस मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। इम्तिहानात को साफ, शफाफ और खुश उसलूबी से कराने की खातिर ये मश्क कराई जा रही है। NTA ने बताया है कि मुल्क भर के 551 और दूसरे मुल्कों के 14 शहरों में इम्तिहान मुनक़िद होगा, जिसमें 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। एजेंसी ने यह भी बताया कि मुनसिफाना और साफ सुथरे इम्तिहान को यकीनी बनाने की खातिर कई मरहलों वाली सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। इसमें CCTV के जरिए निगरानी और आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक शामिल है। इसके अलावा पुलिस मुहाफिजत में इम्तिहानी साजो सामान पहुंचाने के लिए GPS की सहूलत से लैस गाड़ियां भी शामिल हैं। कल ये इम्तिहान 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में रियासती सतह के बैनुल-अक़वामी योग प्रोग्राम में मेहमान खसूसी होंगी। ये प्रोग्राम सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। सदर जमहूरिया आज शाम भारतीय फिजाइया के खसूसी तैयारी से जबलपुर पहुंचेंगी। हवाई अड्डे पर गवर्नर मंगू भाई पटेल उनका खैर मकदम करेंगे। सदर जमहूरिया योग के प्रोग्राम के बाद रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जाएंगी, जहां वो यूनिवर्सिटी की 36वीं जलसे तकसीम इसनाद में मेहमान खसूसी होंगी। इस तकरीब में रियासती गवर्नर भी शामिल होंगे। सदर जमहूरिया के दौरे से पहले जिला इंतजामिया ने डुमना एयरपोर्ट, गैरिसन ग्राउंड, सर्किट हाउस और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 15 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन गुब्बारों और पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी है। योग का बैनुल-अक़वामी दिन 2026 कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस साल योग का 12वां बैनुल-अक़वामी दिन सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग के मौजू के तहत मनाया जा रहा है, जो हर उम्र के अफराद के लिए योग की अहमियत को उजागर करता है। इस सिलसिले की तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क भर के 100 तारीखी और नुमाया मकामात पर खसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी, जिसका मकसद भारत

पाबंदी लगा दी है। योग का बैन अल-अक़वामी दिन 2026 कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस साल योग का 12वां बैन अल-अक़वामी दिन सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग के मौजू के तहत मनाया जा रहा है, जो हर उम्र के अफराद के लिए योग की अहमियत को उजागर करता है। इस सिलसिले की तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क भर के 100 तारीखी और नुमाया मकामात पर खसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे और योग की

0: द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में

0: पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
1: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तो

0: क्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर

0: इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
1: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500

0: उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
2: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और

0: करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा

इस भक्तिमय गाने को सुनकर आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि आज की हमारी कलाकार कौन हैं। जी हाँ, वे हैं अनीता गुहा, जो कि फिल्मों में पौराणिक और धार्मिक किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं। तो आज इस कार्यक्रम एक ही कलाकार में स्वीकार कीजिए अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी का नमस्कार और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार।

उषा मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे हैं 1975 की रिलीज हुई सुपर डुपर और ब्लॉकबस्टर फिल्म जय संतोषी माँ में संतोषी माता का मुख्य किरदार निभाने वाली अनीता गुहा पर फिल्माया गया ये गीत।

फिल्म जय संतोषी माँ रिलीज हुई थी तो बहुत सारे लोग उन्हें असल जिंदगी में देवी मानकर पूजा करने लगे थे। जी हाँ, ठीक उसी तरह से जैसे कि भगवान श्री राम का किरदार अरुण गोविल साहब ने निभाया था और लोग उन्हीं को भगवान राम समझकर पूजा करने लगे थे। दरअसल संतोषी माता का ये जो किरदार उन्होंने निभाया था ये उस दौर में सबसे प्रतिष्ठित और धार्मिक किरदार था जिसने उनको देशव्यापी पहचान दिया और उन्होंने पर्दे पर सीता का रोल भी निभाया है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी हुई ना, लेकिन ये सच है। दरअसल कई बड़ी धार्मिक फिल्मों में जैसे कि संपूर्ण रामायण जो कि 1961 में रिलीज हुई थी, इसके अलावा श्री राम भरत मिलाप 1965 में आई थी और तुलसी विवाह ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी। इन सभी फिल्मों में उन्होंने माता सीता और देवी लक्ष्मी की भूमिकाएं निभाई। और अगर धार्मिक किरदारों के अलावा करें कुछ और फिल्मों की तो गूंज उठी शहनाई जो कि 1959 में रिलीज हुई थी, पूर्णिमा 1965 में आई थी, देख कबीरा रोया 1957 में और संजोग 1961 में आई थी। इन सभी फिल्मों में भी उन्होंने शानदार काम किया, यादगार काम किया। और आज हम उनको क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी पुण्य तिथि है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ और आज की हमारी कलाकार हैं बीते जमाने की जानी मानी अभिनेत्री अनीता गुहा और उनका जन्म बंगाल के एक परिवार में हुआ था और उनके पिता एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में भी उन्होंने केवल 15 साल की उम्र में एक ब्यूटी और टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता था और इसी के बाद साल 1953 में एक बंगाली फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की। और अगर बात करें हिंदी फिल्म की तो हिंदी फिल्म में उनकी शुरुआत हुई, एक फिल्म आई थी तांगा वाली 1955 में। इस फिल्म के जरिए ही अनीता गुहा ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। तो आगे बढ़ने से पहले इसी फिल्म तांगा वाली से एक बेहतरीन सा नगमा आपको सुनाते हैं, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरुनूर, गुरलाल और अविराज सिंह का संदेश आया है कि वे कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्हें बेहद पसंद आ रहा है।

नीरम गाम गुजरात से संदेश आया है अजीत भावसार, प्रमिला भावसार का, और इन्होंने अनीता गुहा जी के बारे में अच्छी रिसर्च की है और उनकी पर्सनल लाइफ यानी निजी जिंदगी के बारे में भी हमें संदेश भेजा है कि उनकी शादी अभिनेता माणिक दत्त से हुई थी और उनके कोई बच्चे नहीं थे, और अनीता गुहा का जो जीवन है उसका जो अंतिम समय है वो बेहद दुखद और गुम

दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दौर ये भी था जब अनीता गुहा को लगने लगा था कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वे उन्हें सिर्फ भक्ति से जुड़ी हुई भूमिकाएं ही देना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कई पौराणिक फिल्मों में काम किया, जैसे कि कवि कालिदास, जय द्वारकादेश और कृष्णा कृष्णा। जय संतोषी माँ के अलावा उन्होंने संगीत सम्राट तानसेन, कान कण में भगवान और वीर भीमसेन जैसी ऐतिहासिक फिल्मों में भी काम किया। और फिर उन्होंने प्रोड्यूसर्स को समझाया कि भाई, वो भक्ति से ओत प्रोत किरदार निभाने के अलावा और दूसरे किरदार भी निभाना चाहती हैं। और तभी उनको फिल्म मिली आराधना, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना की दत्तक माँ की भूमिका निभाई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है। और अब उनकी एक और फिल्म से आपको एक प्यारा सा नगमा सुनाते हैं, और लता मंगेशकर जी की आवाज़ है और वो भूली दास्तां फिर याद आ गई। बहुत ही प्यारा सा गीत, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आइए सुनते हैं।

साल 1961 में आई फिल्म संजोग और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया ये बेहद ही भावुक कर देने वाला गाना है और

और इसी बीच आपका एक संदेश हमारे पास आ गया है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह जसवीर सीता और गीता का। और इन्होंने लिखा है कि आप अनीता गुहा जी की फिल्मों के बारे में जो बता रहे हैं और उनकी जो गाने सुनवा रहे हैं वो बेहद हमें पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अनीता गुहा जी के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताऊं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने जय संतोषी माँ ये जो फिल्म आई थी जिससे उनकी एक अलग पहचान बनी थी, शुरुआती दौर में उन्होंने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। और फिर किस तरह से इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने उनको कन्विंस किया, तब जाकर उन्होंने इस फिल्म में काम करना स्वीकार किया। और एक बात और भी है इस फिल्म से जुड़ी हुई कि जय संतोषी माँ इस फिल्म का बजट था केवल 5 लाख रुपए, लेकिन इस फिल्म ने उस दौर में 5 करोड़ रुपए कमाकर एक तरह से इतिहास रच दिया था, क्योंकि ये फिल्म शोले के बाद 1975 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। तो आगे बढ़ने से पहले एक और फिल्म उन्होंने की थी जिसका नाम था शर्मिली। हालांकि इसके अलावा उन्होंने अनुराग, झूम उठा आकाश, नागिन जैसी कई फिल्मों में भी वो नजर आई, लेकिन मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपको फिल्म जय संतोषी माँ का गाना सुनवाया था क्योंकि इसी फिल्म के जरिए

उनकी किस्मत बदल गई, उनकी पहचान बदल गई और वो रातों रात देश और विदेश में प्रसिद्ध हो गई। तो अब हम आपको इस कार्यक्रम के आखिर में सुनवाते हैं फिल्म शर्मिली से लता मंगेशकर जी की आवाज में एक प्यारा सा नगमा।

एक और संदेश आया है बिल्कुल अभी अभी, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार और प्रमोद कुमार का। उन्होंने लिखा है, एक ही कलाकार में आज आप अनीता गुहा के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि हमें बेहद पसंद आ रही है। गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपकी प्रस्तुतिकरण तो बेहद ही शानदार है। ये बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम को और हमारे इस चैनल को

दोस्तों, अब हमें भी आपसे बिछड़ना होगा क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हम आपको अलविदा कहें। और इसी के साथ अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत। फिर होगी जल्द मुलाकात इसी चैनल पर किसी ना किसी कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान को श्रुति बुरी की
1: और वंदना की
0: राधे राधे। वंदना,
1: हाँ जी जी,
0: देखो गर्मी को मौसम आ गया है।
1: हाँ,
0: और गर्मी के मौसम में ऐसा लगे कि घर के बाहर भी कहीं निकलो ना तो ऐसा लगे है कि सघन वनन की छांव में बैठ जाओ कहीं नेक सीसी देर सीरक में और सांस ले लो।
1: जो की बात कह रही हो जी जी,
0: जो हमारो ब्रज क्षेत्र है वो तो वन उपवनन ते आच्छादित रहवे है।
1: हाँ जी जी, साची कह रही हो आप जी बात तो। और देखो हर वन उपवन के पीछे एक कथा हुआ है।
0: और चूंकि कान्हा और राधा की यानी राधा माधव की जो लीलाएं हैं वो काऊ न काऊ वन उपवन ते जुड़ी भई हैं। और ब्रज क्षेत्र में तो वन उपवन इतने हैं कि 12 तो वन हैं बड़े और 24 उपवन हैं।
1: हाँ जी जी,
0: तो ऐसे ब्रज क्षेत्र में तो सोचो के हर वन उपवन में एक लीला है।
1: हाँ जी जी, देखो लीला तो हते हैं, पर चुनाए ऐसो करें और बात करवे ते पहले हम अपने श्रोतान को एक बढ़िया सो लोकगीत या भजन सुनवाए दे।
0: मुको तो पहले ही बतोई कि तुम तो पहले लोकगीत सुनवाओगी, बाकी सारी बात अन्य बाद में करोगी।
1: चौकी बात पहले करनी चाहिए ना जी जी। हाँ। देखो फिर हमारे श्रोतन को तो मन बिन पेट को, जैसे आपको गर्मी में छां चाहिए वैसे ही उनको मधुर स्वर चाहिए।
0: तो आज चौना हम अपने श्रोतान को बंसी भट्ट की ही कछु कथा सुनाए दे में एक लोकगीत के माध्यम से। तो आओ सुने हैं जगदीश ब्रजवासी के स्वर में जे लोकगीत।

0: श्रोताओ, अब ये आपने जगदीश ब्रजवासी के सुर में या लोकगीत को आनंद लियो। हाँ जी जी, अब बताओ क्या कह रही तुम।
1: देखो वंदना, हम बात कर रहे हैं ब्रज क्षेत्र के वन और उपवनन की। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रज क्षेत्र के 84 कोस की परिधि में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलांते जुड़े भए हैं वो 12 प्रमुख वन हैं और 24 उपवन स्थित हैं। और इनमें प्रमुख हैं मथुरा और वृंदावन और इनके आसपास के जो इलाके हैं वा क्षेत्र में जो वन उपवन है इनको बड़ा महत्व है।
0: हाँ जी जी, देखो द्वादश वनन में ते एक मधुवन है जो सबसे प्राचीन वन है, जहाँ श्री कृष्ण ने मधु दैत्य को वध कियो हो।
1: और वृंदावन, यहाँ श्री कृष्ण ने गोपीन के संग महारास किया और कई दिव्य लीलाएं करी।
0: हाँ जी जी, और जो तालवन है तो है ना, ताल की पेड़ ते प्रसिद्ध है, जहाँ पे बलराम जी ने धेन को असुर राक्षस को वध की ना।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और या की कथा तो ब्रज 84 कोस परिक्रमा में जब वन दिखा में है तो वहां में हुआ वह है। और या के अतिरिक्त एक और वन है कुमुद वन, ये यमुना के पूर्वी तट पे स्थित है और ये जो वन है अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुगंधित फूलन के ताई जानियो जाए है।
0: हाँ जी जी, ऐसो एक काम वन है बाय काम वन हूँ कह मैं, और जी आदि वृंदावन है, यहाँ पे विमल कुंड और 84 खंभा मंदिर प्रसिद्ध है।
1: और जहाँ पे श्री कृष्ण ने बहुला नामक गाय की परीक्षा लई ही और शेर को सद्बुद्धि दई हती, वो वन जानो हो कौन सा है, वो है बहुला वन।
0: और जी जी, खदर वन की बात बताऊं?
1: हाँ हाँ बताओ।
0: यहाँ पे कृष्ण और बिनके सखा गई है चरामते।
1: और महावन,
0: और महावन में बाल कृष्ण की माखन चोरी पोतना को वध और संगी जसोदा जी को ब्रह्मांड दर्शन की लीला को वर्णन है।
1: और देखो वंदना, जो भांडीर वन है ना, यहाँ पे वट वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण बलराम ने वकासुर राक्षस को वध कियो हो। और भांडीर वन एक और बात के ताई प्रसिद्ध है, कहवे है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण को विवाह संपन्न कराया हो।
0: हाँ जी जी, और एक भद्र वन है जी जी, जे शांत और घनो वन है, जीवन यमुना के पश्चिमी तट पे स्थित है।
1: और लोहवन,
0: हाँ जी जी, यहाँ पे बाल कृष्ण ने लोहासुर को वध की ना और ग्वाल बालन के संग में गैया चराई।
1: और एक और वन है जाकू कहवे है बेलवाना या बिल वन, जे बेल के वृक्ष को वन है, यहाँ पे बेल के वृक्ष ज्यादातर मिले हैं और यहाँ पे देवी लक्ष्मी ने कृष्ण के संग रासलीला में शामिल हुए वे के ताई तपस्या करी ही। और या के अतिरिक्त वंदना, ब्रज में 24 उपवन हूँ हैं, जहाँ पे कृष्ण अपने सखान के संग गैया चरायो करते, खेलो करते। और वो उपवन कौन कौन से हैं?
0: हाँ जी जी, गोवर्धन उपवन में देखो कुसुम सरोवर हुआ है, मानसी गंगा हुआ है, और बाकी संग संग आसपास बरसाना उपवन है, संकेत वन, घेवर वन और पीली पोखर वन है।
1: और या के अतिरिक्त हैं चमेली वन, कोकिला वन, कदम्ब वन और श्याम वन। तो देखो हमने अपने श्रोता

0: भगवान को ब्रज क्षेत्र में उपस्थित वन और उपवनन की जानकारी तो दे दी है, पर अब चौना हम अपने श्रोताओं को एक वार्ता हूँ सुनवाई दे में।
1: हाँ जी जी सुनवाओ ना।
0: तो श्रोताओं आज हम आपको सुनवाई बजाए रहे हैं एक वार्ता श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति की प्रतीक मीराबाई और या के वार्ताकार हैं पंडित मदन मोहन शर्मा।
1: तो श्रोताओं आओ सुने हैं जी वार्ता।

कृष्णं नमाम्यहं वृषभान सुतां देव्यां वृंदावन बिहारिणी वंदे चंद्र सुता तुल्यां सीराधाम शुभदर्शनी। यहाँ तरह भगवान श्री कृष्ण 5-4 वर्षों से अधिक भारतीय और विश्वलोक जीवन को अपनी लीलान एवं प्रेम भक्ति ते सभी को भावमयी आध्यात्म रस सागर में डोबेते चले आ रहे हैं। उनकी यशोर भी समस्त भूमंडल में फैलती भई सबको आनंदित कर रही है। यही सो पाश्चात्य देशन में हूँ श्री कृष्ण आराध्य और वंदनीय होते चले आ रहे हैं। प्यारे कृष्ण के जन्म और लीला स्थली ब्रजभूमि के रजगण प्रेम भक्ति ते मिले भये गोपी चंदन बन गए हैं। जिनको मस्तक और हृदय ते लगाए हुए ताई देश विदेश के प्रेमी भक्त श्रद्धालु या ब्रज में हर पल भ्रमण और रमण करते रहे। यही श्रृंखला में अनेक प्रेमी भक्तन ने युगल सदु को अपनो सर्वस्व मान के दर्शन प्राप्त किए हो। इनमें श्री गोस्वामी वल्लभाचार्य सूरदास श्री तुलसीदास मीराबाई रसखान नागरी दास हरिदास हरिराम व्यास नरसी आदि रहे जिन्हें प्यारे मुरली मनोहर को अनेक रसमय भावन ते समझाए हो। जैसे चढ़ो देवस अब लो हर सोवे ठाड़ी जसुमत सुत मुखो जोवे माखन मिश्री भरे कटोरा और जागो लाल भयो है भोरा बंदी जन द्वारे गुन गावे गाय दोहन को गाल बलामे सुख सामरो देख सुख पावे लीला ललित लाल की गावे। परंतु भक्त हरिराम व्यासी ने तो कबीर दास के ज्ञान सिद्धांत के कशु शिकायत है तब हरवंशी जब करी तो हरिराम व्यास ने ध्यान में प्रिया प्रीतम न्याय आए तब बड़े भाव से कहवे लगे कि तुमने भक्त को अपराध कर दियो हो। या प्रकार से आराध्य को ध्यान में लानो बड़ो कठिन है। वैसे कबीर दास जी से जाके क्षमा मांगी है और स्पष्ट कर दियो हो कल मैं साचो भक्त कबीर या प्रकार को स्पष्ट कियो हो। या प्रकार से आराध्य को ध्यान लायो ऐसो न्याय होना चाहिए। हरिराम व्यास जी ने कबीर से क्षमा मांगी और बोल उठे कल में साचो भक्त कबीर। यह सुन के कबीर ने कहा कही हाँ हमारे भावन में रस ना है पर प्रभु को कहलावे सोई बोलेंगे। यही बात को 12 पुराण में स्पष्ट कियो है। श्री कृष्ण ने शंकर जी ते कहो है तुम चरोद्र महाभाव मोह शास्त्राणि कार्यत।

भक्ति से ओतप्रोत है कि मीराबाई साक्षात प्रतीक बन गई है। जब उनकी आयु 7 साल की ही, तब एक दिना वो माँ के संग कथा प्रसंग में गई, जहाँ भागवत की कथा है रही। वहाँ जाके श्री कृष्ण को प्रसंग सुनकर के आखिर में से आंसू आए भी लगे। वो ने जो श्लोक पढ़े सुने के ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नेक न बिसरहो मोय नंद बाबा की आन। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो किसाम, यन मित्रों परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। यह प्रकार के भावन को देख करके कथावाचक किसाने पहुंची, संत के शरण स्पर्श किए, पूछने लगी कि महाराज मुझे कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। यह बात को सोच करके वो संत कथावाचक आश्चर्य में पड़ गए। जो बात मेरे समझ में नहीं आई वो आज ही 7 वर्ष की कन्या मुझसे पूछ रही है। इन बातों को देख करके महाराज उनके चरण में गिर पड़े और प्यारे गिरधर लाल ठाकुर जी की मूर्ति उनको दे दी थी। वही सेवा को वो मुईराजी करते रहे, उनके संग रहनो, उनके संग में खानो, उनके संग भोजन करनो, यह प्रकाश और भाव बन गए हो। वो उन्हें सच्चिदानंद रूप में माने ही और निश्चित कर लियो है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, संतन ढंग बैठे बैठे लोक लाज खोई, अब तो प्रेम बैल फैल गई आनंद फल होई। मीरा जब 8 वर्ष की जब हुई तो एक दिन माँ के संग में बारात देखने चली गई। वह बारात में जाकर के माजा लौट के आई तो कहने लगी, बेटी काउ दिन तेरो भी दूल्हा आवेगो और यह प्रकार से बारात सजा के तो को यहाँ से ले जाएगो। बेटी मीरा बोल में लगी, मैया मैंने तो गिरधर लाल के संग में फेरा पार लिए है, वही मेरे सांचे प्रीतम बन गए हैं, अब ये शरीर तन मन धन सब उनके लिए है। यह प्रकार से मीरा के वचन सुनकर के मैया को बड़ो अचंभव भयो। मीरा बाई को जन्म सम्मत 1498 से लेके 1540 तक मान्यो जाए। इनको जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के मेड़ता गांव में राठौड़ वंशी राजा रतन सिंह के यहाँ भयो हो। जो मूर्ति गिरधर गोपाल की वहाँ से संत से प्राप्त भई, उनको सेवा में हमेशा वो रखे ही। और जब उनके महाराज समय आयो सेवा शादी को, वाई समय जाकर के माता पिता ने बहुत सो दहेज इनको दियो। इनके साथ जाकर के अपने दूल्हे भोजराज के साथ जब जाए भी लगी, जब कन्या दान को समय आया तो कन्या दान में बहुत सा सामान दियो हो। माता पिता ने दहेज में सबको देने के पश्चात ये रोवे लगी, मेरे गिरधर गोपाल को दे दो। मैया ने जाकर के गिरधर गोपाल दे दिए, माँ मेरे प्राण जीवन गिरधर लाल हैं। यह प्रकार से उनको संग लेकर ससुराल आई गई। जब पति ते मिलन भयो तो स्पष्ट कह दियो, मैंने तो गिरधर के संग अपने विवाह कर लियो है, वही मेरे प्राण है, वही मेरे जीवन है, वही मेरे पति है, उनके अलावा मेरे संसार में कोई ना है। यह सुनकर के भोजराज सन्न रह गए है और बिना इनको तन स्पर्श किए वहां से हट गए हैं। या प्रकार गिरधर लाल की मूर्ति में कछु चमत्कार दिखाई देवे लगे। सास ने कुल देवी कुल देवतान की पूजा कराई, लेकिन इन्होंने पूजा करने से मना कर दियो और कहवे लगे, मेरे हाथ तो गिरधर लाल की पूजा ही कर सके और मेरो मस्तक श्री गिरधर लाल के सामने झुक झुके है, और काउ देवता के सामने मैं प्रणाम नहीं कर सकूं। या प्रकार से कहवे लगी, मेरो तो जन्म भूमि और झूमे हित नैन लागे, पगे गिरधारी लाल पिताही धाम में, राना ते सगाई भई करी ब्याह सामान आई, गई सुत बूढ़ वा रंगीले घन श्याम में, भामरे परत मन सामरे स्वरूप माझ और तामरे से आमे चलवे को पति गांव में। यह सुनकर के सभी ससुराली जन सास ननद ससुर आदि दंग रह गए और अपमान को घूंट पी करके रह गए। मीरा को अनेक प्रकार से दुख देवे लगे, यहाँ तक की अलग निवास दे दियो हो, वहां में किसी प्रकार को कोई व्यवस्था नहीं। श्री मीराबाई गिरधर को श्रृंगार करें, लाड़ लड़ा में बात करें, संतन

सुनकर के सभी ससुरालीजन सास ननद ससुर आदि दंग रह गए और अपमान को घूंट पी करके रह गए। मीरा को अनेक प्रकार से दुख देवे लगे, यहाँ तक कि अलग निवास दे दियो, वहां में किसी प्रकार को कोई व्यवस्था नहीं। श्री मीराबाई गिरधर को श्रृंगार करें, लाड़ लड़ावें, बात करें, संतन को मंडली बुलाकर कभी जब कीर्तन करें, पर यह सब इनकी ननद उदा भाई को ना सुहावे हो। वाने मीरा से कही, भाभी ये तुम्हारी इन बातन सो और पूजा पाठ

को मंडली बुलाकर कवि जब कीर्तन करें, पर यह सब इनकी ननद उदा भाई को ना सुहावे हो। वाने मीरा से कही, भाभी ये तुम्हारी इन बातन सो और पूजा पाठ साधु संगत की कीर्तन ते हमारी समाज में बड़ी निंदा है रही है। वासो हमें बड़ो लज्जित होना पड़ रहे हो, जैसे आए के ननद कही गहे किन चेत भावी, साधुन सो हेत ये कलंक लागे भारी है, राणा देशपति लागे और बाप कुल रीत उगत, तान तीजे मत बैनी संग ये।

बतिया केवत में सकुचाऊं या प्रकार के भाव से जाकर के उन भावनाओं को प्रकट कर रही है। गुप्त चरण ने ये बात जाकर के राजा को बताई, सो बोले प्रेमा भक्ति में हिलोरे राजाऊ लेवे लगे। एक बार एक कामी नीच पुरुष साधु के वेश में आए के मीरा ते बोलो हो कि मोक ग्रसर प्यारे ने तुम्हारे पास भेजो है और कहिए तुम मीरा के संग निवास करो। मीरा ने बात मान ली और कही सेवा और भोजन सबको प्राप्त करो, वाके पश्चात आपके मन में

लाज तुम्हारी सुख पुंज प्यार भरी उर्माज आय देश गायो है। राणा और पति भोजराज की द्वेष बुद्धि को देख करके मीराजी द्वारका चली आईं और यहाँ बस गईं। गिरधर लाल उनके संग प्रतिक्षण रहती रहीं। उनकी सेवा में उनका पूरा भाव देखे हो, पूरा समय व्यतीत करते हुए उनको निवास कराते रहे। यह बात को राणा ने सोचो कि गिरधर लाल के साथ मीरा चली गई और वहां जब घर महल में किसी प्रकार की शोभा दिखाई नहीं दी तो रावण जाकर के राणा ने पश्चाताप किया और ब्राह्मण भेजे कि द्वारका ते मीरा को लेवा के लिया। मीरा जी ने वहां जायवी को तैयार नहीं भई, लेकिन ब्राह्मण वही विराजमान रहे, वो जायवी को नाम न लेवे लगे। तभी मीरा जी ने देखो कि प्रेम प्यारे ब्राह्मण जो आए भये है वो मैं इनके संग जाऊं, ऐसा कहकर के रण छोड़ लाजी के विदा ले जाऊं, ये भाव से जाकर संग में ससुराल चलूंगी। यह कहते हुए रण छोड़ लाल जी के से विनती करवे लगी और वही पद गायबे लगी। सारी रण छोड़ लाल ते लिपट गई और वही प्रतिमा में लीन है गई। यह बात काहू को नहीं मालूम पड़ी, केवल सारी पकड़ी रही वह भी रण छोड़ में समाई गई। यानी स्पष्ट है सुने गुने सज्जन मन लाई कलिका लिखे नहीं तन लपटाई अनुपम भक्ति बढ़े मन माही छूट है पाप दुसहि दुख नाही सत्य ईश केवल जग माही बिन हर्षण गहे सुख नाही हर नर जीवन इत लाभ सुभीता अंत समय हर पद सुच प्रीता। या प्रकार से मीरा जी की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति की सांची प्रतीक रही है या में किसी प्रकार को संदेह ना है। उन्हें बात सुन रखी है कि ब्रज ब्रावन गिर नदी।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, नाटक डॉक्टर खुद यहाँ बीमार हो गया।
1: आइए सुनते हैं नाटक डॉक्टर यहाँ खुद बीमार हो गया। लेखक कमल कुमार वर्मा, निर्देशन काजल सूरी।

0: अच्छे नहीं लग रहे। हाँ अब ठीक है।
1: यस डॉक्टर।
0: बताओ आज मैं कैसा लग रहा हूँ?
1: डॉक्टर महिंदर सर, अरे सारे शहर में आप जैसा कोई नहीं। आज पेशेंट से आप डबल फीस भी मांग सकता है।
0: ले ले, हम जानते हैं तुम हमारा नर्स बनने से पहले ब्यूटी पार्लर में काम कर चुकी हो, इसीलिए डॉक्टर होने के बावजूद हम तुम्हारा प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है ताकि पेशेंट पर हमारा अच्छा इम्प्रेशन पड़ सके। यू नो लेडी, पर्सनालिटी डू मैटर।
1: यस डॉक्टर, यस। पर एक सजेशन है, अगर आप माइंड ना करे तो।
0: बोलो बोलो लेडी, गो अहेड।
1: यू नो हमारा फिल्म इंडस्ट्री के एक सदाबहार हीरो का ना एक स्पेशल स्टाइल था, वेरी स्पेशल। उनका लेफ्ट साइड का एक दांत आधा टूटा हुआ था और इसीलिए कई नौजवान भी अपना वही दांत आधा तोड़वा लिया था।
0: अच्छा?
1: आप चाहें तो मैं भी आपका आधा दांत तोड़ सकती हूँ। यू विल लुक मार्वेलस एंड वेरी वेरी ग्रेट लाइक हिम सर। लाऊं हथौड़ी?
0: ले ले, डोंट बी सिली। सारा शहर मुझे डॉक्टर मोहिंदर के नाम से जानता है, जिसके पूरे 32 दांत सलामत हैं। जरा सोचो, अगर हमारे 31.5 दांत होंगे तो हमारे दांतों के मरीजों पर हमारा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? यू शुड बी अ रोल मॉडल फॉर योर पेशेंट।
1: ओके, सॉरी सर, सॉरी, यू आर राइट। आप तो बिल्कुल डॉक्टर के साथ साथ एक हीरो, साइड हीरो और कैरेक्टर का रोल भी कर सकते हैं, यानी 4-in-1।
0: और एक विलेन भी लग रहा है लिली।
1: यस डॉक्टर, यस। लेकिन आजकल तो फिल्मों में कोई कोई विलन तो हीरो से भी ज्यादा पेमेंट लेता है।
0: पॉइंट टू बी नोटेड, थैंक यू लिली।
1: डॉक्टर आज सुनिए ना, लगता है कोई शिकार यानी मेरा मतलब पेशेंट आया है। आप बैठिए ना अपने सिंहासन पर।
0: यस लिली, उसे पेश किया जाए।
1: ओके,
0: अब हम शिकार करेंगे। मेरा मतलब है उसका वो करेंगे, वो क्या होता है वो लिली?
1: ओ डॉक्टर, आपका मतलब उसका डायग्नोसिस करेंगे?
0: यस यस यस लिली, अब हम डायग्नोस करेंगे।
1: अच्छा, तो मैं अभी उस

0: कलाकार को लाता है, मेरा मतलब पेशेंट को लाता है।
1: ओके लली, हुक्म की तावील हो।
0: जी आलम पनाहा।
2: आइए आइए ना।
3: थैंक यू।
2: अपना इसमें शरीफ बताइए।
3: क्या इस शरीफ? हाँ मैं शरीफ आदमी हूँ, क्या मुझे पुलिस से क्लियरेंस लेके आना पड़ेगा?
2: ओह नो नो नो, मेरा मतलब आपका शुभ नाम क्या है?
3: ओह अच्छा, आप ये पूछ रही हैं। मुझे चंद्र प्रकाश कपूर कहते हैं, मुझे डॉक्टर मोहिंदर से मिलना है।
2: ऑफ कोर्स, हाँ हाँ, अब आप उनके डायग्नोस्टिक सेंटर पर हैं और जाहिर है कि आप डॉक्टर मोहिंदर से मिलेंगे, पर एक्चुअली फर्स्ट 500 रुपया कंसल्टेशन फी दीजिए।
3: फीस वो एडवांस में?
2: ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर, आप जब किसी शादी में जाता है तो शगुन का लिफाफा पकड़ाता है ना।
3: हाँ।
2: इसीलिए फीस भी पहले ही दी जाती है डॉक्टर को।
3: ओके सिस्टर, आपकी बात में लॉजिक तो है। ये लीजिए 500 रुपए।
2: थैंक यू।
3: तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया, है तुम ही संभालो ये दुनिया।
2: थैंक्स मिस्टर कपूर, ये लीजिए फॉर्म, इसे भरकर अपनी सिग्नेचर करके दीजिए।
3: लीजिए सिस्टर।
2: यस, आइए मिस्टर कपूर, अब डॉक्टर से मिलिए, अपनी तशरीफ का टोकरा अंदर ले आइए। ये रहे डॉक्टरों के डॉक्टर, डॉक्टर महेंद्र टेंटन।
3: सिस्टर ये टेंटन क्यों?
2: अरे इतना भी नहीं समझते, ये म्यूजिक इफेक्ट है।
3: अच्छा क्लिनिक में म्यूजिक, चलो ठीक है। हेलो डॉक्टर।
1: बी सीटेड मिस्टर, व्हाट इज योर गुड नेम?
3: डॉक्टर मेरा नाम चंद्र प्रकाश कपूर है। डॉक्टर माय नेम इज मूनलाइट कैम्फोर।
1: यस मिस्टर कैम्फोर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम?
3: नींद ना मुझको आए, दिल मेरा घबराए, मतलब आई मीन नो स्लीप, हार्ट नर्वस।
1: ओह वेरी सीरियस सिस्टर, इनका वो वो करो।
2: यस डॉक्टर, यस इनका डायग्नोस करना है ना?
1: यस, वही सब कुछ करो सिस्टर।
2: ओके ओके डॉक्टर, मैं बस अभी ब्लड प्रेशर की मशीन लाती हूँ। हाथ आगे करो मिस्टर कपूर।
3: क्यों?
2: तुम्हारा ब्लड प्रेशर देखने का।
3: अच्छा, ये लीजिए।
2: गुड
1: सिस्टर, चेक टेम्परेचर आल्सो।
2: ओके डॉक्टर, ओके यस, आई विल इमीडिएटली डू। ये लीजिए थर्मामीटर, मुंह खोलिए। निकाल लिया।
1: लेट मी चेक, क्लोज योर आईज। हार्ट भी ठीक है, बीपी भी ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है। नाउ यू कैन ओपन योर आईज मिस्टर कपूर। नाउ टेल मी, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर इन टेंशन?
3: आई गो टू डिवोशनल प्लेसेस डॉक्टर।
1: गुड गुड, यू गो फॉर प्रेयर। स्मार्ट बॉय। व्हाट इज योर प्रॉब्लम मिस्टर कैम्फोर?
3: Doctor, I don't get sleep in night.
1: What is your profession?
3: I am a storyteller.
2: Oh, aap kahani sunata. Ye to bada acha profession hai.
3: Thank you, sister.
1: What type of stories you tell?
3: I tell Hindi stories. So no story in English, only Hindi.
2: Okay.
1: It's interesting.
3: So doctor, kahani 4 prakar ki hoti hai. Number 1, short story. Ek line ki kahani.
1: You mean सबसे छोटी स्टोरी? एन एग्जाम्पल?
3: एग्जाम्पल, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी।
2: हाँ, ये कहानी तो हम कभी कभी सुना करते थे।
3: दूसरी टाइप की कहानी होती है पुनर्जन्म की कहानी।
1: अच्छा, ये कैसी कहानी होती है, एग्जाम्पल से बताओ।
3: एग्जाम्पल, ये पति पत्नी की कहानी हो सकती है।
2: कैसे?
3: जैसे पत्नी ने पति को पुकारा, अरे सुनते क्यों नहीं, मर गए क्या? पति, हाँ बोलो क्या बात है, आ गया।
1: ओ, पति मर भी गया और वापस भी आ गया।
3: जी
1: पुनर्जन्म।
3: और तीसरी तरह की कहानी होती है दर्द भरी कहानी। सुनिए ये कहानी।

0: चार दोस्त अमेरिका घूमने गए, वहां बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। इन्हें 60वीं मंजिल वाले होटल में 60वीं मंजिल पर कमरा मिला।
1: अच्छा।
0: और सारा दिन शहर घूमने के बाद रात को 8 बजे वापस होटल में आए, ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट में खाना खाया और वापस कमरे में जाने के लिए लिफ्ट पर चढ़े। लेकिन तभी अचानक पावर चली गई, लिफ्ट बंद हो गई और इन चारों को सिक्योरिटी वालों ने लिफ्ट का दरवाजा खोलकर वापस निकाला।
2: ओह थैंक गॉड।
0: और उनको बताया कि लिफ्ट 2 घंटे में ठीक होगी। तब तक यहाँ इंतजार करें या फिर सीढ़ियों से अपने कमरे में जाएं।
1: अच्छा तो फिर क्या हुआ?
0: उन्होंने तय किया कि सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और चारों दोस्त मिलकर फैसला करते हैं कि बारी बारी सभी एक एक कहानी सुनाते चलेंगे ताकि थकावट ना हो और अपने कमरे में पहुंच जाए।
1: गुड आइडिया।
0: तो पहले दोस्त ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई जो उसकी मम्मी उसे सुलाते हुए सुनाती थी।
2: अच्छा।
0: इस कहानी को सुनते सुनते वो लोग 15वीं मंजिल तक पहुंच गए।
2: अरे वाह।
0: फिर दूसरे को कहानी सुनाने को कहा तो उसने कहा, मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है, मैं सबके बाद अपनी कहानी सुनाऊंगा, मेरी कहानी सुनकर आप सबकी आंखों में आंसू निकल आएंगे, इसलिए मैं आखिर में अपनी कहानी सुनाऊंगा।
1: अच्छा
2: अच्छा अच्छा।
0: इसी तरह बाकी दो दोस्तों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई और तब तक वो लोग सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते 50वीं मंजिल तक पहुंच चुके थे।
2: ग्रेट।
0: तो तीनों दोस्तों ने दूसरे वाले दोस्त को उसकी दर्द भरी कहानी सुनाने को कहा तो उसने कहानी सुनाई।
1: क्या सुनाया क्या सुनाया?
0: चार दोस्त अमेरिका घूमने आए, वहां ऊंची इमारतें हैं, इन लोगों को 60वें मंजिल होटल में 60वीं मंजिल पर कमरा मिला। अगले दिन सारा शहर घूमने के बाद चारों दोस्त रात को 8 बजे होटल पहुंचे, ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट में रात का खाना खाया और जब लिफ्ट में जाने लगे तो लिफ्ट बंद हो गई। पहला दोस्त बोला, अरे ये तो तुम हम लोगों की कहानी बता रहे हो, इसमें दर्द कहाँ है, इसमें हमें रोना कहाँ आएगा। तो दूसरा दोस्त बोला, वही तो बता रहा हूँ कि बहुत गहरा दर्द होने वाला है क्योंकि हमारे कमरे की चाबी रेस्टोरेंट में रह गई है।
2: ओह माय गॉड।
0: तो तीनों दोस्तों ने उसे बुरा भला कहा और कहा, हम यही रुक रहे हैं और तुम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर चाबी लेकर फिर से सीढ़ियां चढ़कर यहाँ तक आओ, फिर हम ऊपर चलेंगे। और तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि चाबी नीचे रह गई है? इसलिए अब इस दर्दनाक कहानी का अंत तुम पर ही होगा, जाओ चाबी लेकर आओ।
2: अरे ये तो वाकई बहुत दर्दनाक कहानी हो गई उन दोस्तों के लिए।
0: और चौथी और अंतिम कहानी होती है सबसे लंबी कहानी जिसे सुनने पर सबको नींद आ जाती है।
1: अच्छा तो फिर तुम उस कहानी को सुनकर खुद क्यों नहीं सोते हो?
0: डॉक्टर साहब, यही तो खास बात है इस कहानी की कि कहानी सुनाने वाले को नींद नहीं आती क्योंकि सुनाने वाला इस कहानी को पहले से जानता है। ये कहानी केवल सुनने वालों को ही नींद दे सकती है।
2: तुम्हारा मतलब है कि अगर हम ये कहानी सुनेगा तो हम भी सो जाएगा?
0: बिल्कुल, आप भी ये कहानी सुनकर सो जाएंगे। आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसे ये कहानी सुनकर नींद ना आई।
1: तो चलो फिर हमें सुनाओ वो कहानी, फिर देखते हैं तुम्हारी कहानी में कितनी सच्चाई है।
0: तो लीजिए डॉक्टर साहब और सिस्टर, सुनिए ये कहानी और सोने के लिए तैयार हो जाइए।
2: अच्छा चलो सुनाओ ये कहानी, पर हम भी देखते हैं कैसे लोग इसे सुनकर सो जाते हैं।
0: ये बड़े पुराने जमाने की कहानी है। एक राजा ने घोषणा की कि मैं कोई महाभारत की कहानी सुनना चाहता हूँ जो सबसे लंबी हो और पूरे 24 घंटे तक कम से कम समाप्त ना हो।
1: ठीक है।
0: जो भी कोई ऐसी कहानी सुनाएगा उसे मैं 1000 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा।
2: ओह माय गॉड।
0: तो कई लोग अपनी अपनी कहानी लेकर आए। लेकिन कोई भी इतनी लंबी कहानी सुना नहीं पाया। अंत में एक 12 साल की लड़की आई और राजा से बोली कि मैं इतनी लंबी कहानी सुना सकती हूँ जो 10 दिन तक भी समाप्त नहीं होगी।
1: वाओ।
0: तो उसकी बात सुनकर राजा और उसके सभासद उस लड़की का मजाक उड़ाने लगे। तो लड़की ने कहा, मुझे मौका तो दीजिए कहानी सुनाने का।
2: अच्छा तो फिर उसने सुनाई कहानी?
1: बताओ, हम भी सुनना चाहेंगे वो कहानी।
0: हाँ तो जरूर। तो लड़की ने अपनी कहानी शुरू की। महाराज, कुरुक्षेत्र में एक पीपल का पेड़ था। पेड़ के पास ही एक पानी का तालाब भी था। उस पेड़ पर पक्षी आते थे और जाते थे। पेड़ के नीचे एक सेठ ने उन पक्षियों के लिए 10 बोरी अन्न के दाने रखवा दिए और कहा, अभी कुछ बोरियां अन्न और भी भिजवा देगा। पहली बोरी का मुंह खोल दिया ताकि पक्षी आकर दाना खा सके।
2: अच्छा, फिर क्या हुआ?
0: एक पक्षी पीपल के पेड़ से उड़ा, नीचे आया, बोरी से दाना चुगा, तालाब के पानी में डुबकी लगाई और फुर
1: फुर। ये फुर मतलब?
0: फुर मतलब पक्षी उड़ गया।
1: हो, समझा समझा। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ?
2: हाँ।
0: राजा ने भी लड़की से यही पूछा था। लड़की ने कहा फिर क्या होना था। दूसरा पक्षी पीपल के पेड़ से नीचे आया, बोरी में से दाना चुगा, तालाब के पानी में डुबकी लगाई और फिर फुर
1: फुर।
2: फिर क्या हुआ?
0: राजा के वजीर ने राजा को कहा, लगता है लड़की आपको मूर्ख बना रही है, मैं इससे बात करता हूँ। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। तो वजीर ने उस लड़की से पूछा, पेड़ पर कितने पक्षी हैं? तो लड़की ने कहा, आपने शायद ध्यान पूर्वक नहीं सुना, मैंने क्या कहा था, पीपल के पेड़ पर पक्षी आते थे और जाते थे, तो ये कैसे बताएं कि कितने पक्षी आए और कितने गए?
1: हाँ,
0: मैं आपसे बात कर रही थी तब तक एक और पक्षी नीचे आया, बोरी में से दाना चुगा, तालाब के पानी में डुबकी लगाई और वो भी फुर। और इस तरह दाना खाते और पानी में डुबकी लगाकर फुर्र होते होते बहुत से पक्षी चले गए। तो राजा ने लड़की से पूछा, अच्छा अभी कितनी बोरी अनाज की समाप्त हो गई? तो लड़की ने फिर कहा, महाराज अभी तो पहली ही बोरी चल रही है, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपसे कहा था पेड़ के नीचे 10 बोरी अनाज के दाने थे और कुछ बोरियां खुले में भी पेड़ से अलग पड़ी थी।
2: हाँ।
0: जो सेठ ने भिजवाई थी। जब पेड़ के नीचे की पहली बोरी समाप्त होगी तो दूसरी बोरी का मुंह खोलकर पेड़ के नीचे रख दिया जाएगा और ऐसे ही एक के बाद एक बोरी का मुंह खोला जाएगा, फिर एक पक्षी नीचे आएगा, बोरी में से दाना चुगेगा और फुर। वजीर ने पूछा, तुसे फुर हो गया? तो लड़की ने कहा, हो सकता है उस पक्षी का नहाने का मन नहीं था या उसे ठंडे पानी से नफरत हो, इसलिए वो केवल दाना खाकर ही हो गया फुर। लो, आपसे बात करते करते 4-5 पक्षी और फुर हो गए। अनगिनत पक्षियों को दाना खाते, तालाब के पानी में डुबकी लगाकर फुर्र होते देखते राजा और वजीर भी नींद में डूबने लगे। तो वजीर के कहने पर राजा ने 1000 सोने के सिक्के लड़की को दिए और अपने अपने बिस्तर में दुबक गए। अन्य दरबारी भी तब तक सो गए थे। डॉक्टर, सिस्टर, कहानी खत्म हो गई। डॉक्टर, सिस्टर, अरे आप कितनी देर से सो रहे हैं, अभी तो 1/4 कहानी भी समाप्त नहीं हुई। हेलो
2: हेलो, मैं चांदनी बोल रही हूँ जोरबाग से। आप डॉक्टर महेंद्र डायग्नोस्टिक सेंटर से ही डॉक्टर महेंद्र बोल रहे हैं ना?
0: जी, मैं डॉक्टर मोहिंदर डायग्नोस्टिक सेंटर से तो बोल रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर नहीं, मैं चंद्र प्रकाश कपूर बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब तो सो रहे हैं।
2: सवेरे सवेरे ही डॉक्टर सो रहा है, सिस्टर है क्या?
0: नहीं मैडम, सिस्टर भी सो रही है।
2: डायग्नोस्टिक सेंटर आज बंद है क्या, जो सभी लोग दिन में भी सो रहे हैं और एक हम है जो नींद न आने से परेशान है?
0: नहीं नहीं मैडम, सेंटर खुला है, आप बताइए क्या काम है, मैं डॉक्टर साहब को बता दूंगा।
2: दरअसल मुझे एक प्रॉब्लम है भाई, मुझे रात को नींद नहीं आती है। वैसे मैं भी एक कहानी वाचक हूँ और इतनी अच्छी कहानी सुनाती हूँ कि लोग मेरी कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि औरों को तो मैं कहानी सुनाकर सुला देती हूँ लेकिन खुद नहीं सो पाती हूँ। क्या करूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट चाहिए ना मुझे।
0: अरे वाह, मैं भी एक स्टोरी टेलर हूं और मेरी कहानी सुनते हुए भी लोग सो जाते हैं, लेकिन आजकल मेरी कहानी सुनने वाले लोग बहुत कम है, कोई नहीं सुनता। शायद हम दोनों की मंजिल एक ही है और हम दोनों एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं।
2: वाह चंद्र प्रकाश जी, यही है ना आपका नाम, चंद्र प्रकाश?
0: हाँ, सही सही।
2: आपके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा।
0: आप मैडम एक काम कीजिए, आप मुझे अपना एड्रेस और फोन नंबर भेज दीजिए तो मैं 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा। चांदनी जी बताए।

0: है ना हम आपने
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: अरे लगता है डॉक्टर साहब की नींद खुल रही है, एक मिनट डॉक्टर साहब। हाँ अरे जाग गए डॉक्टर साहब। फोन है आपके लिए डॉक्टर साहब, कोई पेशेंट होंगे देखिए।
2: डॉक्टर महेंद्र है यार। यस मैम। ओ मैम, वी आर सेंडिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मूनलाइट कैम्फोर, आई मीन चंद्र प्रकाश कपूर एट योर प्लेस, and you can pay him rupees 500 as a fee. Good day, ma'am. Mr. Camphor, you already know her problem. You go there as our representative and get rupees 500 as your fees. Best of luck.
0: Thank you, doctors.
2: Sister. Sister, get up. Aap bahut der se so rahi hain. Dekhiye. शायद बाहर कोई पेशेंट आया है।
1: बहुत दिनों बाद इतना अच्छा नींद आया है डॉक्टर। मैं देखती हूँ पेशेंट को। डॉक्टर, वो पहला पेशेंट चंद्र प्रकाश कपूर किधर है?
2: सर, अब वो हमारा पेशेंट नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है।
1: क्या?
2: और हमने उसे एक असाइनमेंट पर भेजा है। I will tell you the details later on. First, you attend the other patient outside.
1: Oh, okay, doctor. Okay, abhi lai. Aapka naam?
3: Ji, Praveen Vaishnav.
1: Ji, Praveen Vaishnav.
3: Ji, nahi. मैडम जी, प्रवीण वैष्णव नहीं, सिर्फ प्रवीण वैष्णव।
1: ओ जी, सिर्फ प्रवीण वैष्णव।
3: ओहो सिस्टर, आपने तो मेरा नाम ही बिगाड़ के रख दिया। पहले प्रवीण वैष्णव से जी प्रवीण वैष्णव, और अब जी सिर्फ प्रवीण वैष्णव। लाइए, अब फार्म मैं खुद ही भर देता हूँ।
1: ओके ठीक है, आप ही फॉर्म भर दीजिए ना।
3: नाम प्रवीण वैष्णव।
1: आपको ये कपड़े टेस्ट करवाने के लिए पहनने पड़ेंगे, कोई शिकायत?
3: आपसे ना, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, इतनी सुंदर और अच्छी भली दिखती है आप।
1: नहीं बाबा नहीं, आपको यहाँ लिखना है कि आपको किस रोग के लिए टेस्ट करवाना है।
3: कमजोर नजर, घुटनों में दर्द, ऊंचा सुनता हूँ, और भूलने की आदत है।
1: भूलने की आदत कब से?
3: क्या कब से?
1: आदतें।
3: कौन सी आदतें?
1: अरे बाबा ये सब छोड़ो, हाल ही अपने हस्ताक्षर कर दो यहाँ पर, और हाँ फॉर्म मुझे दे दो, साथ ही 500 रुपए भी।
3: 500? 200 में काम नहीं चलेगा।
1: अरे ये कोई दुकानदारी नहीं है यहाँ, यहाँ फिक्स रेट है। और ये लीजिए कपड़े, और कमरे में जाकर दूसरे कपड़े पहन लीजिए।
3: क्यों, मेरे कपड़ों में क्या दिक्कत है? वो गंदे हैं क्या? अभी मैंने कल ही तो खुशबूदार साबुन से धोए हैं।
1: अरे जनाब, आपके कपड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, टेस्ट के रिजल्ट में अंतर भी आ सकता है।
3: आए? ऐसा तो कभी नहीं सुना मैंने।
1: सुनोगे कैसे, आप तो ऊंचा सुनते हो ना, आपने खुद फार्म में लिखा है।
3: अरे इतनी इंक्वायरी तो आधार कार्ड में भी नहीं होती, और आपने ये भी लिखा है कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। अरे क्या मुझे ये फॉर्म नोटरी पब्लिक से अटेस्ट भी कराना पड़ेगा?
1: जी नहीं जी नहीं, आप फिलहाल अपने हस्ताक्षर कर दो, बाकी हम देख लेंगे। और हाँ, अपने कपड़े खुद संभाल कर रखना, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं होगा।
3: ऐसा क्यों, यहाँ कपड़ों के चोरी होने का कोई खतरा है क्या?
1: आपने बसों में लिखा हुआ देखा है ना कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी।
3: तुम्हारी बात में लॉजिक तो दिखता है। चलिए लीजिए लीजिए अपना फॉर्म।
1: हाँ।
3: और ये रहे 500, देख लीजिएगा कोई डिस्काउंट का स्कोप हो तो। और हाँ, टेस्ट बढ़िया से करिएगा अच्छे से।
1: ओके ओके, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, जाइए कपड़े बदल कर अंदर से जल्दी आइए, डॉक्टर बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, सारे टेस्ट वो ही करेंगे।
3: ठीक है ठीक।

0: हाँ
1: आता
0: आइए। अरे वो आ गया है कपड़े बदलने, बस आता ही होगा।
2: हूँ। दो इसका फॉर्म मुझे दो।
0: ये लीजिए फॉर्म, और ये 500 रुपया
2: दो मुझे दो।
0: ये लीजिए।
2: सारी डिटेल्स भर दी है ना इसमें?
0: जी
2: हाँ ठीक है। हाँ आइए आइए अंदर आइए। वेलकम टू आवर डायग्नोस्टिक सेंटर।
1: डॉक्टर साहब मेरा नाम प्रवीण वैष्णव है, अब इंग्लिश में बोले तो एक्सपर्ट वेजिटेरियन है।
2: वाह वेरी नाइस नेम।
1: इफ यू लाइक यू कीप इट, आई विल टेक सम अदर नेम।
2: गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आई लाइक इट। अब बैठिए, आपके टेस्ट करते हैं हम। मुखलिए अपना। हाँ टंग तो ठीक है। सिस्टर टेम्परेचर देखो इनका।
0: ओके ओके ये लीजिए, अपने टंग के नीचे रखिए। हाँ, आराम से, अब बोलेगा नहीं।
2: हार्ट बीट भी ठीक है। लाइए दिखाइए मुझे कितना टेम्परेचर है।
0: ये लीजिए डॉक्टर।
2: हाँ ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है सब। आंख दिखाइए। ठीक है ठीक है। कान इधर कीजिए अपना। हाँ यहाँ भी सब कुछ ठीक है। एक मिनट आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ आपको दिक्कत हो रही है खड़े होने में, बट जी सिस्टर इनके घुटने में प्रॉब्लम लग रही है मुझे। सिस्टर मुझे रिफ्लेक्स हैमर दो।
0: हाँ
2: ये ये तुमने क्या किया, हाथ मार के रिफ्लेक्स हैमर मुझे ही मार दिया मेरे ऊपर। अब जाइए जाइए जाइए जाइए, आपके टेस्ट होगा सारे।
0: सिस्टर
2: आप भेजेंगे।
0: डॉक्टर जी बीमार पड़
2: गए, दांत टूट गए।
0: चलिए ना मैं आपके साथ
2: चलूं। मुझे लेकर चलो, किसी डॉक्टर के पास लेकर चलो मुझे। सिस्टर
0: सोचा था लंच करेंगे साथ, अब कुछ भी नहीं होगा, आपकी तबीयत खराब हो गई।
3: अभी आप सुन रहे थे नाटक डॉक्टर यहाँ खुद बीमार हो गया, जिसके लेखक थे कमल कुमार वर्मा और निर्देशन काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे किशोर सहजानी, माला कुमार, अनुराग अरोरा और अपूर्व गुप्ता।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए आपको जानकारी देते हैं आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे और साथ ही में कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 30वीं किश्त भी जारी करेंगे।

ये आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं।

0: विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams. And we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़

0: into the Liguangpo Dian Tai. Just Putong Hua Chi Mu, Bosong Dao Chili. Xie Xie Da Tia Shou Ting, Zai Hoi.
1: साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: Moving towards the future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
3: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

0: साथियों,
1: आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ चुका है, जिसमें टीम की हार जीत का सिलसिला लगातार जारी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में, इसमें बात होगी न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच हुए मुकाबले पे, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या कुछ चल रहा है, और इसके साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड की। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हॉकी पर, हॉकी में हम बात करेंगे FIH नेशंस कप इंडिया वर्सेस चिले पर, इसके साथ जानकारी देंगे ISSF जूनियर वर्ल्ड कप पर, दोहा डायमंड लीग पर प्रस्तुत होगी एक रिपोर्ट, और वर्ल्ड बॉक्सिंग कप स्टेज 2 के बारे में।
0: जी हाँ, तो ये सारी खबरें आज हमारे साथ आप सुन पाएंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं फीफा वर्ल्ड कप में जो आज के जो मैच खेले जाएंगे उसकी प्रीव्यू के बारे में।

ह्यूस्टन का एनआरजी स्टेडियम आज एक आकर्षक मैच की मेजबानी करेगा क्योंकि नीदरलैंड और स्वीडन 2026 विश्व कप में आमने सामने होंगे। स्वीडन वर्तमान में ग्रुप एफ में 3 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जिसने टूर्नामेंट के अपने उद्घाटन मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से हराया था। वे तीसरे स्थान पर काबिज नीदरलैंड से 2 अंक आगे हैं, जिसने जापान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला था। रोनाल्डो कोमैन की टीम ग्रुप एफ में 1 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है। इसका मतलब है कि उन पर दबाव है क्योंकि उन्हें स्वीडन की टीम से मुकाबला करना है, जिसने ट्यूनिशिया के खिलाफ अपने टूर्नामेंट के पहले मैच में शानदार खेल दिखाया था। नीदरलैंड्स 25 जून को ट्यूनिशिया के खिलाफ

0: ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेलेगा और अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए 4 पॉइंट काफी हो सकते हैं।
1: जी हाँ, बात करते हैं दूसरे मैच की, जहां पे 4 बार के चैंपियन जर्मनी का मुकाबला आयरी कोस्ट के साथ होगा। विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण के दूसरे मैच में सबसे रोमांचक मैचों में से एक 4 बार की चैंपियन जर्मनी का सामना टोरंटो में एक प्रतिभाशाली आयरी कोस्ट टीम से होगा। दोनों टीम ने अपने ग्रुप ई कैंपेन में अलग अलग तरीके से जीत के साथ शुरुआत की। जर्मनी ने कुराकाको में 7-1 से जीत हासिल की, जबकि आयरी कोस्ट ने आखिरी पलों में गोल करके इक्वाडोर को 1-0 से हराया था।
0: अब बढ़ते हैं जापान बनाम टूनिशिया की ओर। जापान ने नीदरलैंड्स के साथ 2-2 से ड्रॉ के शुरुआती मैच में मजबूती दिखाई और दाइशी कामदा और कीटो नाकामुरा के गोल से पीछे होने के बाद 2 बार जवाब दिया। जापान को टूनिशिया की उस टीम का भी सामना करना होगा जो वापसी करना जानती है। स्वीडन से 5-1 की हार के बाद सबरी लामोची के जाने के बाद हर्वे रेनार्ड ने टीम की कमान संभाली है। रेनार्ड के आने से टूनिशिया की टीम में नया आत्मविश्वास आ सकता है। जापान का हालिया इतिहास भी उनके पक्ष में है। हालांकि समुराई ब्लू को 2022 किरीन कप फाइनल में टूनिशिया से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1 साल बाद उन्होंने उत्तरी अफ्रीकी टीम को 2-0 से हराकर जबरदस्त वापसी की।
1: जी हाँ, बात करते हैं अब दिन के अंतिम मैच की, जिसमें इक्वाडोर का सामना होगा कुराकाको से। इक्वाडोर को पहले गेम में निराशाजनक हार मिली। दोनों टीमों इस गेम में 1-1 हार के साथ आ रही है और जो भी हारेगा उसे नॉकआउट स्टेज में पहुंचने का चांस बहुत कम होगा। माइसेस केसडो, पियरे हिनकेम्पी और विलियम पाचो जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर और जाने माने नामों के साथ सिर्फ इक्वाडोर के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के फैंस उन्हें खेलते हुए देखने के लिए उत्साहित है। इक्वाडोर को कुराकाको के खिलाफ ज्यादा स्कोर करने होंगे और जर्मनी के खिलाफ अपने तीसरे मैच से कुछ हासिल करने की कोशिश करनी होगी। हालांकि उनको बहुत अटैकिंग गेम खेलना होगा। दूसरी ओर कुराकाको जर्मनी के खिलाफ मिले नतीजे को पीछे छोड़कर इस मैच में दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी, क्योंकि कुराकाको के पास इस वर्ल्ड कप में खोने के लिए कुछ नहीं है, बस पाने को ही है।
0: अब इसके साथ जानकारी लेते हैं कल हुए मुकाबलों में क्या हुआ। कल हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर 2-0 की आसान जीत के बाद अमेरिका सह मेजबान मेक्सिको के बाद फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट चरणों में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन गई। मॉरिशियो पोचेटिनो की टीम ने लगातार 2 मैच जीतकर 1 मैच शेष रहते हुए क्वालिफाई कर लिया और 1929 के बाद विश्व कप में लगातार 2 जीत दर्ज की। पैराग्वे पर 4-1 की शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने के बाद सह मेजबान टीम ने उत्साहित घरेलू दर्शकों के सामने एक और आत्मविश्वासपूर्ण प्रदर्शन किया। कैमरून बर्गेस के अपनी ही टीम के खिलाफ लिए गए गोल और एलेक्स फ्रीमैन के वीएआर द्वारा किए गए हेडर गोल ने अमेरिकी टीम को राउंड ऑफ 32 में पहुंचने के लिए पर्याप्त साबित हुए और घरेलू मैदान पर उनकी बढ़ती साख को रेखांकित किया। इस परिणाम के बाद अमेरिका ग्रुप डी में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 3 अंकों पर बना हुआ है और अब उसे क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को जीवित रखने के लिए पैराग्वे के खिलाफ सकारात्मक परिणाम की आवश्यकता होगी।
1: जी हाँ, बात करते हैं कल के दूसरे मुकाबले के, जिसमें तुर्की का मुकाबला था पराग्वे के साथ। तुर्की का वर्ल्ड कप कैंपेन बहुत ही निराशाजनक तरीके से खत्म हुआ, जहां उन्हें ग्रुप डी के मैच में ज्यादातर समय हावी रहने के बावजूद पराग्वे से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। मैच शुरू होने के सिर्फ 64 सेकंड में माटियास गलेडजा का शुरुआती गोल पराग्वे के लिए अहम साबित हुआ और उनकी क्वालिफिकेशन की उम्मीदें जिंदा रही। तुर्की के लिए यह जानी मानी समस्या का एक निराशाजनक दोहराव था। उन्होंने मौके बनाए, कब्जा कंट्रोल किया, ज्यादातर गेम में फ्रंट फुट पर, लेकिन एक बार फिर से मौके को गोल में बदलने में नाकामयाब रहे। दूसरे हाफ में पराग्वे का काम और भी मुश्किल हो गया जब मिगुएल एलियुरन को रेड कार्ड दिखाए। पूरे मैच में पराग्वे को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा, फिर भी तुर्की गोल करने में सफल नहीं रही। यह हार तुर्की की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती हार की तरह थी और एक और ऐसा मैच जिससे उन्होंने कई मौके बनाए लेकिन उन्हें भुनाने में असफल रहे।
0: अब चलते हैं ब्राजील बनाम हैती के मुकाबले की ओर। ब्राजील ने एक आसान जीत हासिल की जिससे हैती की अगले राउंड में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई। इस जीत के बाद ब्राजील गोल अंतर के आधार पर ग्रुप सी में मोरक्को से आगे निकल गया। इससे 20 मिनट से अधिक का समय लगा, लेकिन एक बार जब उन्होंने लय पकड़ ली तो 5 बार के चैंपियन को रोकना असंभव हो गया। विनिसियस जूनियर ने एक ऐसा शॉट लगाया जिससे जॉनी प्लासिड पकड़ नहीं पाए और इस तरह पहला गोल संभव हुआ। मैथियस कुना सही समय पर सही जगह पर मौजूद थे और उन्होंने नजदीकी रेंज से आसानी से गोल दाग दिया। महज 13 मिनट बाद वही तालमेल सेलेकाओ को फिर से फायदा पहुंचाने में कामयाब रहा। मिडफील्ड में गेंद पर कब्जा करने के बाद विनिसियस जूनियर ने कुन्हा को पास दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड ने गेंद को ऊपरी कोने में मारकर ब्राजील की बढ़त को 2 गुना कर दिया। दक्षिण अमेरिकी टीम ने पहले पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में तीसरा गोल दागा। विनी जूनियर ने प्ले

0: मेकर से गोलकीपर की भूमिका निभाई। लुकास पेक्टा के पास को नियंत्रित करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे प्लासिड के नीचे से गेंद को गोल में डाल दिया। दूसरे हाफ में सेलेकाओ ने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा और अधिक गोल करने के अवसर तलाशे। दूसरे हाफ में सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए गैब्रियल मार्टिनेली ने एक शानदार गोल को क्रॉसबार ने रोक दिया और एंड्रिक ने गोल दागा, लेकिन सहायक रेफरी के झंडे के कारण उनका जश्न अधूरा रह गया। टूर्नामेंट में अपना खाता खोलने के लिए हैती ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन एलिसन को हरा नहीं सका। इस हार के साथ कैरेबियन देश का 1974 के बाद फीफा विश्व कप में पहला सफर 24 जून को मोरक्को के खिलाफ उनके मैच के बाद समाप्त हो जाएगा। उसी दिन मियामी में ब्राजील का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा।
1: अब बात करते हैं कल के एक और मुकाबले की, जहां वेस्टर्न स्टेडियम में मोरक्को ने स्कॉटलैंड पर शुरुआती बढ़त हासिल की, फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा। अटलांस लायंस का एकमात्र गोल इस्माइल सैबरी के सौजन्य से आया, जो स्कॉटिश रक्षा पंक्ति को पार करते हुए आगे बढ़े, ब्राहिम डियाज के सटीक पास को नियंत्रित किया और गेंद को एंजस गन को पछाड़ते हुए नेट के ऊपरी हिस्से में पहुंचा दिया। सैबरी का फिनिश रिकॉर्ड तोड़ था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक का सबसे तेज फिनिश और वैश्विक प्रतियोगिता में मोरक्को का अब तक का सबसे तेज फिनिश। इस जीत के साथ मोरक्को 4 अंक लेकर ग्रुप सी में शीर्ष पे पहुंच गया।
0: तो श्रोताओं, अब रुक करते हैं क्रिकेट की ओर।
1: जी हाँ, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट की बात कर रहे हैं। कल खेले गए सबसे पहले मुकाबले की बात करना चाहेंगे। कल का मुकाबला न्यूजीलैंड का मुकाबला आयरलैंड के साथ था। जैसा आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन है। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में आयरलैंड को 4 रन से हरा करके महिला T20 विश्व कप का खिताब बचाने की थोड़ी सी उम्मीद जिंदा रखी है। इससे पहले खेले गए दोनों मैच में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था, जब न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका और वेस्टइंडीज से हार गई थी। पिछले दोनों मैच में न्यूजीलैंड की प्रदर्शन की बात किया जाए, अभिषेक तो उसकी फील्डिंग बहुत ही खराब रही थी और न्यूजीलैंड की स्थिति इतनी खराब थी कि 10 रन पे उसके 3 विकेट आउट हो गए थे। लेकिन न्यूजीलैंड के उसके वजह से सोजी बेट्स, जो न्यूजीलैंड की एक बेहतरीन बल्लेबाज मानी जाती है, उन्होंने आखिरी बॉल पे छक्के लगाए, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम 140 रन 6 विकेट के नुकसान पे बनाने में सफल रही। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज बी एलिंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 विकेट लिया। उन्होंने 18 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, लेकिन आयरलैंड के कप्तान गेबी लुइस और ऑर्ली पेंटन ने उनका और जेस केयर के साथ साथ देते हुए 18वें ओवर तक 110 रनों की भागीदारी की। उन्होंने आयरलैंड को 19 रन से हार के बाद ऐतिहासिक पहली विश्व कप जीत के करीब पहुंच गया था, लेकिन पेंडर्स गार्ड 59 रन बनाकर बाउंड्री के पास कैच आउट हो गए। हालांकि लुइस अगले और 19वें ओवर तक 58 रन बनाकर क्रीज पर बनी, जब उन्होंने कवर पर बैट्स को कैच दे बैठा। इसके बाद आयरलैंड को जीत के लिए आखिरी ओवर में 15 रन की जरूरत थी, लेकिन बेट्स ने केवल 10 रन दिए और आयरलैंड को 136 रन पर 4 विकेट पर रोक दिया।
0: इसके साथ ही अभी मुकाबला चल रहा है ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड पर। आलोक, इस पर आप क्या कहेंगे?
1: जी, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का मुकाबला चल रहा है। इस समय नीदरलैंड की जो स्थिति है 80 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही बड़ा स्कोर बनाया है। क्या कितने रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने? 200 से अधिक रन,
0: 219 रन 6 विकेटों पर। और इस वक्त की अगर स्थिति पर बात करें तो नीदरलैंड को 46 गेंदों में 140 रन चाहिए, जो कहीं ना कहीं थोड़े मुश्किल। अगर कोई करिश्मा हो जाए, अगर स्टेर कैलिस और बेबेते दे लीड्स की टीम, मतलब उनकी जोड़ी जम जाए और कुछ करिश्मा हो जाए, तो ये मुकाबला वो अभी भी जीत सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये मुकाबला अभी ऑस्ट्रेलिया के पाले में दिख रहा है।
1: जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया काफी मजबूत टीम मानी जाती है अगर वुमेन्स क्रिकेट की बात करें तो, और नीदरलैंड के लिए भी एक मौका है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा वो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, और देखना है कि कहां तक पहुंच पाती है नीदरलैंड की टीम।
0: ठीक, वही बात करते हैं अगर प्रीव्यू पे, तो पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। पाकिस्तान महिला और बांग्लादेश महिला टीमों के बीच एक महत्वपूर्ण मुकाबला होगा, जिसमें दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत करने की कोशिश करेंगी। दक्षिण अफ्रीका से मामूली अंतर से हारने के बावजूद पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया से मिली करारी हार के बाद नीदरलैंड्स पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करते हुए जोरदार वापसी की। इस मुकाबले के कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। तो क्या कहते हैं आप, सेमीफाइनल का टिकट है एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश?
1: जी बिल्कुल, अब देखना है कि किस तरह का प्रदर्शन करती है पाकिस्तान भी। आप बात करेंगे तो भारत के साथ पहले मुकाबले में उनकी हार हुई थी, वही बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कारी हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना है कि ये जो मैच है कहां पहुंचती है और पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है। अब बात करते हैं कल के खेले गए एक और मैच है आज, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। उस मैच की बात करें तो इंग्लिश महिला टीम का सामना स्कॉटलैंड महिला टीम से होगा, जो पूरी तरह से ब्रिटिश टीमों का मुकाबला है। चोटिल कप्तान नेट साइवर ब्रंट ने ना होने के बावजूद इंग्लैंड आत्मविश्वास से भरी हुई, वही स्कॉटलैंड टूर्नामेंट में अपनी ऐतिहासिक पहली महिला T20 विश्व कप जीत से उत्साहित होगी। इंग्लैंड अभी भी जीत की प्रबल दावेदार है, लेकिन स्कॉटलैंड ने भी मुकाबला

0: कृपया फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
1: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: बबली कुमार प्रजापति, मोहल्ला दौजवाला, शिकारपुर बुलंदशहर से बात कर रहा हूँ जी।
0: किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज हमें मनोज चौधरी जी की आवाज में अच्छी सी रागनी सुनवा दो।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: पत्नी पुष्पा देवी, लड़की डॉली कुमारी, लड़का मोन कुमार, एक लड़की पूजा रानी, लड़का छोटा भीम, शीशपाल अकेला है और अनपर बिहारी जी हैं। राम राम जी।
0: राम राम जी। तो आइए आप सभी भाइयों की पसंद पर सुनते हैं मनोज चौधरी से ये रागनी। किस्सा रहेगा राजा मोरध्वज का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो शशि भैया, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं गांव चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: देवी सिंह को सुना देना जी। कुछ नाम है जी, बाबू अंसारी, मंटू शर्मा, लीलाधर।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं मंटू शर्मा बोल रहा हूँ, गांव खेड़ा से, तहसील भद्रा, जिला मनगढ़, राजस्थान से। सर,
0: किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: देवी सिंह की आवाज में सर।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं जगदीश चिंदाड़िया बोल रहा हूँ जी, डाणा निशान, जिला भिवानी जी।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: जयवीर सिंह को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे
3: जी। बच्चों के भी नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
3: राजवीर चिंदाड़िया, सतीश चिंदाड़िया, ऋतिक चिंदाड़िया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: सही भाई जी, राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: गणगंगा नेवान से बोल रहा हूँ, घनश्याम।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: जयवीर को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: जो नाम ले लूं?
0: हाँ बोल दीजिए।
4: मेरी बहन ज्ञानपति आनंदी है, ज्ञानदास प्रधान जी है, सबको राम राम।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम जना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: जयवीर सिंह को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: कुछ नाम है जी?
0: हाँ नोट कराएं।
5: जयपाल सिंह अध्यक्ष, मास्टर ब्रह्म सिंह, जगदीश मोटा बादलपुर, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, आरव भाटी और गरु गुजर।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार। राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: फिल्म सिनेमा रोड मोती नगर नई दिल्ली से आपका पुराना दोस्त गौरव मदान बोल रहा हूँ।
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है और बताइए आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज जयवीर सिंह।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
7: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं गांव चोलदा बागपत से संजय ढींगे बोल रहा हूँ।
0: संजय भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: आज हम जयवीर सिंह को सुनना चाहेंगे, उनकी कोई अच्छी सी रागनी।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
8: हेलो ग्राम संसार। नमस्कार शशि भाई।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
8: मैं जी दौड़ा है, जिला महेंद्र, हरियाणा से, पंडित यादराम पटवारी बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: आज सुनवाओ जी, जयवीर सिंह जी को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
8: और कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
8: सुहानी शर्मा, यश भारद्वाज।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आप सभी भाइयों की पसंद पर सुनते हैं जयवीर सिंह से ये रागनी, खिस्सा रहेगा रामायण का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर

0: 3 3 2, इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
1: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7 बजने ही वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र

0: सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देशभर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में 2 संपर्क अधिकारियों और 1 चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, आज के कार्यक्रम कृषि जगत में सबसे पहले बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की, ताकि हमारे वो किसान बहन भाई जो अभी तक एफपीओ का फायदा नहीं ले पा रहे हैं या इस संगठन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनको जानकारी मिले ताकि वो इसका लाभ उठा पाए। किसान बहन भाइयों, किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ आप किसान भाइयों द्वारा बनाई गई एक सामूहिक संस्था है, जिसका उद्देश्य बाजार में किसानों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और आपकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।
1: बिल्कुल शशि भाई, ये एक पंजीकृत कानूनी संस्था है जो कृषि उत्पादों के सामूहिक एकत्रीकरण, इनपुट की थोक खरीद, बाजार तक सीधी पहुंच और मूल्य संवर्धन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से किसान भाइयों को स्केल की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने में मदद करती है।
0: बिल्कुल, हमारे जो सीमांत किसान भाई बहन हैं और छोटे और भूमिहीन किसान हैं, उनको एफपीओ के रूप में एकत्रित करने से बाजार संपर्क बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे आप किसान भाइयों की आय और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ये संगठन छोटे किसानों को संपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रदान करता है और साथ ही विपणन, तकनीकी सेवाएं, प्रसंस्करण और खेती के अन्य पहलुओं को कवर करता है।
1: बिल्कुल, एफपीओ एक ऐसी संस्था है जो छोटे किसानों को एक साथ जोड़ती है और एक कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होते हैं। वो अपने सदस्यों की उपज को इकट्ठा करते हैं और सामूहिक रूप से बाजार में बेचते हैं। ये संगठन कृषि आदानों की थोक खरीद करता है। ये कृषि आधारित प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन गतिविधियों में भी शामिल होता है। ये किसानों को ऋण, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल, तो हमारे वो किसान बहन भाई जो इस संगठन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और साथ ही साथ, जैसा कि आप जानते हैं, खरीफ मौसम की जो फसलें हैं उनकी बिजाई का समय चल रहा है और खरीफ फसलों के लिए हमें बीज की, खाद की आवश्यकता होती है, तो किसान उत्पादक संगठनों द्वारा यानी कि एफपीओज के माध्यम से खरीफ इनपुट यानी कि बीज खाद की सामूहिक खरीद कैसे की जाती है, इसी विषय को लेकर के आपको सुनवाते हैं एक जानकारी दे रहे हैं प्रवीण कुमार सक्सेना, जो कि एक एफपीओ किसान है और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार, हम अपने कार्यक्रम में जानकारी के लिए कृषि वैज्ञानिकों को आमंत्रित करते हैं, उसके साथ साथ कभी कभी जो कृषि अधिकारी हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं, लेकिन समय समय पर हम अपने कार्यक्रम में ऐसे किसान भाइयों को भी आमंत्रित करते हैं, कृषि उत्पादन संगठन से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलता है। आज हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार नरसेना जी, जो कि एक किसान उत्पादक संगठन चला रहे हैं, और इनका ये किसान उत्पादक संगठन क्या है और कहां पर चला रहे हैं, क्यों हम इन्हीं से इसके बारे में विस्तार से जानकारी लें। तो प्रवीण कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार साहब।
2: मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि आपका संगठन में कितने लोग हैं और किस तरीके से काम करता है।
3: हमारा जो संगठन है नरसेना ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, हम लोगों से 597 जो रजिस्टर्ड किसान हैं, तो उनके लिए हम लोग बीज का उत्पादन एवं ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बीज का उत्पादन हम लोग कैसे करते हैं
2: जी।
3: बीज जनरली क्या है, हम कह सकते हैं कि 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड, और लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो पांचवा है वो टीएल सीड भी होता है। तो यदि हम किसान भाई सभी मिलकर एक संगठन बनाकर बीज का उत्पादन करते हैं, तो इससे हमारे किसान भाइयों को उत्पादन में एक जो इनकम कह सकते हैं, जो आय है, वो उसकी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम जो गवर्नमेंट के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या विश्वविद्यालय है, तो वहां से हम लोग ब्रीडर सीड परचेज कर सकते हैं, और ब्रीडर सीड परचेज करने के बाद में जो हमारे किसान भाई हैं, जो अपने मेंबर हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, और ब्रीडर सीड से हम लोग फाउंडेशन सीड बनाए, जिससे कि किसानों की जो इनकम है, जो जनरली खाद्यान्न के लिए लोग जो फसल तैयार करते हैं, उससे ज्यादा हमको बीज बनाने में आय मिलेगी किसान भाइयों को। तो यदि हम फाउंडेशन या सर्टिफाइड सीड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हम लेके आते हैं, तो अपने खेत पर हम लोग सर्टिफाइड सीड तैयार कर सकते हैं, जिसको हम आगे चल के

0: अच्छे रेटों में अच्छे मूल्य पर हम लोग उसको बेच सकते हैं। जिस तरह से हमारा किसान संगठन काम कर रहा है, हम बीज उत्पादन के साथ साथ में हम लोग ऑर्गेनिक खाद पर भी काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो काउ यूरिन बेस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स है, यानी कि हम कह सकते हैं केमिकल फ्री फार्मिंग यदि हमें करनी है, यदि हमको केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना या किसी भी जहर का प्रयोग नहीं करना फसल में, तो आखिर हम उसकी जगह पर किस उत्पाद को लेके आए जिससे कि हमारा कीड़ा भी और रोग भी कंट्रोल हो जाए और उत्पादन भी लगभग उतना ही निकलना चाहिए। तो इसके लिए हमारा किसान संगठन ने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में काउ यूरिन डेयरी, गोमूत्र की डेयरी बनाई हुई है, जिनसे हम लोग 10 रुपए लीटर गोमूत्र परचेज करते हैं। इससे क्या होता है, जो किसान भाई है जो दूध के साथ साथ में उन डेयरियों पे गोमूत्र को बेचता है, जिससे कि उसकी इनकम बढ़ जाती है और उस गोमूत्र को हम अपनी यूनिट पे लाके उससे हम दवाई बनाते हैं। जैसे 3 प्रकार की हम लोग दवाई बनाते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है और एक दानेदार फॉर्म में है। और इसका जो माध्यम है बिक्री का, हमारे संगठन ने एक जो सहकारिता विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, उससे हम लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है, जो हर जिले में लगभग किसी जिले में 96 सोसाइटी है, किसी में 167 सोसाइटी। जैसे एग्जाम्पल बताऊं आपको, बुलंदशहर के अंदर 167 काउंटर हैं, बीपैक सोसाइटी बोलते हैं, सरकार के द्वारा खाद बीज बिक्री जो केंद्र होते हैं। तो हम लोगों ने उनसे एग्रीमेंट किया हुआ सहकारिता से, जिससे कि किसान को ये दवाइयां सस्ते दर पर उपलब्ध हो सकती हैं। हमारा संगठन इन दवाइयों को बनाने के बाद में सहकारिता को सप्लाई देता है, जिससे कि किसान केमिकल जो फर्टिलाइजर है धीमे धीमे उसमें कमी आती जा रही है, लोग लगाना नहीं चाहते। हम किसान अपने मेंबरों को ये भी समझाते हैं कि हम कम से कम केमिकल का प्रयोग करें, क्योंकि केमिकल का प्रयोग करने से जो पौधे की जो इम्यूनिटी होती है वो कमजोर होती चली जाती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि शायद केमिकल का प्रयोग करने से जो कीड़े अथवा रोग के लिए जो हम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, इससे क्या पौधे की इम्यूनिटी कमजोर होगी और धीमे धीमे, क्योंकि सिस्टमिक पॉइजन जो होता है 1 महीने तक उसमें पौधे के अंदर उसका असर होता है, वो धीमे धीमे एज ए स्लो पॉइजन वो हमारे अंदर भी आता चला जाता है। तो यदि हम ऑर्गेनिक जो गोमूत्र से बनी हुई दवाई जो हमारे किसान संगठन तैयार कर रहा है और सहकारिता के माध्यम से जो हम लोग बिक्री कर रहे हैं, यदि उनका प्रयोग करते हैं, तो उनका जो प्रोड्यूस पैदा होगा वो 100% ऑर्गेनिक होगा, जिसका सेवन पूरी मानव जाति करेगी। तो हम कह सकते हैं कि गाय का संरक्षण भी इस मॉडल में है और पूरी मानव जाति की सुरक्षा भी इसी के अंदर निहित है।
1: जी, लेकिन जानना चाहूंगा कि जो बीज का उत्पादन करते हैं, तो बीज तो आपने मान लिया किसी संस्थान, किसी विश्वविद्यालय से लिया, और उसका जब उत्पादन करते हैं वो किसकी देखरेख में होता है और कौन सी कृषि क्रियाएं करते हैं? क्या खास जो एक खाने वाला उत्पादन किया जाता है और एक जब बीज का उत्पादन किया जाता है, उसमें आपको क्या विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है?
0: देखिए, हमारे जो किसान संगठन है, सबसे पहले जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर वैरायटी जैसे DWR करनाल, जो गेहूं का शोधन निदेशालय है करनाल में, या हम पूसा इंस्टीट्यूट से हम लोग ब्रीडर सीट परचेज करते हैं। ब्रीडर सीट परचेज करने के बाद में जो स्लिप होती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सीड सर्टिफिकेशन की एजेंसी है, तो हमारे संगठन के द्वारा वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसकी फीस वहां पर हम लोगों को देनी पड़ती है। जब उसका हम लोग अपने यहाँ प्रोडक्शन करते हैं, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो ठीक रहनी चाहिए। तो वो सबसे पहले सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की देखरेख में होती है, वहां से सीड इंस्पेक्टर आते हैं, तो ये देखते हैं कि जो हमने वैरायटी लगाई है क्या उसमें किसी दूसरी वैरायटी के पौधे तो नहीं आ रहे। यदि दूसरी वैरायटी के पौधे आते हैं, तो उस पौधे को उखाड़कर बाहर फेंकने की क्रिया को हम लोग कहते हैं रोगिंग। तो रोगिंग मस्ट होती है इसके अंदर, यानी जिन पौधों को हम नहीं चाह रहे, अनिच्छित जो पौधे हैं उनको उखाड़कर बाहर फेंक देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैरायटी है, जो पौधे हैं, वो 100% जेनेटिक प्योर हैं। तो ये सब हम सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा हम लोग सर्टिफाइड कराते हैं। उसके बाद में एक जगह मिक्सिंग का सिस्टम होता है, जब उसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्टिंग करते समय भी हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो थ्रेसर होता है जो दूसरी वैरायटी को निकाल के आता है, तो उसको हम लोग साफ कर लें। दूसरा एक मिक्सिंग का चांस होता है, जो बैग्स होते हैं उनमें भी पुरानी वैरायटी जो होती है, जो पहले हमने हार्वेस्टिंग की थी, उनके दाने लगे होते हैं, तो उनको हम ठीक तरह से झाड़ लें। झाड़ने के बाद में उस सीड को हम पैक कर सकते हैं और प्रोसेस करके भी हम लोग, या यदि हमारा संगठन काम कर रहा है, प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट नहीं है उनके पास में, तो भी हम लोग मैनुअली उसको साफ करने के बाद में अपने किसान भाइयों को सस्ते दर पर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस वैरायटी को। और जैसा कि आपने कहा कि जो खाने वाली जो फसल है उसमें तो क्या डिफरेंस है, जो खाने वाली फसल है उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान देना चाहिए। एग्जांपल मैं आपको धान के रूप में बताता हूं कि हर किसान को जब खाने के लिए भी हम लोग तैयार करते हैं, मंडी के लिए भी तैयार करते हैं, तो जो बांगरू कहते हैं, जिसको जंगली पौधे कहते हैं, धान में हमने देखा गया कि उसमें जंगली पौधे थे उसमें आ जाते हैं, तो प्रत्येक किसान भाइयों को खाने के लिए भी बनाते समय जो जंगली पौधों को उखाड़ के बाहर फेंक देने चाहिए, क्योंकि यदि जंगली जो पौधा उसके अंदर आ जाएगा तो मंडी में उसके रेट कम मिलते हैं, और यदि हम लोग उसकी जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रखते हैं, तो मंडी में जब लेके जाएंगे, जब प्योर सीड होगा, एक जैसा दिखाई देगा, तो उसके हमें रेट अच्छे मिलेंगे। इस तरह से जो हमारा किसान संगठन है उससे वो इनकम कर सकता है, पूरे संगठन के जो मेंबर्स होते हैं उनको उसका फायदा मिलता है सर।
1: अच्छा, जैसे आपने कहा कि

0: करेंगे तो हम देखेंगे कि जो फसल है वो इतनी बढ़िया नहीं हो पाती जितनी कि उसको हम प्रोसेसिंग करने के बाद में होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग का मतलब है हेल्दी सीड। जैसे कि जो नजदीकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, तो हमारे जो किसान भाई हैं, जो किसानों का संगठन है, एज ए बल्क के रूप में हम लोग वहां ले जाएंगे और सस्ते दर पर वो हमारी सीड को प्रोसेस कर सकते हैं। संगठन अपने नाम से भी उसको पैक करा सकता है और अपने नाम से उसे बेच सकता है, क्योंकि हेल्दी जो सीड होगा उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी जो जनरेशन आने वाली है वो भी अच्छी जनरेशन होगी, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूस होगा, जो यील्ड आएगी वो अच्छी आएगी और उसको मार्केट में अच्छा रेट हमें मिल सकता है।
1: बिल्कुल, अगर उसको अच्छे तरीके से सफाई करके और सही से पैकिंग किया जाए। और कहते हैं कि जो चीज दिखने में अच्छी होती है वो बिकती है, तो पैकेजिंग पर भी ध्यान दिया जाता है।
0: हाँ, क्योंकि अलग अलग किसान यदि पैकिंग कराए तो किसान के लिए संभव नहीं होता, लेकिन यदि हमने किसान संगठन बना लिया
1: जी,
0: तो हम लोग अपने जो मेंबरों के द्वारा सीड प्रोडक्शन हुआ सर्टिफाइड, एज ए बल्क में हम लोग नजदीक बुलंदशहर में भी हमारा एनएससी की प्लांट यूनिट लगी हुई है, मेरठ में भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में एक यूनिट लगी हुई है, तो कहीं भी हम लोग किराए पर उसको प्रोसेस करा सकते हैं। और पैकेजिंग पे तो ध्यान इसलिए देना आवश्यक है कि जो देखने में सुंदर होना चाहिए, तो यदि मार्केट में लेके जाते हैं तो हमको पैकेट को फाड़ के तो नहीं दिखाएंगे, तो पैकेट भी सुंदर होना चाहिए, उससे भी हमें एक अच्छी इनकम मिलती है, किसान उसे जल्दी से जल्दी खरीदने की कोशिश करता है, तो पैकेजिंग का भी अपना एक रोल है पैकिंग के समय में, और उससे भी हमारा किसान संगठन अपनी आय बढ़ा सकता है।
1: जो आप जैविक खाद या आप गोबर गोमूत्र से तैयार करते हैं, तो उसकी क्या विशेषता होती है?
0: सर, एक नया फॉर्मूला है, हम इसको अभी यूपी में एक नई परियोजना के तहत कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारे पास गो सेवा आयोग के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, सहकारिता मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें नए फॉर्मूले के साथ में क्या कि हम लोग सबसे पहले काउ यूरिन बेस्ड जो ऑर्गेनिक इनपुट्स बना रहे हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए गाय का मूत्र एवं गाय का गोबर, क्योंकि जो मूत्र होता है उसकी जो स्पेशलिटी है उसमें एक साइटोकाइनी हार्मोन्स पाया जाता है, जिसका काम है फसल के अंदर फूलों की संख्या बढ़ाना। यह साइटोकाइनी हार्मोन्स और किसी जीव के मूत्र में नहीं पाया जाता, केवल गाय के मूत्र में ही पाया जाता है। साथ में हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, जो सड़कों के किनारे पर हर्ब खड़ी रहती है, तो हम लोगों ने अपनी छोटी सी एक लैब में ये हम लोग रिसर्च कर चुके हैं, किसी में बोरोन की मात्रा ज्यादा है, किसी में जिंक की मात्रा ज्यादा है, किसी में सल्फर की मात्रा ज्यादा है, किसी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, उसी के रेशो को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तीन तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जिसमें गोमूत्र में वो जो हर्ब होती है उसको बॉइल करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, निकालने के बाद में हम लोग उसको पैकिंग करते हैं, 1 लीटर की पैकिंग। यदि उसका स्प्रे हम लोग किसी भी फसल में करते हैं तो वो 100% चाहे वो इंसेक्ट हो या डिजीज हो उसको कंट्रोल करती है और प्लांट की वो ग्रोथ बढ़ाएगी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगी। केमिकल में और ऑर्गेनिक दवाई में यही डिफरेंस होता है कि केमिकल 24 घंटे में अपना असर दिखाई देता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक खाद है उसका 4 से 5 दिन फसल के अंदर उसका असर दिखाई देने लगता है।
1: जो आप खाद तैयार करते हैं गोबर के गोमूत्र की और जो भी इससे दवाएं बनाते हैं, तो इनको आप किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, कैसे इसको बेचते हैं, किसानों को कैसे जागरूक करते हैं कि इसका प्रयोग करें?
0: एक तो होता सर मार्केटिंग, एक होता मार्केटिंग डेवलपमेंट। तो हम लोगों का जो एग्रीमेंट है सहकारिता के माध्यम से, पहले हमारा संगठन प्राइवेट में उतरना चाहता था, लेकिन प्राइवेट में जो खाद बीज की जो दुकानें होती हैं उनको एक बहुत बड़ा मार्जिन चाहिए
1: जी।
0: जैसे सपोज करिए हमने उनसे किसी रेट तय किया, तो कई गुना मार्जिन किसान से लेने की कोशिश करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे संगठन ने सहकारिता से एग्रीमेंट किया, क्योंकि सहकारिता जो होता है, सहकारिता मंत्रालय किसानों के लिए नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करता है। जो हर सहकारिता की हर जिले में अपनी सोसाइटी होती है, जिनको बीपैक सोसाइटी बोलते हैं, खाद बीज की दुकानें होती हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, इसका कंट्रोल एआर कोऑपरेटिव, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट होती है एआर कोऑपरेटिव, तो वो उसको कंट्रोल करते हैं। और खाद बीज की सोसाइटी के द्वारा जो किसान को दवाई मिलती है वो सस्ते दर में प्राप्त हो जाती है, और ये हमने बुलंदशहर में एक नया मॉडल सरकार को बना के दिखाया कि इस तरह से यदि हम काम करें और पूरे राज्य में यदि हम काम करेंगे तो गाय की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और यदि हम केमिकल फार्मिंग की बात करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर को कैसे कम करना, क्योंकि फर्टिलाइजर की एक सबसे बड़ी दिक्कत सरकार के सामने आ रही है, हर सोसाइटी पर लाइन लग रही है, झगड़े हो रहे हैं, पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रही है वहां पर और खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही ठीक तरह से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आती है। इसके लिए यदि हम लोग साथ में इन दवाइयों को हम देते हैं, कि बुलंदशहर में हम लोगों ने इसको सरकार के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और किसान इन दवाइयों से बहुत खुश है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जो छोड़े हुए हैं, जिनका मकसद है कि जो बीपैक से जो गांव आते हैं, 9 गांव आते हैं, किसी में 10 आते हैं, उन गांव गांव में जाके किसानों की गोष्ठियां करते हैं, उनके यहां पर हम लोग डेमो लगाते करते हैं, डेमो लगाने के बाद में किसानों की फिर मीटिंग करते हैं, उनको दिखाते हैं इस दवाई का इतना प्रभाव है इस पे, साथ में चेक भी लगाते हैं कि जिन खेतों पर केमिकल लगाया जा रहा है और साथ में जिसने हमारी दवाई का डेमो लगाया है उनमें क्या डिफरेंस है, सब मार्केटिंग डेवलपमेंट के विभाग का काम है। ये हम किसानों को अवगत कराते हैं, समझाते हैं कि आप इस दवाई का प्रयोग करें और ये दवाई आपको नजदीकी जो बीपेक्स सोसाइटी है वहां से सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

0: से कि सस्ते दर में आप लेके इसको यूज कर सकते हैं सर।
1: तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि वो दूसरे तरीके के भी किसान संगठन बना सकते हैं जिससे उनको लाभ मिल सके?
0: देखिए, हम लोग गोष्ठियों में जहां पर हमारा संगठन काम कर रहा है उसके बाद में भी हम किसानों को ये बताते हैं किसान संगठन कैसे बनाए जाते हैं और एक किसान संगठन मिलकर कैसे कार्य कर सकता है। यदि हम एग्जांपल बताएं, यदि कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है तो उसको किस तरह से पीजीएस के द्वारा हम लोग सर्टिफाइड कराएं, क्योंकि किसान ऑर्गेनिक कर लिया लेकिन उसका सर्टिफिकेशन नहीं करा पा रहा जिससे कि उसको अच्छा मूल्य नहीं मिलता। तो उनको बताते हैं गोष्ठियों में कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन का एक नंबर मिलेगा, जब इस प्रोड्यूस को आप बेचेंगे मार्केट में लेके जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई संस्था के द्वारा हमने इसको सर्टिफाइड करा, ये हमारी ऑर्गेनिक खाद्यान्न है, तो उससे मार्केट के जो और जो खाद्यान्न का जो मूल्य है उससे डबल भी हमको मिलने के चांस रहते हैं, 100% हमको एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे किसानों की इनकम बढ़ जाएगी हम कह सकते हैं इसके द्वारा।
1: बहुत से किसान भाई संगठन बनाते हैं कि जो उत्पाद है उसका संस्करण करके उसके उत्पाद बेचते हैं, उसका भी संगठन बनाए हुए हैं, तो उनके लिए आप कह
0: रहे हैं? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जो किसान भाई अपने सेपरेट कुछ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस तैयार करते हैं, जैसे दालें तैयार कर रहे हैं, सरसों का तेल तैयार कर रहे हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग की, क्योंकि जो अपना किसान है जो स्वयं अपने प्रोड्यूस तैयार करके उसे बेचने में दिक्कत आ रही है। लेकिन यदि इसी को हम संगठन का रूप दे देते हैं, ऐसे किसानों को मिला के एक संगठन बना देते हैं, तो यदि मिलकर काम करें हम लोग, एक ट्रक, दो ट्रक, चार ट्रक, जितना भी माल होता है, तो उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट भी हमें सस्ता पड़ेगा और वो कंपनी भी उस प्रोड्यूस को लेने को तैयार हो जाएगी। तो संगठन बना के इस तरह से किसान भाई अपना लाभ बढ़ा सकता है।
1: जी बिल्कुल प्रवीण कुमार जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित तौर पर किसान भाई इसका फायदा उठाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान उत्पादक संगठनों द्वारा यानी FPOs के माध्यम से खरीफ इनपुट बीज खाद की सामूहिक खरीद, आप सुन रहे थे ये बातचीत। जानकारी दे रहे थे FPO किसान प्रवीण कुमार सक्सेना और इनसे बात कर रहे थे शिव नंदन लाल।
3: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक उपदेश, कलाकार हैं राकेश त्यागी।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये उपदेश। कलाकार थे राकेश त्यागी।
1: नीलम बहन, भारत सरकार घरेलू स्तर पर सोयाबीन जैसे तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन चला रही है। ये योजना वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक लागू है, जिसका लक्ष्य खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
0: बिल्कुल शशि भाई, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का उद्देश्य तिलहन फसलों का उत्पादन 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन तक करना है और साथ ही खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को मौजूदा 57% से घटाकर 28% तक करना है और इसके अलावा जीनोम एडिटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले और अधिक तेल देने वाले सोयाबीन के बीज किसानों तक पहुंचाना है।
1: बिल्कुल, तो नीलम बहन, ये तो हमारे किसान बहन भाइयों ने जाना राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन सोयाबीन के बारे में। और देखिए, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों को बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
0: कल ग्राम संसार कार्यक्रम में बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा सुनेंगे और राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना की जानकारी दी जाएगी।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और उनकी पसंद के लोक गीत सुनवाए जाएंगे और साथ ही किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह, इस विषय पर आप चर्चा सुन सकेंगे। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की। लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कव्वाली एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम। आरंभ में आइए सुनते हैं वारसी ब्रदर्स की आवाज में ये कव्वाली।

0: आप सुन रहे थे कव्वाली एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना,
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने कल होने वाली नीट पुनः परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दिल्ली सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री

0: रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त सभी अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का निरंतर प्रयास है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,880 करोड़ रुपए की सीधी सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहयोग किसानों को कृषि संबंधी खर्चों में आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है और उत्पादकता तथा आय वृद्धि में सहायक बन रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्म दिवस के अवसर पर आज दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति का प्रेरणादायक जीवन सफर, विनम्रता और जनसेवा के प्रति समर्पण देशभर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपति का जीवन संघर्ष से शिखर तक की अनुकरणीय गाथा है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि उनका जीवन नारी शक्ति की प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की शालीनता, संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा सभी का सदैव मार्गदर्शन करती रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सभी निवासियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि महान क्रांतिकारियों और साहित्यकारों की यह भूमि भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरव स्तंभ है। उन्होंने कहा कि बंगाल की नई ऊर्जा राज्य के चहुमुखी विकास और स्वर्णिम भविष्य की प्रतीक बन रही है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बंगाल निरंतर प्रगति, समृद्धि और विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस संगोष्ठी का विषय वर्तमान समय में शास्त्रार्थ का अनुप्रयोग था। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने बताया कि भारतीय सभ्यता की वैचारिक शक्ति का आधार संवाद, तर्क और ज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ ने सदियों से विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच सार्थक विमर्श को प्रोत्साहित करते हुए समाज को बौद्धिक दिशा प्रदान की है।
1: लोकतंत्र की जो आत्मा है वो शास्त्रार्थ में बसती है, संवाद में बसती है। संवाद का अर्थ है सकारात्मक दृष्टिकोण से वाद विवाद। आज के युग में स्पीकर के नाते मैं कह सकता हूँ, मैं प्रतिदिन ये महसूस करता हूँ कि शायद संवाद और सहन शक्ति उसमें कमी आ रही है और उसके पीछे का दृष्टिकोण ये है कि सब कुछ राजनीति से प्रेरित अगर हो जाएगा तो फिर सच कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा, जो हमारे आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
0: पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भया निधि परियोजना के अंतर्गत नई दिल्ली में निर्भय चेतना पर 3 दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
2: मंत्रालय ने कार्यक्रम के दौरान निर्भय चेतना प्रशिक्षण मॉड्यूल भी शुरू किया। मंत्रालय ने कहा कि निर्भय चेतना महिलाओं से संबंधित मुद्दों, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा भी शामिल है, के प्रति पुरुषों के जागरूक करने की एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। पंचायती राज के सचिव विवेक भारद्वाज ने कल सम्पन्न हुए कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और समान भागीदारी सुनिश्चित किए बिना विकसित भारत की परिकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नीट 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दिल्ली समेत भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने देशभर में मॉक ड्रिल आयोजित की। एनटीए ने कहा कि पुनः परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और परीक्षा के सफल आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए

0: बहु स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसमें सीसीटीवी निगरानी, आधार युक्त बायोमेट्रिक सत्यापन, परीक्षा सामग्री के परिवहन के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जीपीएस सक्षम वाहनों का उपयोग तथा गोपनीय सामग्री को सील बंद प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित स्थानों तक सुरक्षित ढंग से पहुँचाने की व्यवस्था शामिल है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
1: इसी बीच दिल्ली सरकार ने भी पुनः परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन की ओर से विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं, जहां अभिभावकों के बैठने और विश्राम की व्यवस्था के साथ साथ स्वच्छ पेयजल, शिकंजी, ओआरएस, चाय और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के बाहर ही छात्रों और उनके परिजनों के लिए प्रतीक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परीक्षा के दिन किसी भी परिवार को परिवहन, गर्मी या प्रतीक्षा से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नीट अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में आज दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल द्वारा यशोत्सव 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग, अनाथ, ट्रांसजेंडर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले उन विद्यार्थियों का सम्मान किया गया जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, राज्य सेवा, खेल, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यशोत्सव केवल एक सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि संघर्ष, संकल्प और सफलता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि आज सम्मानित हो रहे विद्यार्थियों ने यह सिद्ध किया है कि सही अवसर, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी सपना असंभव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
2: ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दिल्ली सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा देशभर में लगभग 100 स्थानों पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। कल दिल्ली सरकार भी योग दिवस के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस आयोजन के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित विशेष योग कार्यक्रम में शहरवासियों के साथ योग करेंगी। इस कार्यक्रम में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, जिसने आज पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मक जीवन का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के समन्वय का विज्ञान है, जो वर्तमान समय की व्यस्त जीवन शैली में व्यक्ति को मानसिक शांति, ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील भी की है। योग कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सेंचुरी परिसर में विकसित भारत नर्सरी का निरीक्षण करेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री वहां उगाए जा रहे विभिन्न देशी वृक्षों, पौधों और जैव विविधता संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करेंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
1: इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं कल तड़के 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर के आज आखिरी दिन लोगों में अधिक उत्साह देखा गया। शिविर में नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। शिविर में लोगों ने राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्ध और विधवा पेंशन, नए जल कनेक्शन, आधार पंजीकरण, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर त्वरित प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज पांडव नगर पुलिस स्टेशन में थाना दिवस जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों और शिकायतकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और अपनी शिकायतें, चिंताएं और सुझाव साझा किए। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत अब तक 209 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें से 161 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए। पुलिस ने बताया कि तकनीकी निगरानी और समन्वित जांच से मोबाइल फोन का पता लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में आज भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने कल होने वाली नीट प्रवेश पुनः परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दिल्ली सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8 बजे है। अब पेश है मुशायरा।
5: समीन की खिदमत में कलीम अहमद का आदाब। समीन, हम सब जानते हैं कि शायरी दिलों को जोड़ने, एहसासात को जगाने और मुआशरे में मोहब्बत व रवादारी को फरोग देने का एक हसीन जरिया है। मुशायरे लोगों के दिलों में उखुवत, सुलहो आश्ती और एहसास हमदर्दी पैदा करने का एक मुअस्सर वसीला हैं। अखलाकी और समाजी रवैयों को संवारने का काम करते हैं और मुआशरे में अमन, हमाहंगी और इंसानी हमदर्दी को फरोग देते हैं। इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए आज की इस महफिल सुखन में हम आपके लिए एक मुशायरा लेकर हाजिर हुए हैं, जिसकी निजामत कर रहे हैं जनाब शकील जमाली।
6: आज की इस नशस्त में जो शोरा-ए-किराम हिस्सा ले रहे हैं उनमें मोहतरम जनाब नसीब खान साहब, जनाब परवेज शहरियार साहब, आसिफ अमान सैफी और मैं शकील जमाली। تو سب سے پہلے ایک تازہ کار اور خوبصورت لب و لہجے کے شاعر آصف امان کے روبرو چلتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں ان کی شاعری کے لیے. آصف امان سیفی.
7: بہت شکریہ. ایک تازہ غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. پلکوں پہ رکھے خواب سے کچھ ہو نہیں رہا. پلکوں پہ رکھے خواب سے کچھ ہو نہیں رہا. ہونٹوں پہ انقلاب سے کچھ ہو نہیں رہا.
8: کیا بات.
6: بہت اچھا.
7: کچھ اور ہی جہاں ہو یہ میرے حساب سے.
6: کیا بات.
8: کچھ اور ہی
7: جہاں ہو یہ میرے حساب سے. لیکن میرے حساب سے کچھ ہو نہیں رہا.
6: بہت اچھا.
7: خود سے سوال کیجئے اپنے جواب پر.
8: خود سے سوال کیجئے اپنے جواب پر.
7: خود سے سوال کیجئے اپنے جواب پر. جب آپ کے جواب سے کچھ ہو نہیں رہا. خود سے سوال کیجئے اپنے جواب پر. جب آپ کے جواب سے کچھ ہو نہیں رہا. اب پھر سے مہتاب کی درکار ہے انہیں.
6: اب پھر سے مہتاب کی درکار ہے انہیں.
7: اب ان کا آفتاب سے کچھ ہو نہیں رہا.
6: کیا بات.
7: کیا کیجئے کہ ختم ہوں اندر کی اجلتیں.
8: کیا کیجئے کہ ختم ہوں اندر کی اجلتیں.
7: باہر کی آب و تاب سے کچھ ہو نہیں رہا.
6: بہت اچھا.
8: بہت خوب.
7: کچھ سوچ کر جناب نہیں کر رہے ہیں کچھ.
6: کیا بات ہے.
7: کچھ سوچ کر جناب نہیں کر رہے ہیں کچھ. ایسا نہیں جناب سے کچھ ہو نہیں رہا.
8: کیا بات ہے.
7: کچھ سوچ کر جناب نہیں کر رہے ہیں کچھ.
6: ایسا نہیں جناب سے کچھ ہو.
7: ایسا نہیں جناب سے کچھ ہو نہیں رہا. ہم پر مزید قہر کوئی پڑنا چاہیے.
6: ہم پر مزید قہر کوئی پڑنا چاہیے.
7: بدلاؤ اس عذاب سے کچھ ہو نہیں رہا. ایک غزل کے چند اشعار اور دیکھے گا. مطلب یوں ہے کہ سارے مذہب تھے ایک آنگن تھا.
6: کیا بات.
7: سارے مذہب تھے ایک آنگن تھا. قابل فخر اپنا بچپن تھا. سارے مذہب تھے ایک آنگن تھا. قابل فخر اپنا بچپن تھا. یہ خلا دوست بھر نہیں سکتے.
6: کیا بات.
8: یہ خلا دوست بھر نہیں سکتے.
7: یہ خلا دوست بھر نہیں سکتے. وہ کھلے دل سے میرا دشمن تھا.
6: کیا بات. بہت اچھا.
7: یہ خلا دوست بھر نہیں سکتے.
6: بہت اچھا.
7: وہ کھلے دل سے میرا دشمن تھا. اب اسی بات پر پشیما ہے. اب اسی بات پر پشیما ہے.
6: کیا بات ہے.
7: مجھ سے جس بات پر وہ بدزن تھا.
6: کیا بات.
8: کیا بات.
6: کیا بات.
8: بہت خوب.
7: اب اسی بات پر پشیما ہے. مجھ سے جس بات پر وہ بدزن تھا. تیرے در سے ہی جی نہیں بھرتا. شہر دیکھیں تیرا بڑا من تھا.
6: بہت اچھا. بہت اچھا.
8: اچھا شعر.
7: تیرے در سے ہی جی نہیں بھرتا. شہر دیکھیں تیرا بڑا من تھا. اور شعر دیکھیں شعر آخر کے. ایک دوجے کے دل میں تھے آزاد.
8: مطلب
7: ایک دوجے کے دل میں تھے آزاد. کیسا مضبوط ہوا اپنا بندھن تھا.
6: کیا بات.
7: بہت شکریہ. ایک غزل اور.
6: جی فرمائیں.
7: یہی تعویذ کا بس فائدہ ہے.
8: یہی تعویذ کا بس فائدہ ہے.
7: تمہارے ہاتھ کا باندھا ہوا ہے.
8: بہت خوبصورت.
7: تمہارے ہاتھ کا باندھا ہوا ہے. بس فائدہ ہے.
6: تمہارے ہاتھ کا باندھا ہوا ہے.
7: ہمارے بیچ ایک رشتہ بنا ہے. तुम्हें भी उसने ही धोखा दिया है।
6: बहुत
7: बहुत हमारे बीच रिश्ता बना है, तुम्हें भी उसने ही धोखा दिया है। वो रूठा दोस्त वापस आ गया है, वो रूठा दोस्त वापस आ गया है, मगर बेसाख्ता पन जा चुका है।
6: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
7: और शेर बतौर खास के, तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है,
6: तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है,
7: तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया है।
6: क्या बात, क्या बात।
7: तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया है। ये रातें नींद से परहेज की हैं,
9: ये रातें नींद से परहेज
7: की हैं, इन्हें सोकर गुजारा जा रहा है।
6: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
9: बहुत खूब।
7: और शेर देखें कि जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, वो उन वक्फों की भाषा जानता
6: है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
9: क्या कहने हुआ,
7: जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, वो उन वक्फों की भाषा जानता है। चुराती हैं नजर मेरी ही आंखें, चुराती हैं नजर मेरी ही आंखें, इन्हें एक ख्वाब अक्सर देखता है।
6: बहुत
9: वाह वाह।
7: चुराती हैं नजर मेरी ही आंखें, इन्हें एक ख्वाब अक्सर देखता है। तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया है।
6: बहुत अच्छा दोस्तों, ये थे आसिफ अमान सैफी साहब, जिनके कलाम से हम लोग महसूस हो रहे थे। अब हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है कि जो न सिर्फ शेरी सतह पे, बल्कि अगर उनका नसरी काम देखा जाए तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये शख्सियत शेरी सतह पे या नसरी सतह पे। कई असनाफ की हामिल एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने अदब की कई असनाफ में तबाजमाई की है और कामयाबी के साथ उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। मैं यहाँ परवेज शहरयार साहब की खिदमत में मुल्तमिस होना चाहता हूँ उनकी शायरी के लिए। मोहतरम परवेज शहरयार साहब,
10: बहुत शुक्रिया शिकिल जमाली साहब। मैं अपनी नसीब नज़्म पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है गुम हो गई है कोई शय। मेरा कयास था कि जीस्त के लम्हात तेरी अंबरी जुल्फों के दाम में गिरफ्तार हुए बगैर भी गुजर जाएंगे।
6: क्या बात है, क्या बात है।
10: मेरा कयास था कि जीस के लम्हात तेरी अंबरी जुल्फों के दाम में गिरफ्तार हुए बगैर भी गुजर जाएंगे, लेकिन ये मेरा वाहमा था। तेरी याद किसी मौज दर मौज हल्के गिरदाब के मानिंद उलझती ही रही तमाम उम्र, कभी चैन लेने ही न दिया। सोचा था कि तेरी चश्म शीरी के मासिवा और भी पुरकशिश राहें हैं।
9: बहुत अच्छा।
10: मरमरी बाहें हैं,
9: बहुत अच्छा।
10: तेरी मरमरी बाहों के सिवा,
6: बहुत अच्छा।
10: लेकिन ये मेरा वाहमा था, यादें तेरी जुल्फ गिरागीर की एक अरसा बीत जाने के बाद भी डाल देती हैं मेरे पाँव में यक लख्त, खेच देता है कोई लक्ष्मण रेखा मेरी चारों ओर, नमूदार हो जाती है मेरी नजरों में कोई पत्थर की लकीर सी।
6: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
10: सोचा था तुम्हारे बगैर भी जीस्त मेरी संवर सकती है,
9: संवर सकती।
6: बहुत अच्छा।
10: दिन चमक सकता है, रात महक सकती है।
9: क्या बात।
10: लेकिन ये मेरा वाहिमा था,
6: वाह वाह।
10: आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो तुम्हारी यादों के पुरसरार घने जंगल में खड़ा तन्हा कुछ ढूंढ रहा हूँ, ऐसे जैसे गुम हो गई हो कोई शय किसी राहगीर की, गुम हो गई हो कोई शय जैसे किसी
6: राहगीर। बहुत अच्छा,
7: बहुत अच्छा,
6: क्या बात है।
10: दूसरी नज़्म पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ सदर मोहतरम से।
6: इस्तकबाल, इस्तकबाल
10: जी। इसका उन्वान है तशकीक।
6: क्या कहना।
10: वो इसी खाक से उठा था मरगोला बन के, रोशनी पर सवार आफाक पर गया था।
6: क्या बात,
9: क्या बात,
6: क्या बात।
10: वो इसी खाक से उठा था मरगोला बन के, रोशनी पर सवार आफाक पर गया था वो दाना कि जिसे फरिश्तों ने नकार दिया था।
8: بہت اچھا.
6: کیا بات ہے, کیا بات.
10: کتنا نادان تھا وہ, ہم جولی سے قربت کا احساس, کتنا خوش رہتا تھا.

0: वो मानवियत की तलाश में सांप के फन जैसे दाने गंदुम चखने की पादाश में, सांप के फन जैसे दाने गंदुम चखने की पादाश में, मरगोलाए खाक गुनाह की आलाइशों से
1: क्या बात है,
0: कितना गिरा बार हुआ फिर खाक पर आकर गिरा, कितना नाफरमान था वो कफे तासुफ मलते मलते कई सदियां बीत गईं।
1: क्या बात
2: है,
0: कफे तासुफ मलते मलते कई सदियां बीत गईं। नदी नाले समंदर बनाए अपनी आबे चश्मे तर से, आंसुओं के दरिया बहाए
1: बहुत अच्छा है,
0: लेकिन गुनाह उसके ये सब कुछ भी न धो पाए।
1: क्या बात है,
0: हम सफरे हयात ने हौसले बढ़ाए, खून की नदी आग का दरिया इंसानी आबादी का मुतवातिर इंतकाल।
1: क्या बात है,
0: रोशनियों के लगातार हमले दूरियां बढ़ती गई फासलों में इजाफा हुआ, हम नशी की आस्तीन में सांप था आज वो घोड़ा बना, गंदुम का बोझ अपनी पीठ पर उठाए, सांप की मानिंद फुनकारता है भागता है,
2: बहुत है
0: ओ खुदाया कितना तवील रास्ता है, हम सफर के जेरे पा कुर्रे माहे तमाम, बहर साथ गर्दिश में है और उसने आज उठाया है सवाल।
1: क्या बात,
0: बोल मेरी तशकीक बड़ी है या तेरा यकीन।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
2: बहुत
3: बहुत।
1: दोस्तों ये थे परवेज शहरयार साहब, जिनसे आप उनकी नसरी नज़में सुन रहे थे और आप देख रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपने आसपास की जिंदगी का खूबसूरती से अहाता किया अपनी नसरी नज़मों में। अब मैं शकील जमाली कुछ अशार की इजाज़त चाहता हूँ, एक गज़ल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखिएगा कि पहले तो ताल्लुक से मफादात निकाले,
2: पहले तो ताल्लुक
1: पहले
2: से
1: तो
2: निकाले,
1: ताल्लुक से मफादात निकाले फिर शौक से इम्काने मुलाकात निकाले।
0: वाह क्या बात,
1: पहले तो ताल्लुक से मफादात निकाले फिर शौक से इम्काने मुलाकात निकाले, मैं खैर सगाली के लिए हाथ बढ़ा दूं जेबों से वो पल भर को अगर हाथ निकाले।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है,
1: मैं खैर सगाली के लिए हाथ बढ़ा दूं जेबों से वो पल भर को अगर हाथ निकाले, आखिर में दे अपनी मोहब्बत की दुहाई, आखिर में दे अपनी मोहब्बत की दुहाई, पहले तो मेरे जहन से शुभात निकाले, आखिर में दे अपनी मोहब्बत की दुहाई, पहले तो मेरे जहन से
2: शुभात
1: निकाले, कोई तो बुराई को भलाई में बदल दे,
2: कोई
1: तो बुराई को भलाई में बदल दे, कोई तो दिमागों से खुराफात निकाले, कोई तो बुराई को भलाई में बदल दे, कोई तो दिमागों से खुराफात निकाले, तजदीदे ताल्लुक को वो आता है तो आ जाए, तजदीदे ताल्लुक को
2: वो
1: आता है तो आ जाए, कहना के पुरानी न कोई बात निकाले, तजदीदे ताल्लुक को वो आता है तो आ जाए, कहना के पुरानी न कोई बात निकाले, एहसास में चुभता हुआ तन्हाई का कांटा, तन्हा नहीं निकले तो मेरे साथ निकाले, एहसास में चुभता हुआ तन्हाई का कांटा,
0: बहुत उम्दा,
1: तन्हा नहीं निकले
2: तो मेरे साथ
1: निकाले, दो चार चरागों के सिवा कुछ नहीं बचता, दो चार चरागों के सिवा कुछ नहीं बचता, ये उम्र अगर अरसे जुल्मात निकाले,
2: बहुत अच्छा,
1: दो चार चरागों के सिवा कुछ नहीं बचता, ये उम्र अगर अरसे जुल्मात निकाले, पहले किया आमादे इजहारे मोहब्बत, पहले किया आमादे इजहारे मोहब्बत, फिर उसके जवाबों से सवालात निकाले, पहले किया आमादे इजहारे मोहब्बत, फिर उसके जवाबों से सवालात निकाले, हम राह से भटके हुए लोगों की भी सोचे, हम राह से भटके हुए
0: लोगों की भी सोचे।

0: गजब मेयारे दुनिया हो गया, ये तेरी आवाज नम क्यों हो गई, गमजदा मैं था तुझे क्या हो गया,
1: क्या वाह वाह वाह वाह,
0: ये तेरी आवाज नम क्यों हो गई, गमजदा मैं था तुझे क्या हो गया, मेरे शक के दायरे में आ गए, मुझको जिन पर भी भरोसा हो गया,
1: क्या
0: मेरे शक के दायरे में आ गए, मुझको जिन पर भी भरोसा हो गया, अब गलत फहमी में जीना छोड़ दो, तुमको गुजरे एक अरसा हो गया,
1: क्या बात है,
0: अब गलत फहमी में जीना छोड़ दो,
1: तुमको गुजरे
0: एक अरसा हो गया, फिर कहाँ लगते हैं वो दुनिया के हाथ, फिर कहाँ लगते हैं वो
1: दुनिया
0: के हाथ, वो जिन्हें खुद पर भरोसा हो गया, वो जिन्हें खुद पर भरोसा हो गया, मसलों की जानलेवा भीड़ में, मसलों की जानलेवा भीड़ में, आदमी कितना अकेला हो गया, आदमी कितना अकेला हो गया, शहर में दो चार कंबल बांटकर वो समझता है मसीहा हो गया,
1: क्या बात है,
0: शहर में दो चार कंबल बांटकर वो समझता है मसीहा हो गया, हमसे मिट्टी की महक जाती रही, हमसे मिट्टी की महक जाती रही, गांव लेकिन शहर जैसा हो गया, हमसे मिट्टी की महक जाती रही, गांव लेकिन शहर जैसा हो गया, तेरी मर्जी की बहू तो आ गई, तेरी मर्जी की बहू तो आ गई, माँ तेरा बेटा अकेला हो गया, तेरी मर्जी की बहू तो आ गई, माँ तेरा बेटा अकेला हो गया, सच बहुत सचता था मेरी जात पर, आज ये कपड़ा भी छोटा हो गया,
1: बहुत अच्छा,
0: सच बहुत सचता था मेरी जात पर, आज ये कपड़ा भी छोटा हो गया, एक ही दुश्मन था सारे शहर में, एक ही दुश्मन था सारे शहर में, और कल उससे भी झगड़ा हो गया, एक ही दुश्मन था सारे शहर में, और कल उससे भी झगड़ा हो गया, पहले मेरी बेगुनाही देख ली और फिर कानून अंधा हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
2: बहुत खूबसूरत गजल थी
0: दोस्तों। इस समा खराशी के बाद अब मैं उस मोहतरम शख्सियत के हुजूर चलता हूँ कि जिनकी शख्सियत के कई पहलू हैं, वो बयक वक्त शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुतरजिम भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, तर्जुमे का इतना बड़ा काम है उनका, कई जबानों के आशना मोहतरम नसीब खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि उनसे आज इस्तफादा करें, उन्हें सुनें और इस खूबसूरत मौके का फ़ायदा उठाएं। नसीब खान साहब,
3: बहुत शुक्रिया शकील साहब, दो नज़में पेश खिदमत हैं। पहली नज़्म का उन्वान है कच्ची उम्र की दुल्हन।
0: क्या बात,
3: रात ख्वाब में देखा खुशनुमा सी डोली में नक्श एक नगीना सा।
0: क्या बात,
3: रात ख्वाब में देखा खुशनुमा सी डोली में नक्श एक नगीना सा, चिलमने हैं सतरंगी कच्ची उम्र की दुल्हन और किताब हाथों में गुंजलक पहेली की, दामनों में सफहों के बेल और बूटे कुछ मुख्तसर फसाने भी हैं, सरे वरक भी कुछ सरगुजश्त परियों की, तेल और दिया बाती कांपती दुलाई की, मलगजे से कोनों में हैं कशीदा रूसाए,
0: क्या बात है,
3: दो कहार एक डोली एक मुश्तैल मरघट, आखिरी वरक पर है नौजवान एक बेवा लाल सुर्ख पैराहन, अहमरी किनारों पर कोपले हैं नौ रुस्ता और दमकता मुखड़ा भी है गुलाल आलूदा,
0: क्या बात,
3: लकड़ियां हैं चंदन की उड़ रहे हैं अंगारे, नौजवान है बेवा एक तड़प है बिस्मिल की, डोमनी से जेरे लब बोलती है जाने क्या,
0: क्या बात है,
3: और चिता पे चढ़ती है डाल किर्म खुर्दा सी, डोमनी उठाती है और निगाह एक फासिद डालती है बेवा पर,
0: क्या बात,
3: ढेर है कि लकड़ी का राख एक मुट्ठी

0: भर बेपलक है दो आंखें, ढूंढती हैं पलकों ढूंढती हैं नौहागर, डोमनी रुदाली को दूर अलग थलग बैठी तौकदार कुमरी एक भूखती उबलती है, नींद टूट जाती है,
1: बहुत अच्छा,
0: नींद टूट जाती है।
1: बहुत
0: आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा, आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा, खुशनुमा सी डोली में नक्श एक नगीना सा ख्वाब मैंने दोहराया।
1: बहुत अच्छा।
0: मरघटों के सीनों पर हैं अघोर पंथी कुछ, राख से चिताओं की हड्डियां उठाएंगे मस करेंगे गालों से, गर्म राख से अक्सर रकलदार मांजेंगे और नाफ रगड़ेंगे हड्डियों से एड़ी की, बूढ़ा सोच कर बोला। कांच की सुराही में नाचता हुआ इंसान बेबसी की शहनाई तालियां बजाएगा, शोभदे कलंदर के है नजूल सहबा का, जिस्म जां के उतरन भी तार हाय सीमो जर, होंगे शहद के छत्ते होंगे शहद के छत्ते, रात ख्वाब में देखा।
1: क्या बात है, क्या बात है,
2: ख्वाब बहुत अच्छा, मंदर निगारी का तो कमाल।
0: दूसरी नज्म का उन्वान है एक सियाह मरज होगा
1: जी, शाद
0: रात ख्वाब में देखा, नीम जान करगस सिक ना उम्मीद कुछ तरसा, तौलता है पर अपने पास गोरकन बूढ़ा, नीम जान करगस से जेरे लब मुखातिब है, शाम है जमिस्ता की और दबीज है कोहरा, सरमगी सी चादर के शाम है जमिस्ता की और दबीज है कोहरा, सुरमगी सी चादर एक दूर आसमानों से अब उतरने वाली है, माबदों के जीने सब बांग देने वाले हैं, रात मुर्गो माही के खान सजने वाले हैं।
2: क्या बात है,
0: आज तुम यहीं ठहरो शहर में खामोशा के, वक्त के सलासिल के मुनहनी से कैदी हो, चाहते हो गर्दिश क्यों राह एक बेगानी, लाल जानवर वहशी मुश्क नाप की खातिर तुमको नोच डालेंगे शहर में खामोशा के, आना सहल कितना है पर यहाँ से जाने के रास्ते गुजरते हैं, ऊंघते शराबों से मुस्तरद मकानों से, झाग जिस्म पानी से कल अदम जमानों से।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: शहर में खामोशा के आना सहल कितना है पर यहाँ से जाने के रास्ते गुजरते हैं, ऊंघते शराबों से मुस्तरद मकानों से, झाग जिस्म पानी से कल अदम जमानों से, राहगीर भी गुमसुम हापते झपटते हैं, शाहिबा सफा हूँ मैं काजिए जहाँ हूँ मैं, बात मान लो मेरी आज तुम यहीं ठहरो, वरना बाव के झोंके वरना बाव के झोंके और बगुले शोरीदा सारी खाक कब्रों की डाल जाएंगे तुम पर, और जमी की गहराई रास आती जाएगी तेवरों की दुनिया से दूर एक दुनिया में, चोबदारों के दस्ते और संतरी सारे धारदार कतबों के बेशुमार टुकड़ों से संगसार कर देंगे या कि जबह कर देंगे, आज तुम यहीं ठहरो शहर में खामोशा के, बस पलक झपकते ही झिलमिलाने लगता है और एक नया मंजर, नीम जान करगस फिर तौलता है पर अपने, अधमरी सी कुमरी एक झूलती है गर्दन में, नीम जान करगस की
1: क्या बात,
0: अधमरी सी कुमरी एक झूलती है गर्दन में, नीम जान करगस की माबदों के जीने सब बांग देने लगते हैं, नींद टूट जाती है, नींद टूट जाती है।
1: बहुत
0: आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा, नीम जान करगस सिक ना उम्मीद कुछ तरसा, तौलता है पर अपने ख्वाब मैंने दोहराया।
1: बहुत अच्छा।
0: सख्त जहाँ दरिंदे हैं और वो होश जिन्नाती, करवटें तो बदलेंगे दांत कटकटाएंगे, हुक्मरान शेरों के फील्डां सजीले सब सैद होंगे हाथी के, और असीर पंजों के आजमाएंगे जादू, बूढ़ा

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आरंभ में सुनिए बेवफा फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं उदित नारायण, गीतकार हैं समीर अंजान और संगीतकार नदीम श्रवण।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म कारवां से। गायिका है लता मंगेशकर। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म एक था टाइगर से। आवाजें हैं के और पलक मुच्छल की। गीत अन्विता दत्त का लिखा है एवं संगीत सोहेल सेन ने दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को है, अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने

0: ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
2: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप

0: राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: We have been able to achieve that in the first.
5: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
4: They are all designed in India now.
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि

0: भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.

0: की रस्म अंजाम देंगे। इनमें INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय शामिल हैं। इनका डिजाइन बहरिया के जंगी बहरी जहाजों के ब्यूरो ने तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें तामीर किया है। इसका मकसद मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम बनाना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आबदोज शिकन निजाम को मजबूत बनाना है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के तस्वुर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।
1: गुज़श्ता 12 बरस के दौरान हुकूमत ने मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर ढांचा जाती इकदाम किए हैं। बाख्तियार भारत के दो सबसे अहम सतून सेमीकंडक्टर इको निज़ाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की जबरदस्त तरक्की हैं। 76,000 करोड़ रुपए के बड़े अखराजात के साथ दिसंबर 2021 में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन का आगाज किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे मरहले का आगाज किया, जिसका मकसद सनत की क्यादत में तहकीक, टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए तरबियती मराकज और मुस्तकबिल के लिए हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तश्कील पर जोर देना है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि मिशन 1.0 ने इस अहम सनत के लिए बुनियाद फराहम की और मिशन 2.0 इको निज़ाम को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा।
2: The first mission was to start the industry in our country. It's an extremely complex industry. We have now talent. More than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2-nanometer chips are designed in India. The most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips, they are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
1: भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत दी गई, जिससे सैटेलाइट को खला में भेजा जाना भी आसान हुआ। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। आकाशवाणी से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्कीयाफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी और सारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान NEET UG 2026 का कल दोबारा इम्तिहान होगा। कल होने वाले इस दोबारा इम्तिहान में मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। ये इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में होगा। इम्तिहान से कबल इम्तिहानात के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल्स अंजाम दी, जिनके तहत सभी सिस्टम जैमर्स, CCTV, अमले की तलाशी और बायोमेट्रिक की जांच की गई। NTA ने कहा है कि वो बिला रुकावट, मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: मुशाहिदीन, राबता करो, पुलिस दस्तों और मुंतजमीन समेत 2,00,000 से ज्यादा अहलकारों को महफूज, शफाफ और बिला रुकावट इम्तहान के इनाकाद के लिए तैनात किया गया है। मुनसिफाना और शफाफ इम्तहान को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी तरीक़ेकार को बरवेकार लाया जा रहा है। इसमें CCTV से निगरानी, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक और इम्तहानात से मुतालिक सामान की नकलो हमल के लिए पुलिस हिफाजत के साथ GPS वाली मोटर गाड़ियां शामिल है। NTA भी सरगर्मी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कर रही है, ताकि किसी भी तरह की गलत मालूमात और तौर तरीकों की रोकथाम की जा सके। ये इम्तहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा।

يا يحيى خذ الكتاب بقوة،

فأتت به قومها

على نفسي ما تفكر.

حبيبي غيرك ما ليا يمسح نوري.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों की शामिल होने की संभावना है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रह का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे, जहां वे बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वजवाहक टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इन टैंकर में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव

0: prepared if what it called aggression continues. In FIFA World Cup action, the match between Netherlands and Sweden in Group F is underway at NRG Stadium in Houston, United States. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR Live News 24/7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 1:10:15। साथियों, ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का, जी हाँ, गीत सुनहरे, जिसमें आज आप सुनेंगे बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गीत। जी हाँ, कुछ ऐसी अनमोल रचनाएं जो बिल्कुल सच्चे खरे सोने जैसे होती हैं। न जाने कितने ही संगीतकारों ने, कितने ही गीतकारों ने, कितने ही वाद्य यंत्र प्रयोग करने वालों ने, जो कलाकार हैं, एक से एक बेहतरीन और लाजवाब खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे, संगीत दिया। बिल्कुल हर प्रकार के गीत उन्होंने लिखे, सजाए अपने संगीत से। जी हाँ दोस्तों, वाकई गीत सुनहरे एक अनमोल धरोहर है गीत संगीत की दुनिया का। गीत सुनहरे बिल्कुल खरे सोने की तरह। श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम में, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली और शानदार खूबसूरत गीत के साथ। सुनवाते हैं ये प्यारी सी रचना। ये रचना, ये गीत वाकई बहुत खूबसूरत है। सुनो गजर क्या गाए, फिल्म बाजी से, गीता दत्त और कोरस की आवाज में शानदार रचना। बाजी फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत से सजाया है SD बर्मन साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत रचना आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली शानदार गीत रचना।

तू भी फानी है, हंस के बिता ले दो घड़ी की जो।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन गीत, जबरदस्त रोमांटिक, खूबसूरत गीत, और रोमांटिक भी के साथ साथ आह्वान भी कर रहे हैं, खो ना जा, खो ना जा। जी हाँ, वाकई बहुत ही सुंदर। एक और गीत रचना आ रही है, बहुत ही प्यारी, कितनी जवां है रात, फिल्म आज़ाद से, और जो आज़ाद फिल्म रही है 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है, लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज में सुंदर रचना है, गीत राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत से समारा है सी रामचंद्र ने। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, ऐसी सुंदर रात में किसकी याद नहीं आएगी, किसको याद नहीं आएगी। जी हाँ, हर इंसान को याद आती है कि जवां रात है और गीत भी बहुत ही ख़ास है। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है शोला जो भड़के, फिल्म अलबेला से, लता मंगेशकर और चितलकर, और साथ में जो साथी हैं यानी कि कोरस है उनकी आवाज़ में शानदार खूबसूरत रचना। अलबेला फिल्म 1951 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत राजेंद्र किशन के हैं और संगीत से सवारा है सी रामचंद्र ने। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन, अनमोल, बेमिसाल रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा मस्ती भरा खूबसूरत गीत शोला जो भर के दिल मेरा धड़के। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा गीत। साथियों, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और हम कभी सोचते हैं कि भाई किसी एक स्पेशल विशेष जो टाइटल होता है तो उस पर कुछ गाने या गीत सुनवाए जाएं आप सभी साथियों को। साथियों, हमारी नज़रों में एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत नज़र आ रहा है। ये रात खुश नसीब है। जी हाँ, ये रात खुश नसीब है, बहुत ही प्यारा गीत है और ये गीत वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आप सुनेंगे तो वाकई लगेगा कि हाँ, कुछ ऐसे गीत हैं जो अक्सर सुनने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारी कोशिश तो यही रहती है हर बार जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, अच्छा लगता है कि कोई ना कोई टाइटल लिया जाए और उस पर आधारित कोई ना कोई खूबसूरत रचनाएँ आपको सुनवाई जाए। ये रात खुश नसीब है, फिल्म आईना से ये शानदार रचना लता मंगेशकर की आवाज़ में शानदार खूबसूरत रचना। आइए सुनवाते हैं ये अनसुना सा ये खूबसूरत गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, जैसे कि हमने बताया था कि जो स्टार्टिंग में इवनिंग से लेकर और 12 बजे तक जो कार्यक्रम होता है वो होता है इंद्रप्रस्थ चैनल का, और ठीक 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। दोनों ही चैनल एक ही स्टूडियो में है जी, बस डिफरेंट इतना है कि कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ चैनल में प्रोग्राम होते हैं और कुछ समय के लिए AIR लाइव न्यूज 24/7 फ्रीक्वेंसी में होते हैं। दोनों ही एक ही स्टूडियो में कार्यक्रम होते हैं, और शायद हमारे बहुत सारे साथियों को पता नहीं होगा, लेकिन हाँ, सभी से आग्रह कर रहे हैं हम AIR लाइव न्यूज 24/7 और इंद्रप्रस्थ चैनल को यदि आप सराहें, प्यार करें, उसके कार्यक्रम को सुनें, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे साथी सुन रहे हैं। और आजकल तो एक नई रवायत शुरू की है हमने, हम सब ने, कि अपने पोस्टर के माध्यम से सूचित किया जाता है, और आज हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, शायद हमसे पहले किसी ने किया नहीं है, कि हमने अपने स्टेटस पे ही वो पोस्टर डाला था, फिर हमने आकर यानी कि स्टूडियो में आकर हमने वो ग्रुप में, यानी कि जो हमारा जो ग्रुप होता है, और वहीं हमने अपना पोस्टर प्रेषित किया, और आप सभी साथियों ने सराहा, प्यार किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, एक ऐसा गीत आ रहा है बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत, यह है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, बहुत ही रोमांटिक और लाजवाब खूबसूरत गीत है, फिल्म मेरे सनम से आशा भोसले की आवाज में शानदार रचना। गीत मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से संवारा है OP नैयर साहब ने। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर और बेहद रोमांटिक खूबसूरत गीत है।

जी हाँ, चले आइए हमारे पास. जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है. साथियों, इस कार्यक्रम में यानी कि गीत सुनहरे कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार. बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर. ये गीत भी आ रहा है बहुत ही प्यारा सुंदर लाजवाब गीत. साथियों, आज हमने गीत सुनहरे कार्यक्रम के माध्यम से हमने सोचा कि थोड़ा रात का समय है तो थोड़ा सा रात की जो रचनाएं हैं बहुत ही सुंदर और लाजवाब होती हैं, क्यों नहीं हम वो ना सुनवाएं. जी हाँ, तो हम सुनवा रहे हैं बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीतों का सिलसिला. जी हाँ, एक अंधेरी रात का जो एक आनंद होता है बेहद खूबसूरत लगता है हमें, है ना. तो आइए सुनवाते हैं एक और बेहतरीन लाजवाब रचना आ रही है और ये रचना वाकई बहुत ही खूबसूरत है. तो ये गीत आ रहा है आपके पास और ये रचना वाकई रातें हैं इकरार की. जी हाँ, प्यार की, इकरार की, मोहब्बत की, अपनेपन की. तो लीजिए, प्रस्तुत है ये शानदार बेहतरीन रचना. कौन सा? जी हाँ, ये रातें हैं इकरार की.

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा सुंदर गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में। साथियों बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत, कैसी हंसी बहारों की रात है, फिल्म आदमी से मोहम्मद रफ़ी साहब की और तलत महमूद साहब की आवाज़ में शानदार रचना। संगीत से समाज सजाया है इस खूबसूरत गीत को नौशाद साहब ने, तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रात से भरी सुंदर रचना।

एक चांद जमीन पर है, माफ कीजिएगा, एक चांद मेरे साथ है। बाकी बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी साहब और तलत महमूद की आवाज में शानदार रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत रोमांटिक गीत की ओर, तेरा तीर ओ बेपीर। जी हाँ दोस्तों, गीता दत्त की आवाज में शानदार रचना, आज की रात पिया नींद नहीं आएगी। जी हाँ, ये फिल्म एल्बम है, बहुत ही सुंदर है, आज की रात पिया। तो सुनवाते हैं एक खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, आज की रात भी आप बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। जी हाँ, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत भी बहुत ही शानदार है, बेहद लाजवाब है। जी हाँ, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। जी हाँ, आधी रात तो हो चली है, 2 बजने को है और बस ज्यादा समय नहीं है। उसके बाद ठीक 2 बजे समाचार प्रसारित किए जाएंगे, उससे पहले एक शानदार बेहतरीन रचना आपके लिए हम सुनवा रहे हैं। जी दोस्तों, ये गीत वाकई वाकई बहुत ही अच्छा है और हमेशा हमने सोचा कि चलिए ठीक है, हम गीत तो अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन क्या कहें, हमारे साथी हैं और साथ भी दे रहे हैं और हमें अच्छा लगता है। हमारे कई साथी हैं जो हमें सुन रहे हैं लाइव। जी हाँ, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। सुनवाते हैं एक और आज के कार्यक्रम की अंतिम और बेहतरीन शानदार रचना।

0: जी हाँ, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम गीत सुनहरे आज आपके साथ था मैं आपका दोस्त ललित कुमार। साथियों, 2 बजने को हैं और कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जन

0: जातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। फीफा विश्व कप में ग्रुप एफ में नीदरलैंड और स्वीडन के बीच मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में चल रहा है। नीदरलैंड स्वीडन के खिलाफ 4-1 से आगे है। इससे पहले ब्राजील ने फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती पर 3-0 की आसान जीत के साथ फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के लिए मैथियस कुन्हा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले हाफ में 2 गोल किए, जबकि विनीसियस जूनियर ने तीसरा गोल दागा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi said tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, empowered by a range of welfare and outreach initiatives of the centre. Addressing the public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, the Prime Minister lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi. On the occasion, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. Later, Prime Minister Narendra Modi took part in Paschim Banga Divas celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district of West Bengal. He also released the 23rd installment

बहुत ही सुंदर गीत हैं और हमारे कई साथी भी कह रहे हैं कि भाई हम 3 बजे तक भी कार्यक्रम सुनेंगे, तो आपकी बहुत मेहरबानी और इतना प्यार कर रहे हैं हमें, तो वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज इस कार्यक्रम यानी कि गीत बहार कार्यक्रम में आज मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। तो आज शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही सुंदर गीत के साथ। ये गीत आ रहा है, ये कौन चित्रकार है? जी हाँ दोस्तों, ये कौन चित्रकार है? ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो हमने शेड्यूल किए हैं आप सभी साथियों के लिए। रात का समय है और कुछ नटखटपन लिए शानदार बेहतरीन रचनाएं हैं, कुछ रात के मुसाफिर की बात है, कुछ और भी बहुत सारे गीत हैं। तो बस जैसे जैसे समय हमें मिलेगा वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे कि हाँ आप सभी साथियों को पसंद होने वाले शानदार खूबसूरत गीत प्ले किए जाएं। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का पहला सुंदर बहुत ही खूबसूरत गीत।

या दोस्तों, वाकई ये बहुत ही सुंदर गीत, बेहद खूबसूरत रचना। जी हाँ, ये कौन चित्रकार है? बूंद जो बन गई मोती, मुकेश साहब की आवाज़ में सुंदर रचना। या दोस्तों, ये वाकई बहुत ही प्यारा गीत है, और गीतकार हैं इस शानदार गीत के भरत व्यास, और संगीत से सजाया है इस बेहतरीन रचना को सतीश भाटिया ने। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा है, रोमांटिक गीत है, और वाकई और हमारे साथी सुनना चाहते हैं ये सुंदर।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। हाँ, हो जाए कभी कभी जिंदगी में, तू मैं महलों का राजा, तू महलों की रानी। वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की, और ये गीत आ रहा है बहुत ही प्यारा। जी हाँ, जाने क्यों जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं। हमें नहीं पता बिल्कुल भी जलते हैं या नहीं जलते हैं, लेकिन हाँ, जलने वालों को जलना रहने दो और गीत संगीत का आनंद लेते रहिए। और यह गीत वाकई बहुत ही सुंदर है, तो चलिए सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत हमारे साथी की पसंद पर। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन रचना फिल्म आशा से, जाने हम सड़क के लोगों से। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ एक बार फिर से गूंज रही है। आशा फिल्म 1980 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

हाँ दोस्त, होता है जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी, लेकिन हाँ सब कुछ बुलाकर यदि आगे बढ़ने का प्रयास करे तो और भी अच्छा होता है। कहने वाले कुछ भी कहेंगे, जलने वाले बिल्कुल जलेंगे, तो जलने की आवश्यकता नहीं है, है ना। एक बहुत ही सुंदर गीत है, हम बंजारों की बात क्या पूछें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत है और फिल्म धर्म वीर से सुंदर एक और रचना आ रही है किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज में शानदार रचना। फिल्म धर्मवीर 1977 रिलीज फिल्म रही है और वाकई बहुत ही प्यारा गीत भी है। गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना।

आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। नाम तो सुना होगा, है ना? तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। साथियों, समय हुआ है 2:35 और अब एक और खूबसूरत गीत आ रहा है आपके पास। बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही सुंदर। ये गोटेदार लहंगा निकलू में ढार के, फिल्म धर्म कांटा से ये सुंदर रचना आ रही है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। सुंदर गीत, गीत मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत नौशाद का। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार रचना।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, इंस्टेंट नॉनस्टॉप म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 3 बजने को है, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की

0: योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पद्मश्री पी नारायण कुरूप के निधन से मलयालम साहित्य ने अपनी एक विशिष्ट आवाज खो दी है। वे कवि, आलोचक, व्यंग्यकार और विद्वान थे, जिन्होंने शास्त्रीय परंपराओं को समकालीन विचारों के साथ मिलाया। उनका निधन कल रात केरलम की राजधानी त्रिवेंद्रम में हुआ। फीफा विश्व कप के ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच मैच कनाडा के टोरंटो स्थित BMO फील्ड में चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ग्रुप एफ के मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। ये मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में NRG स्टेडियम में खेला गया। इससे पहले ब्राजील ने फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती को 3-0 से हराकर फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल।

0: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। प्रातः के 4 बजे हैं। प्रस्तुत है अर्चना कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ऋषि व पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमाल ने।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए आप सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आप को प्रस्तुति दी है सरगाजी एस गोविंदराजन ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026 सुबह के 4:54 और ठीक 22 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे प्रसारण आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, हम आपको बता दें चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कुछ जानकारी। 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी समाचार होंगे। आओ योग करें कार्यक्रम का समय 5:10 का रहेगा। देशभक्ति गीत आप सुन सकते हैं 5:20 पर। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 5:30 पर आप सुन सकते हैं स्वर रंजनी कार्यक्रम। प्रातः 6 बजे हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी हिंदी समाचारों के साथ। 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। छ बजकर 10 मिनट का समय कार्यक्रम वंदना का है। हम आपको बता दें 6:30 पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कोलकाता से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसे आप 6:30 पर सुन सकते हैं। 6:40 का समय चिंतन का रहेगा, जिसमें योग और आधुनिक जीवन विषय पर आप विचार चर्चा सुन सकेंगे। श्रोताओं, ये थी इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के रेड रोड पर आयोजित सामूहिक योग सत्र में शामिल होंगे। कार्यक्रम ठीक इसी समय शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री सुबह 6:30 से 7:50 तक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारत के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को नौसेना में शामिल करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एजेंसी ने कहा कि वो परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने ओडिशा में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं।

0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। वे राज्य में कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई अवसंरचना परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर भारत आ रहे हैं। इनमें 86 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड पर 94 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि मानवाधिकारों के मामले में पाकिस्तान के दयनीय रिकॉर्ड को देखते हुए ये टिप्पणियां विशेष रूप से बेतुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था की अनिश्चितताओं के बीच मजबूत तैयारी बनाए रखना आवश्यक है। श्री सिंह ने मेघालय के शिलांग स्थित पूर्वी वायु कमान मुख्यालय में सैनिकों से बातचीत करते हुए तकनीकी दक्षता, रणनीतिक दूरदर्शिता और संस्थागत नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार पद्मश्री पी नारायण कुरूप का कल रात केरलम में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरलम और माहे में मंगलवार तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The 12th International Day of Yoga, IDY 2026, is being celebrated today with the theme Yoga for Healthy Aging. The main event is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi is leading the nation in the practice of the common yoga protocol. We have a report.
2: The Ministry of Culture is organizing special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu will be the chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event will begin at 7:30 a.m. at Garrison Ground in Sadar. After the Yoga Day event, the president will reach Rani Durgavati University, where she will attend the university's 36th convocation ceremony as the chief guest. Ministry of Social Justice and Empowerment will organize a special Yoga Day celebration at Bharat Mandapam in New Delhi today. As part of the nationwide celebrations of the 12th International Day of Yoga, ITY 2026, the event is expected to bring together nearly 1,500 senior citizens. The celebration is being organized in alignment with the national theme of the day, Yoga for Healthy Aging. Meanwhile, in view of the celebrations of International Day of Yoga

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें, जिसके अंतर्गत आज आप अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन जानेंगे।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए।

योगासन खुले एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें, इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़